अर्थ कह साध संग स्नेह सत्यं सुख्यं बसंत नान कह मिथ्यंत देहं खीणंत बलनं

उरतहारं कुल है समूह सगल उदहारं बड भागी नानक को तारं सिमरणं गोविंद नामं उदरणं कुल समूह न है।

ਕਾਲ ਸਗਲ ਸੁਖ ਰਾਸ ਹਰ ਹਰ ਹਾਂ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ ਬਸ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਾ ਕਰ।

ਪਰੈ ਹੀ ਤੈ ਪਰੈ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਪਰ ਆਪਣੋ ਭਾਵਨ ਕਰ ਮੰਤਰ ਨਾ ਦੂਸਰੋ ਧਰ ਓਪਤ ਪਰਲਾ।

बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पहावै देहो दर्श मन चाओ भगत इहो मन ठहरावै बलियो चिराग अंध्यार मह सब कल उधरी एक नाम धर्म प्रगट सग

जिन हुक्म सब सृष्ट सवारी। ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जाने ओ। जप

पुन दुखन नास सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान बस तेह नेरे पूरो पुरख हृदय हर सिमरत मुख देखत अग जाहे परेरे जो हर बुद्ध रिद सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे।

भुयंगम सर्प है जग केरिया बिखमाय, बिख का मारन हर नाम है गुरगर्ड शब्द मुख पाए। जिनको पूर्व लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए, मेरे सतगुर निर्मल हो।

सुहाग है मस्तक मणि लिखिया हर हर नाम उरत हरिया हर हृदय कमल प्रगास सतगुर सेवन।

सोए, जित मिलिया तिख उतरै तन मन शीतल होए। वाह वाह सतगुर सतपुरख है जिसनो समत सब कोए, वाह वाह सतगुर सतपुरख है जिसनो समत सब कोए, वाह वाह।

गुरुमुख वेदं गुरुमुख रया समाई गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा इक देव बुझाई सबना जिया का इक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जे तिस भावा विन पाने के नाय करी जेती सिर्फ उपाय वेखा विन कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे इक गुर की सिख सुनी गुरा इक देह बुझाई सबना जिया का इक दाता तो मैं विसर न जाई जे जुगचारे आर जा होर दसूनी होए नवा खना विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाव रखाए कै जप कीरत जगले जे तिस नदर ना

अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुणगाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिन ए लिखे ते सिर नाहे जिस फुरमाए ते पाए जे ताकी ताते तानाओ विण नावे नाहे कोथाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तू दुभावे साई पलिकार तू सदा सलामत निरंकार पर ये हाथ पैर तन दे पानी तो तै उतरस के मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लिये ओ तोए पर ये मत पापा के संग ओ तो पै नावे के रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कर करना लिख ले जाओ आपे बीज

मान सुनिया मनिया मन कीता भाव अंतरगत तीरथ मलनाओ सब गुण तेरे मैं ना ही कोए विण गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आस बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन कवन छिच कवन वार कवन से रुती महा कवन जित हो आकार वेल न पाया पंडती जे हो लेख पुराण वक्त न पायो काजिया जे लिखन लेख पुराण चित वार न जोगी जाने रुत महा ना कोई जा करता सिर्फी को साजे आपे जाने सोई किव कर आखा किव सालाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखन

नानक जे को आपो जाने अगे गया ना सो है। पाताल पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन इकवात सैस अठारे कहन कतेबा असलू इक तात लेखा होए ता लिखिए लेखे होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। साला ही साला है एती सुरत न पाया नदियां अत्ते वाहा पवे समुंद न जानिए समुंद सह सुल्तान गिरहा से ती माल तन कीड़ी तुल न होनी जे तिस मनो न विसरे अंत न सिकती कहन न अंत अंत ना करने देन ना अंत अंत ना देखन सुनन ना अंत अंत ना जापे क्या मन मंत अंत ना जापे कीता आकार अंत ना जापे पारावार अंत कारण के ते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो।

ऊंचा नाव एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप आप, नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना समाए, केते मंगे जोद अपा।

आए के त्या दुख भूख सद मार ए दे दाप तेरी दातार बंद खलासी पाने होए होर आख न सके कोए जे को खाए को

भांति रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखे कीता अपना जीव तिस दी वडियाई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाह सा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंडा संतोख शर्म पत चोली ध्यान की करें विपूत खिंसा काल पुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण कट कटवा जैनाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साध संजोग विजोग दो कार चलावे लेखे आवे पाग आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावे तिवें चिलावे जिव होवे फुरमान ओ वेखे ओ ना नदर ना आवे बहुताए हो विडान आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए पंडार जो किछ पाया सो एका वार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश से आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी बोला खोए लख होवे लखवीस लख लख गेड़ा आछिए एक नाम जगदीश एक राहे पत पवड़िया चढ़िए होए इक्कीस हूं गल्ला आकाश की कीता आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस आखन जोर चुपैने जोर जोर न मंगन देन न जोर जोर न जीवन मरन न जोर जोर न राज माल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटे संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती थिती वार पौन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी तरमसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिन के

परवान नदरी करम पवे निशान कच पकाई उथे पाए नानक गया जा कह जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पौन पानी वै संतर केते कान महेश केते बरमे कार्त करिए रूप रंग के वेश केतिया कर्म पूमी मेर केते केते तूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते दे

गावन सुदनो पवन पानी बैसंतर गावे राजा तरम द्वारे। गावन सुदनो चित गुपत लिख जानन लिख लिख तरम विचारे।

देवतियां दरनाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करा।

है भी होती जाए न जाती, रचना जिन रचाई रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी, माया जिन उपाई कर कर देखे कीता अपना, ज्योतिष दी वड्याई ज्योतिष भावे सोई करसी, फिर हुक्म न करना जाई तो पाता हो सापत साहिब, नानक रहन जाई आसा महला पहला। सुन वड्डा आखे सब कोए, केवट वड्डा दिशा होए, कीमत पाए ना कहया जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए, वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा, कोई न जाने तेरा केता केवड़ चीरा रहा, सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कह ना जाई तेरी तिलवड़ियाई, सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धा पुरखा किया वड़ियाईया, तुद बिन सिद्धि किने न पाया, कर्म मिले नहीं ठाक रहाया, आखन वाला क्या विचारा, सिफती परे तेरे पंडारा, जिस तू दे तिसे क्या चारा, नानक सच सवारन हारा, आसा मेला पहला। आखा जीवा विसरे मर जाओ, आखन औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागे पूख, उत पूख है खाए चलिए दुख, तो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए राव, साचे नाम की तिलवड़ आई, आख थके कीमत नहीं पाई, जे सब मिलके आखन पाए, वदा न हो वे काट न जाए,

नानक नामे बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा। हर के जन सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुरपास। हम कीरे किरम सतगुर शरणाई, कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड पाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिले तृप्ता से, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन सुरमस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा। काहे रे मन चित में उद्दम, जा आहर हर जियो परया। सैल पत्थर में जंतु पाए, ताका रिजक आ गए कर तरया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरया। गुर प्रसाद परम पद पाया, तू के कास्त हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुख बनता, कोई न किसकी धरया। सिर सिर रिजक समाहे ठाकुर, काहे मन पौ करया। उड़े उड़ आवे सह कोता, पिस्ता से बतरे चरया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन में सिमरन करया। सब निधान दस अष्ट सिधान, ठाकुर कर कल तरया। जन नानक बल बल सद बल जाये, तेरा अंत न पारा वरया। राग आसा में

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावे तुझ जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जी।

दा तारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक को पुरुष समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज विडाना तू आपे दाता आपे पुगता जी हम कुछ दिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना जो सेवे तुझ जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावे तुझ जी से जन जुग में सुखवासी से मुकत पै जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुझी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करें हर पूजा जी तप तापे जपे बेअंता तेरे अनेक परे बहु सिमरत सास्त जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत परे जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुझ जेवड अवर न कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नेचल करता सोई तुझ आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करे सोई तुझ आपे सिरज सब उपाय जी तुझ आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जनोई आसा मेला चौथा तू करता सत्यार मैं।

कृपा करें तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मनमुख गुआया, सुध आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई ना है। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया।

अवर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, चित सरवर लै पहिले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया, पंकज मोह पग नहीं चाले, हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेतक मूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया, रहाओ ना हो जती फती नहीं पड़िया, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिनको ना ही विसरिया, आसा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, अवर काज तेरे कित न काम, मिल साध संगत पज केवल नाम, सरंग जाम लाग पव जल करन कै, जन्म बिरथा जात रंग माया कै, रहाओ जप तप संयम तर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहो नानक हमनी।

मेरे निरपव का सोहेला, हम वारी जित सोहेले सदा सुखोए राव। नित नित जियड़े संभालियन, देखेगा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कौन सुमार। संबत साहा लिखिया, मिलकर पावो तेल, देवो सज्जन आशीषड़िया, जो होवे साहिब त्यों मेल।

सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला, औद कटे दिन सुरहारे, मन गुरु मिल काश सवारे रहाओ, ए संसार विकार संसे में तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पियावे एहो रस, अकथ कथा तिन जानी, जा को आए सोई बिहाजो, हर गुरते मने बसेरा, निज कर महल पा

अगर चंदन लीप आवे चाओ मत देख पूला विसरे तेरा चितना आवे नाओ हर बिन जियो जल बल जाओ मैं अपना गुर पूछ देखे।

रंग पसाओ मत देख पूला विसरे तेरा चितना आवे ना सिद्ध होवा सिद्ध लाई रिद्ध आखा आओ गुप्त प्रगट होए बैसा लोक राखे पाओ मत देख पूला विसरे तेरा चितना आवे ना सुल्तान होवा मेल लश्कर तख्त राखा पाओ हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब वाओ मत देख पूला।

चंद सूरज दोई गुफे न देखा, सुपने सौन न खाओ, पी तेरी कीमत ना पवे, हौ केवड आखा नाओ। साचा निरंकार निज काए, सुन सुन आखन आखना, जे पावे करे तमाए, रहाओ कुसा कटिया।

लेखे बोलन बोलना, लेखे खाना खाओ, लेखे वाट चलाया, लेखे सुन वे खाओ, लेखे साल वाई है, पढ़े के पुछन जाओ, बाबा माया।

रोवण वाले जेतड़े सब बन्ने पंड पराल, सबको आखे बहुत बहुत काट ना आखे कोए, कीमत किने ना पाया कहन ना वड्डा होए, साचा साहिब।

पर निंदा परमल मुखसुदी अगन क्रोध चंडाल रस तस आप सलाहना ए कर्म मेरे करतार। बाबा बोलिए पत होए उत्तम से डर उत्तम कहिए नीच कर्म बहरोए रहाओ। रस सोयना रस रूपा कामन रस परमल की वास रस कोड़े रस से जा मंदर रस मीठा रस मास एते रस शरीर के कह कट नाम निवास। जित बोले पत पाये सो बोलिया परवान फिक्का बोल विगुचना सुन मूरख मन अजान। जो तिस पावे से पले होर के कहन वखान तिन मत तिन पत तिन तन पल्ले जिन हृदय रहा समाए तिन का क्या सालाना अवर स्वाल्यो काए। नानक नदरी बाहरे राचे दान ननाए श्री राग महला पहला। अमल गलोला कूड़ का दित्ता देवनहार मत्ती मरण विसारिया खुशी की ती दिन चार। सच मिलिया तिन सोफिया राखन को दरबार नानक साचे को सच जान। जित सेवे सुख पाये तेरी दरगह चले मान रहाओ। सच सरा गुड़ बाहरा जिस विच सच्चा

कारमंदर खुशी नाम की नजर तेरी परवार। हुकम सोई तुद पावसी होर आखन बहुत अपार। नानक सच्चा पाप सा पूछ ना करे विचार। बाबा होर सोना खुशी कुआर जित सुते।

ता अगर वास तन सास अफर तीरथ का मुख टिक्का तित कप मत विगास ओत मत्ती सालाहना सच नाम गुणता।

चार गुरुमुख मन समझाइए आत्म राम विचार त्रिविध कर्म कमाइए आस अंदेशा होए क्यों गुरु बिन त्रिकुटी छुटसी सहज मिले सुख होए निज कर मैल पछानिए नदर करे मल तोए।

कहाओ। आप सुजान ना पुल्लै सच्चा वद किरसान, पहला तरती साध के सच नाम दे दान। नौनिद उपजे नाम एक कर्म पवे निशान, गुर को जान न जानई क्या किस चज अचार। अंधले नाम विसारिया मनमुख अंध गुबार, आवन जान न चुकई मर जन्मे होए खुआर। चंदन मोल अनाया कुंगू मांग संदूर, चोआ चंदन बहु कहा पाना नाल कपूर। जे तन कंत न भावै ता सब अडंबर कूड़, सब रस भोगन बाद है सब सिगार विकार। जब लग शब्द न पेदी है क्यों सो है गुरुद्वार। नानक

निरोध कर्म मिले सच पाए गुरुमुख सदा निरोध सच्ची कार है सच मिले गुरमत पल्ले पाए सो नर जमे ना मरे ना आवे ना जाए नानक दर प्रधान सो दर्दे पैदा जाए। श्री राग महला पहला। तन जल बल माटी भया मन माया मोह मनूर

आगे देखो डोजन पाछे हरियो अंगूर जिससे उपजे तिस्ते दिल से काट काट सच भरपूर।

ओ बेपरवाह अतोलवा गुरमत कीमत सार लख सियाणप जे करे लक्ष्यो प्रीत मिलाप बिन संगत साधना प्रापिया बिन नावे दुख संताप हर जप जिये रे।

हर गुर सरवर सेव तू पावे दरगे मान राव। राम नाम जप दिन सरात गुरमुख हर तन जान। सब सुख हर रस भोगणे संत सभा मिल ज्ञान। नित एनस हर प्रभु।

तीसरा रोग वड्डा मन माहे क्यों दर्दे पत पाये जा हर नवसे मन माहे गुर मिले सुख पाये अगन मरे गुण माहे मन रे एनिस हर गुण सहारे।

भावै सच रत्ते सच भाए साकत सच न भावै कूड़े कूड़ी पाए सच रत्ते गुर मेले है सच्चे सच समाए मन में मानक लाल नाम रतन पदार्थ हीर सच वखर तन नाम है कट कट गहर गंभीर नानक गुरमुख पाई है दया करे हर हीर श्री राग महला पहला परने पाए ना विजवै जे पवै दिसंतर देश अंतर मैल

मिल सत्संगत हर पाए, गुरमुख हर निविलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल सलल समाए। जिन हर हर नाम न चेत्यो, सो अवगुण आवे जाए, जिस सतगुर पुरख न पेट्यो, सो पाउ जल पचे पचाए। ए मान के जियो निर्मोल है, क्यों कौडी बदले जाए। जिना सतगुरु

तैसी वस्तु विसाही है जैसी निभ है नाल अजैसा उस जान है लैसी वस्तु समाल पाई रे राम कहो चित लाए हर जस वखर ले।

मन के शान हर हृदय जमाए ले, क्यों पावस पद निर्वाणी काहे गर्भस मूड़े माया। पित सुतो सगल काल त्र माता, तेरे हो है ना अंक सखाया। रहाओ विषय विकार दुष्ट किरखा करे, इन तज आत्मे होए त्याई। जप तप संयम हो है जब राखे, कमल बिकसे मद आश्रमाई। बीस सप्ताह रो बासुरो संग्रे, तीन खोड़ा नित काल सारे। दस अठार में अपरम्परो चीने, कह नानक इव एक तारे।

ऐब तन चुकड़ो ए मन निधको कमल की सार नहीं मूल पाई। पौर उस्ताद नित पाखिया बोले क्यों बूझे जाने बुझाई। आखन सुनना पौन की बाणी ए मन रत्ता माया। खसम की नजर दिले पसंदे जिनी कर एक त्याया। ती कर रखे पन कर साथी नाव शैतान मत कट जाए। नानक आखे

जाने नाम खुदाई। जे बहु तेरा पढ़िया होवे को रह ना पढ़िए पाई। सोई काजी जिन आप तजिया इक नाम किया आधारो। है भी होसी जाए न जासी सच्चा सिरजनहारो। पंज वक्त

आपे नेड़े दूर आपे ही आपे मंज में आनो आपे वे खै सुने आपे ही कुदरत करे जहानो जो तिस पावे नानका हुक्म सोई परवा।

मान अंतर हर रस राव रहा चूका मन अभिमान हृदय कमल प्रकाशिया लागा सहज त्यान मन निर्मल हर रव रहा पाया दरगे मान सतगुरु सेवन अपना ते विरले संसार हों मैं ममता मार के हर राखिया उधार हों तिनके बलिहारने जिना नामे लगा प्यार सेई सुखिये चहु जुगी जिना नाम अखुट अपार गुर मिले नाम पाई है चूके मुँह प्यास हर सेती मन रव रहा।

सो गुरुमुख नाम समाए। पर पर पंडित जोत की वाद करें विचार, मत बुद्ध पवी न बुझई अंतर लोभ विकार। लक्ष चौरासी परम दे परम परम होए खुआर।

आप गवाए शब्द मिले ताहर मिले सेवा पवे सब थाए पारस परसे पारस होए ज्योति ज्योत समाए जिनको पूरब लिखिया तिन सतगुर मिलिया आए। मन पुखा पुखा मत करें मत तू करें पुकार लख चौरासी जिन श्री सबसे दे आधार निरपौ सदा दयाल है।

तो देखो नदर कर निकट वसै परपूर गुरमत जिनी पछाणिया से देखें सदा हदूर जिन गुण तिन सद मन।

जिन्हें एक मन नाम से आया गुरमति विचार, इनके मुख सद उजले एक सच्चे दरबार, ओए अमृत पीवे सदा सदा सच्चे नाम प्यार। पाई रे गुरमुख सदा पत होए, हर हर सदा त्याई है मलहो में कदे तोए राव, मन मुख नाम न जाननी विन नामे पत जाए, शब्दे साधना आयो लागे दूजे पाए, विस्ता के कीड़े पवे विच विस्ता से विस्ता माहि समाए, तिनका जन्म सफल है जो चलने सतगुरु भाए, कुल उधारे अपना तन जनेंदी माए, हर हर नाम के आई है जिसनो कृपा करे रजाए, जिन्हें गुरुमुख नाम से आया विच्चों आप गवाए, ओए अंदरों बारों निर्मले सच्चे सच समाए, नानक आए से परवान है जिन गुरमति हर त्याए। श्री राग महला तीजा, हर पगता हर तन रास है गुर पूछ करे वापार, हर नाम सलाहन सदा सदा वखर हर नाम आधार, गुरपुरे हर नाम दृढ़।

आए रहा। हर भगत हर का प्यार है, जे गुरुमुख करे विचार, पाखंड भगत न हो वही दुबदा बोल खुआर। सो जन लाया ना रले, जिस अंतर विवेक विचार, सो सेवक हर आखी है।

नानक गुरमुख हर पाया सदा हर नाम समाए। श्री राग महला तीजा सुख सागर हर नाम है गुरमुख पाया जाए। अंदिन नाम त्याये सहजे नाम समाए। अंदर रचे हर सच स्यों रसना हर गुण गाए। पाई रे जग दुखिया दूजे भाए गुर शरणाई सुख लहें। अंदिन नाम त्याये रहाओ साचे मैल ना ला गई मन निर्मल हर त्याये। गुरमुख शब्द पछाणिए हर अमृत नाम समाए। गुर ज्ञान प्रचंड बलाया अज्ञान अंधेरा जाए। मन मुख मैले मल परे हों मैं तृष्णा विकार। बिन शब्द मैल ना उतरे मर जम्मे हुए खुआर। तातुर बाजी पलच रहे ना उर्वार न पार। गुरमुख जप तप संजमे हर के नाम

ऐनस भगत करे दिन राती होमे मार निचिंद वड्डे भाग सत्संगत पाई हर पाया सहज आनंद सो साधु बैरागी सोई हिरदय नाम वसाए अंतर लाग ना तामस मूले विच्चों आप गवाए नाम निधान सतगुरु।

लाग नानक शब्द रते हर नाम रंगाए बिन पै के ही लाग। श्री राग महला तीजा कर ही सौदा पाई है अंतर सब वत होए खिन खिन नाम समा

गुर प्रसादी मन वसे हौ मैं दूर करे एहो मन तावत ता रहे जा आपे नदर करे। पाई रे गुरमुखर नाम से आए नाम निधान सद मन वसे महली पावे थाओ रहाओ मन मुख मन तन अंध है तिसनो ठौर न ठाओ बहु जोनी पौंदा फिरे ज्यों सुन्ये कर काओ गुरमति कट।

कर कृपा में लायन हर नाम वस्या मन आए पोते जिन कै पुन है तिन सत्संगत में लाए पाई रे गुरमत साच रहाओ साचो साच कमावना।

समाए। बिन गुर महल ना पाईए, नाम ना प्राप्त होए, ऐसा सतगुर लोड़ लहो, जिद्दू पाईए सच सोए, असुर संगारे सुख वसे, जो तिस पावे सो होए, जेहा सतगुर कर जानिया, ते हो जेहा सुख होए, एहो सहसा मूले नाही पाओ लाए जन कोए, नानक एक

मन रे सदा पजो हर सरनाई, गुर का शब्द अंतर वसे है ता हर विसर न जाई। रहाओ इहो शरीर माया का पुतला, विच हो मैं दुष्टि पाई, आवन जाना जम्मन मरना मनमुख पत गवाई। सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलाई, सतगुर की सेवा अत सुखाली, जो इच्छे सो फल पाए, जत सत तप पवित्र शरीरा हर हर मन वसाए। सदा आनंद रहे दिन राती, मिल प्रीतम सुख पाए, जो सतगुर की

पाई रे गुर बिन भगत ना होए, बिन गुर भगत ना पाई है, जे लोचे सब कोए रहाओ, लख चौरासी फेर पया कामन दूजे भाए, बिन गुर नींद ना आवई दुखी रहन विहाए, बिन शब्द फिर ना पाई है बिरथा जन्म गवाए।

साए नानक रंग ना उतरे जो हर तुर छोड़िया लाए। श्री राग महला तीजा गुरुमुख कृपा करे भगत की जय बिन गुर भगत ना होई आपे आप मिलाए बूझे ता निर्मल होवे सोई हर जियो साचा साची बाणी।

बिछड़ जाए। जो किछ करना सो कर रहा, अवर न करना जाए। चिरी विछुन्ने मेलियन सतगुर पन्ने पाए, आपे कार कराए सी अवर न करना जाए। मत तन रत्ता रंग स्यों होमे तज विकार, एनस हृदय रव रहे।

देवन वाले कै हाथ दात है, गुरु द्वारे पाए, जेहा की तुन तेहा हुआ, जेहे कर्म कमाए, जात सत संजम नाम है।

पाए गुर कै शब्द जीवत मरे हर नाम वसै मन आए। सुन मन मेरे पाच सत गुर सरना गुर प्रसादी छुट्टी है बिख पवजल शब्द गुर तरना। रहाओ त्रै गुण सभा तात है दूजा पाओ विकार पंडित पढ़े बंधन मोह बाधा ने बूझे बिखिया प्यार। सतगुर मिले तृप्ति छूटे चौथे पद मुक्त द्वार। गुर ते मार्ग पाये चूके मोह गुबार शब्द मरे ता उदरे पाए मोख द्वार। गुर प्रसादी मिल रहे सच नाम करतार एहो मनुआ अत

गुर पाये हर नामो दे दृढ़ाए, बिन गुर किने न पायो बिरथा जन्म गवाए। मन मुख कर्म कमावणे दरगे मिले सजाए, मन रे दूजा पाव चुकाए। अंतर तेरे हर वसे गुर सेवा सुख पाए। रहाओ सच बाणी सच शब्द है जा सच तरे प्यार। हर का नाम मन वसे होमे क्रोध निवार। मन निर्मल नाम से आये ता पाए मोख द्वार। होमे विच जग बिन सदा मर जमे आवे जाए। मन मुख शब्द ना जाननी जासन पत गवाए। गुर सेवा न पाई है सच्चे रह समाए। शब्द मने गुर पाई है विच्चों आप गवाए। अमदिन भगत करे सदा साचे की लिवलाए। नाम पदार्थ मन

आया त्यों जाए। मनमुख जन्म बिरथा गया क्या मोह देसी जाए। सब किछ आपे आप है हौ मैं विच कहन ना जाए। गुर कै शब्द पछाणिए दुख हौ मैं विचों गवाए। सतगुर सेवन आपना हौ तिन कै लागू पाए। नानक दर सच्चै सच्यार है हौ तिन बलिहारे जाओ। श्री राग महला तीजा। जे वेला वक्त विचारिए ता कित वेला भगत।

मन तन शीतल सात्स्यों सास न बिरथा कोए। मेरे मन हर का नाम ध्याए, साची भगत तांसी है जा हर वसै मन आए। रहाओ सहजे खेती राही है, सच नाम बीज पाए।

अपना पाओ तिन पायोन जिन गुरु का शब्द विचार सत संगति सदा मिल रहे सच्चे के गुणसार दुबदा मैल चुकायन हर राख्या उरदार सच्ची बाणी सच मन सच्चे नाल प्यार मन मेरे हो मैं मैल पर नाल हर निर्मल सदा सोना शब्द सवारण हार रहाओ सच्चे शब्द मन मोहया प्रभ आपे लय मिलाए अंदिन नामे रते।

जिना सच नाम आधार, गुर शब्दी सच पाया दुख निवारण हार। सदा सदा साचे गुण गावे साचे नाए प्यार, कृपा करके अपनी दितोन भगत पंडार। मन रे सदा आनंद गुण गाए, सच्ची बाणी हर पाये हर स्यों रह समाए। रहाओ सच्ची भगती मन लाल थिया रत्ता सह सुवाए, गुर शब्दी मन मोहया कहना कछु न जाए। जेवा रत्ती शब्द सच्चे अमृत पीवे रस गुण गाए, गुरमुख एहो रंग पाये जिसनो कृपा करे रजाए। संसार एहो संसार है सुतिया रहन विहाए, एक अपने पाने कड लयन आपे लेन मिलाए। आपे ही आप मन वस्या माया मोह चुकाए, आप वडाई दितियन गुरमुख दे बुझाए। सबना का दाता एक है पुलिया ले समझाए, एक आपे आप खुआयन दूजे छड़ियन लाए। गुरमती हर पाई

गुर शब्दी मन रंगिया रसना प्रेम प्यार बिन सतगुर किने न पायो कर वेखो मन विचार मन मुख मैल न उतरे जिचर गुर शब्द ना करे प्यार मन मेरे सतगुर के पाने चल निज कर वसे अमृत पीवे ता सुख लह महल रहाओ अवगुणवंती गुण को नहीं बैन न मिले हदूर मन मुख शब्द न जाने अवगुण सो प्रभ दूर जिन्नी सच पछाणिया सच रते भरपूर गुर शब्दी मन वेदिया प्रभ मिलिया आप हदूर आपे रंगन रंगियोन शब्दे लयोन मिलाए सच्चा रंग ना उतरे जो सच रते लिवलाए चारे कुंडा पव थके मन मुख बूझ न पा।

मिल प्रीतम दुख कटिया शब्द मिलावा होए, सच खटना सच रास है सच्चे सच्ची सोए, सच मिले से ना बिछड़े नानक गुरमुख होए।

बिना सुखे सुख विहाय। ज्ञान विहूणी पिर मुतिया पिरम न पाया जाए, अज्ञान मति अंधेर है बिन पिर देखे पुख ना जाए।

कारवार पाया अपना हों में दूर करे, नानक सो बावंतिया सुहागणी अंदिन भगत करे। श्री राग महला तीजा, एक पिर रावे अपना हों।

किस दूर, जिन पिर संगे जानिया पिर रावे सदा हदूर। मुंदे तू चल गुर के पाए, आन दिन रावे फिर अपना सहजे सच समाए। रहाओ शब्द रतिया सुहागणी सच्चे शब्द सिंगार, हर वर पायन कर अपने गुर कै हेत प्यार। सेज सुहावी हर रंग रवे भगत परे पंडार, सो प्रभ प्रीतम मन वसे जे सबसे दे आधार। फिर सालाहन अपना तिनके हो सद बलिहार।

गुरमती नाम सलाही है, दूजा अवर न कोई रहाओ। धर्म राय नो हुक्म है, बह सच्चा धर्म विचार। दूजे पाए दुष्ट आत्मा, ओ तेरी सरकार। अध्यात्मी हर गुण तास, मन जपे एक मुरार। तिनकी सेवा धर्म राय करे, तन सवारण हार। मन के विकार मनह तजे, मन चूके मोह अभिमान। आत्म राम पछाणिया, सहजे नाम समान। बिन सतगुरु मुक्त ना पाईए, मन मुख फिरे दीवान। शब्द नाची ने कथनी बदनी करे, बिख्या माए समान। सब किछ आपे आप है, दूजा अवर न कोए। ज्यों बोलाए त्यों बोलिए, जा आप बुलाए सोए। गुरमुख बाणी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। नानक नाम समाल तू, जित सेवे सुख होए। श्री राग महला तीजा। जग हो मैं मैल दुख पाया, मल लागी दूजे भाए। मल हो मैं तोती किवे ना उतरे, जे सो तीर्थ नाए। बहुविध कर्म कमाव

गुर शरण आवे ता निर्मल होए। मनमुख हर हर कर थके मैल न सकी तोए। रहाओ मन मैले भगत ना हो वही नाम ना पाया जाए। मनमुख मैले मैले मोए जासन पत गवाए।

कर पहला मैं मन तन बिरहो अत अगला क्यों प्रीतम मिले कर आए जा देखा प्रभ अपना प्रभ देखे दुख जाए जाए पुछा तिन सजना प्रभ कित बिद मिले मिलाए मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवरना कोए हम मूरख मुगत शरणागति कर कृपा मेले हर सोए रहाओ सतगुर दाता हर नाम का प्रभ आप मिलावे सोए सतगुर हर प्रभ बुझिया गुर जेवड अवरना कोए हौ गुर शरणाई टह पवा कर दया मेले प्रभ सोए।

कूड कपट किने न पायो, जो बीजे खावे सोए सबना तेरी आस प्रभ, सब जी तेरे तू रास प्रभ, तुद्दो खाली को नहीं दर गुरमुखा नो सावास, बिख पौजल डुब दे कड ले जन नानक की अरदास। श्री राग महला चौथा। नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नामे त्रिग जीवास, कोई गुरुमुख सज्जन जे मिले मैं दसे प्रभ गुणतास, हों तिस विट्टो चौखनी है मैं नाम करे प्रगास, मेरे प्रीतमा हों जीवा नाम ते आए, बिन नामे जीवन ना थी है, मेरे सतगुरु नाम दृढ़ाए, रहाओ नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुरु पास, सतगुरु सेवे लग्या कड़ रतन देवे प्रगास, तन वड पागिया जो आए मिले गुरु पास, जिना सतगुरु पुरख ना पेटेओ से पागहीन बस काल, ओए फिर जोन पवाइए विच विस्ता कर विकराल, ओना पास दुआस ना पिटिए जिन अंसर क्रोध चंडाल, सतगुरु पुरख अमृत सर वड पागी नावे आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दृढ़ाए, जन नानक उत्तम पद पाया सतगुरु की निवलाए। श्री राग महला चौथा। गुण गावा गुण विथरा गुण बोली मेरी माए, गुरमुख सज्जन गुण कारिया मिल सज्जन हर गुण गाए, हीरे हीर मिल बेदिया रंग चलू लेनाए, मेरे गोविंदा गुण गावा त्रिपत मन होए, अंतर प्यास हर नाम की गुर तुस मिलावे सोए, रहाओ मन रंगो वड पागियो गुर तुठा करे पसाओ, गुर नाम दृढ़ाए रंग स्यो हों सतगुर के बल जाओ, बिन सतगुर हर नाम न लब्बई लख कोटि कर्म कमाओ, बिन पागा सतगुर ना मिले कर बैठिया निकट नित पास, अंतर अज्ञान दुख परम है विच पड़दा दूर पयास, बिन सतगुर पेटे कंचन नासी है मन मुख लो बूढ़ा बेड़ी पास, सतगुर बोहित हर नाम है कित बिद चढ़िया जाए, सतगुर के पाने जो चले विच बोहित बैठा आए, तन तन वड पागी नानका जिना सतगुर ले मिलाए। श्री राग महला चौथा। हों

सतगुरु नो सब को लोचदा जेता जगत सब कोए बिन पागा दर्शन ना थिए पागहीन बैरोए जो हर प्रभ पाना सोचिया तुर लिखिया ना मेटे कोए आपे सतगुर आप हर आपे मेल मिलाए आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए सब जग जीवन जग आप है नानक जल जले समाए। श्री राग महला चौथा। रस अमृत नाम रस अत पला कित बिद मिले रस खाए जाए पुछो सुहागनी तुसा क्यों कर मिलिया प्रभु आए ओए वे परवा ना बोलनी हौ मल मल तो वा तिन पाए पाई रे मिर सज्जन हर गुण सार सज्जन सतगुरु पुरख है दुख कड्डे हौ मैं मार रहाओ गुरुमुखिया सुहागणी तिन दया पई मन आए सतगुरु वचन रतन है जो मन्ने सो हर रस खाए सेवड पागी वड जानिए जिन हर रस खादा गुर पाए एहो हर रस वन तिन सबत है पाग हीन नहीं खाए बिन सतगुर पल्ले ना पवे मन मुख रहे बिल लाए ओए सतगुर आगे ना निले ओना अंतर क्रोध बलाए हर हर हर रस आप है आपे हर रस होए आप दया कर देवसी गुरमुख अमृत चोए सब तन मन हरिया होया नानक हर वसिया मन सोए। श्री राग महला चौथा। दिन चढ़े फिर आठवें रैन सवाई जाए आव कटे नर न बुझे नित मूसा लाज चुकाए गुड़ मिठा माया पसरिया मन मुख लग माखी पचै पचाए पाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए पुत कलत मोह बिख है अंत बेली कोय न होए रहाओ गुरमत हर लिव उबरे अलिपत रहे सरनाए ओनी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पत पाए गुरमुख दर गए मनिए हर आप ले गल लाए गुरमुखानो पंथ प्रगटा दर ठाक न कोई पाए हर नाम सलाहन नाम मन नाम रहन लिव लाए अनहद तुनी दर वजदे दर सच्चे सोबा पाए जिनी गुरमुख नाम सलाया तिना सब को कहे सवा।

रस भोगें खुशिया करें माने रंग अपार बोध करें फुरमाइसी वरते हुए अपार करता चितना आवई मन मुख अंध गवार मेरे मन सुखदाता हर सोए गुर प्रसादी पाये कर्म प्राप्त होए रहाओ कपड़ भोग लपटाया सोयना रूपा खाक हैवर गैवर बहुरंगे किए रथ अथाक किसी चित न पावही।

सोसन तुझे अनित, अहंकार करे अहंकारिया, व्याप्या मन की मत, तिन प्रभु आप पुलाया, ना तिस जात ना पत, सतगुर पुरख मिलाया, इको सज्जन सोए, हर जन का राखा एक है, क्या मानस हो मैं रोए, जो हर जन पावे सो करे, दर फेर ना पावे कोए, नानक रता रंग हर, सब जग में चानन होए, श्री राग महला पंजवा, मन बिलास बहु रंकना, दृष्ट पूल खुशिया, छत्र तार बाद साया, विच सहते परिया, पाई रे सुख साध संग पाया, लिखिया लेख तिन पुरख विदाते, दुख सहसा मिट गया, रहाओ जेते थान सनंतरा, तेते पव आया, तन पाती वड भूमिया, मेरी मेरी कर परया, हुक्म चलाए निसंग होए, वरते अफरिया, सबको वसगत कर लेन, बिन नामे खाक रलिया, कोट तेपी सेवका, सिद साधक दर खरिया, गिरंबारी वड साहेबी, सब नानक सुपंथिया, श्री राग महला पंजवा, पलके उठ पपोलिए, बिन बुझे मुग्ध अजान, सो प्रभ चित न आयो।

पंजवा कड़ी मौत का पाहुना काज सवारन हारे माया काम व्यापिया समझे नहीं गवार उठ चलिया पछताया परया वस जंदार अंधे तू बैठा कंदी पाहे जे हो भी पूरब लिखिया ता गुर का बचन कमाहे रहाओ हरी नाही ने डडुरी पक्की वडन हार ले ले दात पहुत्या।

बात जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ गुरते महल प्राप्ते जिस लिखिया हो वह मत मेरे मन एकस्यों चित लाए एकस बिन सब तंद है।

तिन सतगुर चरण गहे। सफल मूरत सफला कड़ी जिस सच्चे नाल प्यार, दुख संताप ना लग गई जिस हर का नाम आधार। बाह पकड़ गुर काड़े।

तपना आठ पहर प्रभ त्याय तू गुण गोविंद नित गाओ रहाओ तिसकी सरनी परमना जिस जेवड अवरना कोए जिस सिमरत सुख होए कणा दुख दर्द ना मूले होए सदा सदा कर चाकरी प्रभ साहिब सच्चा सोए साध संगत होए निर्मला कटिए जम की फास सुख दाता पै पंजनो।

मेरे मन हर हर नाम ते आए, नाम सहाय सदा संग आगे ले छड़ाए रहाओ। दुनिया किया वडियाया कवने आवे काम, माया

उपाव स्याणप सगल छाड़े गुर की चरणी लाग तिसे प्राप्त रतन होए जिस मस्तक होवे पाग तिसे प्राप्त पाई हो जिस देवे प्रभ आप सतगुर की सेवा सो करे जिस बिन सहो मैं ताप नानक कहो गुर पेटिया बिन से सगल संताप। श्री राग महला पंजवा। एक पछाणु जी का इको रखनहार इकस का मन आसरा इको प्राण आधार तिस शरणाई सदा सुख पार ब्रह्म करतार। मन मेरे सगल उपाव त्याग गुर पूरा आराध नित इकस की लिव लाग रहाओ इको पाई मित इक इको मात पिता इकस की मन टेक है जिन जियो पिंड दिता सो प्रभ मनो न विसरे जिन सब किछ वस कीता। कर इको बाहर इको थान सनंतर आप जी जंत सब जिन

जिना सतगुर स्यों चित लाया से पूरे प्रधान। जिनको आप दयाल होए तिन उपजे मन ज्ञान, जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम। मन मेरे एको नाम से आए।

काल साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल। जन्म मरण की मल कटी है गुरु दर्शन देखने हाल। थान थान अंतर रब रहा।

वड पागी मिल संगति सच्चा शब्द विसाहो कर सेवा सुख सागर है सिरसाहा पास साहो चरण कमल का आसरा दूजा नाही ठाओ मैं तर तेरी पार ब्रह्म तेरे तान रहाओ निमाणया प्रभु मान तू तेरे संग समाओ हर जपिए आराधिए आठ पहर गोविंद जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दोख उतारियन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तिस सच्यों मरे ना आवे जाए ना वे छोड़िया विछड़े सब में रहा समाए दीन दर्द दुख पंजना सेवक के सत भाए अचरज रूप निरंजनो गुर में लाया माए पाई रे मीत करो प्रभ सोए माया मोह प्री त्रिग सुखी ना दिसे कोए रहाओ दाना दाता सीलवंत निर्मल रूप अपार सखा सहाय अत वड़ा ऊंचा वड़ा अपार बालक बिरद ना जानिए।

किल विखिरै मन तन होवे शांत। एक मन एक त्याय मन की लाए भ्रांत। गुण निधान नव तन सदा पूरन जा की दात। सदा सदा आराध्य दिन विसरो नहीं रात। जिनको पूरब लिखिया तिनका सखा गोविंद। तन मन तन अर्पी सबो सगल वारिय एह जिंद। देखे सुने हदूर सद कट कट ब्रह्म रविंद। अकिर्त कणा नो पालदा प्रभ नानक सद बख्शिंद। श्री राग महला पंजवा। मन तन तन जिन प्रभ दिया रखिया सह सवार। सर्व कला करथा पिया अंतर जोत अपार। सदा सदा प्रभ सिमरी अंतर रख उधार। मेरे मन हर बिन अवर न कोय प्रभ शरणाई सदा रहो। दुख ना व्यापे कोय रहाओ रतन पदार्थ मान।

मनमुख पस ना पाक अंतर बाहर रव रहा तिसनो जाने दूर तृष्णा लागी रच रहा अंतर हो मैं कूर भगति नाम विहुणिया आवे मंजे पूर राख ले हो प्रभ करणहार जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखनहार महा बिकट जम पया नानक।

जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सुआओ। ऐसे मिले वडियाईया दरगे पावे थाओ, करे कराए आप प्रभ सब किछ तिस ही हाथ, मार आपे जी वालदा अंतर बाहर साथ, नानक प्रभ शरणागति सर्व कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवा। शरण पए प्रभ अपने गुरु होआ कृपाल, सतगुर के उपदेश है बिनसे सर्व जंजाल, अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल, मन मेरे सतगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी एक निमख ना मनो विसार, रहाओ गुण गोविंद नित गाविए अवगुण कट्टन हार, बिन हर नाम ना सुख होए कर डिठे विस्तार, सहजे सिफती रत्या पवजल उतरे पार, तीरथ वर्त लख संजमा पाये साधु दूर, लूक कमावे किस्ते जा वेखे सदा हदूर, थान थनंतर रव रहा प्रभ मेरा परपूर, सच पात साही अमर सच सच्चे सच्चा थान, सच्ची कुदरत तारियन सच सिरज्योन जहान, नानक जपिए सच नाम हो सदा सदा कुर्बान। श्री राग महला पंजवा। उद्दम कर हर जापना वड पागी तन खाट, संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काट, मन मेरे राम नाम जप जाप मन इच्छे फल पुंच तू, सब चूके सोग संताप, रहाओ जिस कारण तन तारिया सो प्रभ डिठा नाल, जल थल मैयल पूरिया प्रभ अपनी नजर निहाल, मन तन निर्मल होया लागी साच परीत, चरण पजे पार ब्रह्म के सब जप तप तिन ही कीत, रतन जवे हर मान का अमृत हर का नाओ, सुख सहज आनंद रस जन नानक हर गुण गाओ। श्री राग महला पंजवा। सोई सासत सौन सोए जित जपिए हर नाओ, चरण कमल गुर तन दिया मिलिया निथावे थाओ, साची पूंजी सच संजमो आठ पहर गुण गाओ, कर कृपा प्रभ पेटिया मरण न आवन जाओ, मेरे मन हर पज सदा एक रंग, कट कट अंतर रव रहा सदा सहाई संग, रहाओ सुखा की मित क्या गणी जा सिमरी गोविंद, जिन चाखिया से तृप्ता सिया ओह रस जाने जिंद, संता संगत मन वसे प्रभ प्रीतम बख्शिंद, जिन सेव्या प्रभ आपना सोई राज नरिंद, अवसर हर जस गुण रमन जित कोट मज्जन स्नान, रसना उचरे गुणवती कोय न पुजे दान, दृष्ट तार मन तन वसे दयाल पुरख मेहरवान, जियो पिंड तन तिसदा हो सदा सदा कुर्बान, मिलिया कदे ना विछड़े जो मेलिया करतार, दासा के बंधन कटिया साचे सिरजनहार, पूला मार्ग पायोन।

परवदगार साला ही है जिस दे चलत अनेक सदा सदा आराधी है एहा मत विशेख मन तन मिठा तिस लगे जिस मस्तक नानक लेख श्री राग महला पंजवा संत जनो मिल पाइयो सच्चा नाम समाल तोसा बंदो जी का एथे ओथे नाल गुरपुरे ते पाईए अपनी नदर निहाल करम प्राप्त तिस होवे जिसनो होए दयाल मेरे मन गुर जेवड़ अवर न कोए दूजा थाओ ना पोस जाए गुर मेले सच सोए रहाओ सगल पदार्थ तिस मिले जिन गुर डिठा जाए गुर चरणी जिन मन लगा सेवड़ पागी माए गुरदाता समरथ गुर गुर सब में रहा समाए गुर परमेश्वर पार ब्रह्म गुर डुबदा ले तराए कित मुख गुर साला ही है करण कारण समरथ से मथे नहीं चल रहे जिन गुर तारिया हाथ गुर अमृत नाम पिया लिया जन्म मरण का पथ गुर परमेश्वर सेविया पै पंजन दुख लथ सतगुर गहर गंभीर है सुख सागर अग खंड जिन गुर सेविया अपना जम दूत ना लागे।

क्या तू रत्ता ग्रस्त्यों सब फुला की बागात मेरी मेरी क्या करे जिन दिया सो प्रभलोड सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़ लख चौरासी भरमत्या दुलभ जन्म पाए हुए नानक नाम संभाल तू सो दिन नेड़ा आए।

मन बैराग भया दर्शन देखने का चाओ तन सो तेरा थान रहाओ। जिचर वस्या कंत कर जियो जियो सब कहात जा उठी चलसी कंतड़ा ता कोई ना पुछे तेरी बात। पेयरण सौ सेव तू सौरण सुख वस गुरमिल चज अचार सिख तुद कदे ना लगे दुख। सबना सौरे वंजना सब मुकलावन हार नानक तन सुहार।

दुख कलेश ना पौ व्यापै, गुरु मंत्र हृदय होए, कोट जतना कर रहे गुरबिन तरयो ना कोए, देख दर्शन मन साधार है, पाप सगले जाहे, हों तिनके बलिहारण है, जे गुर की पैरी पाहे, साध संगत मन वसे साच हर का नाओ, सेवड पागी नानका जिना मन एहो पाओ, श्री राग महला पंजवा, संच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल विकार, जिन तू साज सवारिया हर सिमर होए उधार, जप मन नाम एक अपार, प्राण मन तन जिन्हें दिया हृदय का आधार, रहाओ काम क्रोध अंकार माते व्याप्या संसार, पौ संत सरणी लाग चरणी मिटे दुख अंधार, सत संतोख दया कमावे ए करनी सार, आप छोड़ सब होए रेणा जिस दे प्रभ निरंकार, जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार, कहो नानक गुरु।

छह छुट्टी है जिन अंदर नाम निदान, गुरजेवर दाता को नहीं जिन दिता आत्मदान। आए से परवान है जिन गुर मिलिया सुभाए, सच्चे से तीरतिया दरगह बैसन जाए, करते हथ वडियाइया पूरब लिखिया पाए, सच करता सच करनहार सच साहेब सच टेक, सचो सच वखाणिए सचो बुद्ध विवेक, सर्व निरंतर रव रहा जप नानक जीवे एक। श्री राग महला पंजवा, गुर परमेश्वर पूजिए संतन लाए प्यार, सतगुरु दाता जी का सबसे दे आधार, सतगुरु बचन कमावणे सच्चा एहो विचार, बिन साधु संगत रत्या माया मोह सब चार। मेरे साजन हर हर नाम समाल, साधु संगत मन वसे पूरन होवे काल रहाओ, गुर समरथ अपार गुर वड़ पागी दर्शन होए, गुर अगोचर निर्मला गुर जेवड अवर न कोए, गुर करता गुर करनहार गुरमुख सच्ची सोए, गुर ते बाहर किछ नहीं गुर कीता लोड़े सो होए, गुर तीरथ गुर पार जात गुर मनसा पूरन हार, गुरदाता हर नाम दे उदरे सब संसार, गुर समरथ गुर निरंकार गुर ऊंचा अगम अपार, गुर की महिमा अगम है क्या कथे कथन हार। जितड़े फल मन बाछिए तितड़े सतगुर पास, पूरब लिखे पावणे साच नाम दे रास, सतगुर सरणी आया बहुड़ नहीं विनाश, हर नानक कदे ना विसरो एहो जियो पिंड तेरा साथ। श्री राग महला पंजवा, संत जनो सुन पाई हो छूटन सा चैन आए, गुर के चरण सरेवणे तीरथ हर का नाव, आगे दरगह मनिए मिले निथावे थाव, पाई रे साची सतगुर सेव, सतगुर तुठे पाई है पूरन अलख अभेव रहाओ, सतगुर विटो वारिया जिन दिता सच नाव, अंदिन सच सलाहना सच्चे के गुण गाओ, सच खाना सच पहनना सच्चे सच्चा नाओ, सास गिरास ना विसरे सफल मूरत गुर आप, गुरजेवड अवर ना दिसई आठ पहर किस जाप, नदर करे ता पाई है सच नाम गुणतास, गुर परमेश्वर एक है सब में रहा समाए, जिनको पूरब लिखिया से ही नाम से आए, नानक गुर शरणागति मरे ना आवे जाए।

ना जापी केतड़ा लिख ना जाने कोए जे सौ शायर मेली है तिल ना पुजावे रोए कीमत किने न पाया सब सुन सुन आखें सोए पीर पे काम सालक साधक सौदे और शहीद शेख मसाइक काजी मुल्ला दर दरवेश रसीद बरकत तिन को अगली पढ़दे रहन दरूद पुछन ना साजे पुछ ना टाहे पुछ ना दे वैले अपनी कुदरत आपे जाने आपे करण करे।

जिथे वसे मेरा पासा हो सो केवड़ है खाओ अंबड़ कोए ना सकई हों किसको पुछन जाओ वरना वरन ना पावनी जे किसे वड़ा करे वड़े हाथ वड़े आईया जय पावे तै दे हुक्म सवारे आपने चसाना तिल करे सब को आखे बहुत बहुत लैने के विचार केवड़ दाता आखी है।

साची प्रीत ना टुटई साचे मेल मिलाओ। शब्द रती मन वेदिया हो सद बलिहारे जाओ। सा तन रंड ना बैसई जे सतगुर माए समाए। फिर रिसालू नौ तनो साचो मरे न जाए। नित रवे सुहागणी साची नजर जाए। साच तड़ी तन मांडिये कापड़ प्रेम सिगार। चंदन चीत वसाया मंदर दसवां द्वार। दीपक शब्द विगासया राम नाम उरहार। नारी अंदर सोहणी मस्तक मणि प्यार। शोभा सुरत सुहावणी साचे प्रेम अपार। बिन पिर पुरख न जाने साचे गुर कै हेत प्यार। निस अंधियारी सुतिए क्यों फिर बिन रैन विहाय। अंक जलो तन जालियो मन तन जल बल जाए। जा तन कंत

आवे जाए आपे निर्मल एक तू होर बंदी तंदे पाए गुर राखे से उबरे साचे स्यों लिवलाए। हर जियो शब्द पछाणिए साच रते गुरवाक तित तन मैल ना लग गई सच कर जिस ओताक नजर करे सच पाईए बिन नावे क्या साक जिन्नी सच पछाणिया।

त्यों मानसा पवे अचिंता जाल रहाओ। सब जग बादो काल को बिन गुर काल अफार, सच रते से उबरे दुबदा छोड़ विकार। हौं तिनके बलिहारण दर सच्चे सच्यार, सीचाने ज्यों पंखियां जाली बद्दक हाथ, गुर राखे से उबरे होर फाथे चोगे साथ। बिन नामे चुन सुतिये कोई न संगी साथ।

पिर परदेसी जेती है तन वांडी चूरे ज्यों जल सोरे मछली करण पलाव करे फिर पावे सुख पाई है जा आपे नदर करे फिर साला ही अपना सखी सहेली नाल तन सो है मन मोहया रत्ती रंग निहाल सबत सवारी सोहनी फिर रावे गुण नाल कामन काम ना आवे खोटी अवगणियार ना सुख पेई है सहुरे झूठ जली बेकार आव

दर कर ठाक न होए, नानक एक और अव रहा दूजा अवर न कोए। श्री राग महला पहला, गुर ते निर्मल जानी है निर्मल देह शरीर, निर्मल साचो मन वसै सो जाने अब पीर, सहजे ते सुख अगलो ना लागे जम तीर, पाई रे मैल नाही निर्मल जल नाए, निर्मल साचा एक तू होर मैल परी सब जाए, रहाओ हर का मंदर सोहना किया करने हार, रव सस दी

देख निरंजन पाए। गुपत प्रगट सब जानिए जे मन राखे ठाए, ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे ले मिलाए। कस कस वट्टी लाइए परखे हित चित लाए, खोटे ठौर न पाए नी खरे खजाने पाए। आस अंदेसा दूर कर क्यों मल जाए समाए, सुख को मांगे सबको दुख ना मांगे कोए। सुख है को दुख अगला मन मुख बूझ ना होए, सुख दुख सम कर जानिए शब्द पेद सुख होए। वेद पुकारे वाचिए बाणी ब्रह्म व्यास, मुन जन सेवक साधका नाम रते गुणतास। सच रते से जिन गए हो सद बलिहारे जास, चौ जुग मैले मल परे जिन मुख नाम ना होए। भगती पाए विहूनिया मोह काला पत खोए, जिन्नी नाम विसारिया अवगुण मुठी रोए। खोजत खोजत पाया डर कर मिले मिलाए, आप पछाने कर वसे हों मैं तृष्णा जाए। नानक निर्मल उजले जो राते हर नाए, श्री राग महला पहला। सुन मन पूले बावरे गुर की चरणी लाग, हर जप नाम से आए तू जम डर पे दुख पाग। दुख कणों दोहागनी क्यों थिर रहे सुहाग।

गुरुमत पत सावा तिस तिस कै संग मिलाओ, तिस बिन कड़ी ना जीवउ बिन नावे मर जाओ। मैं अंधले नाम ना विसरे टेक टिकी कर जाओ। गुरु जिना का अंधुला चेले नाही ठाओ, बिन सतगुरु नाव ना पाये बिन नावे क्या सुआओ। आए गया पछतावना ज्यो सुनजे कर काओ, बिन नावे दुख देहोरी ज्यो कलर की पीत। तब लग महल न पाईए जब लग साच न चीत, शब्द रपे कर पाईए निर्बाणी पदनीत। हों गुर पूछो आपने गुर पुछ कार कमाओ, शब्द सलाही मन वसे हों मैं दुख जल जाओ। सहजे हुए मिलावड़ा साचे साच मिलाओ, शब्द रते से निर्मले तज काम क्रोध अहंकार। नाम सलाहन सद सदा हर राखे उर्धार, सो क्यों मनो विसारिय सब जिया का आधार। शब्द मरे सो मर रहे फिर मरे ना दूजी वार, शब्द ही ते पाये हर नामे लगे प्यार। बिन शब्द जग पूला फिरे मर जन्मे वारो वार। सब साला है आपको वढो वडेरी होए, गुर बिन आप ना चीनिए कहे सुने क्या होए। नानक शब्द पछाणिए हो मैं करे न कोए। श्री राग महला पहला। बिन फिर तन सिगारिए जोबन बाद खुआर, ना माने सुख सेजड़ी बिन फिर बाद सिगार। दुख कणो दोहागणी ना कर सेज पतार, मन रे राम जपो सुख होए। बिन गुर प्रेम ना पाईए शब्द मिले रंग होए। रहाओ गुर सेवा सुख पाईए हर वर सह सिंगार। सच माने फिर सेजड़ी गूड़ा हे प्यार, गुरमुख जान सियाणिए गुर मेली गुणचार। सच मिलो वर कामणी फिर मोही रंग लाए, मन तन साच विकसिया कीमत कह न जाए। हर वर कर सुहागणी निर्मल साचे नाए। मन में मनुआ जे मरे ता फिर रावे नार, इकत तागे रल मिले गल मोतियन का हार।

ना तिस काल संताए। साहिब अतुल ना तोलिए कथन ना पाया जाए, वापारी बन जा रहा।

ना छुट्टी है ना पढ़ पुस्तक पार, काया सोच ना पाइए बिन हर भगत प्यार, नानक नाम ना विसरे मेले गुर करतार। श्री राग महला पहला, सतगुर पूरा जे मिले।

ज्ञान ध्यान तुन जानिए अकथ कहावे सोए सफल्यो बिरख हरि आवला साव कनेरी होए लाल जवे हरमान की गुर पंडारे सोए गुर पंडारे पाई है।

बिन जल मरण तिने हे। मन रे क्यों छूटे बिन प्यार, गुरुमुख अंतर रल रहा, बसे भगत पनार रहाओ। रे मन ऐसी हर्षों प्रीत करे, जैसी मछली नीर, ज्यों अधिको त्यों सुख कणो।

जग सद्या लब लोभ अहंकार मोह ठगौली हो मुई सावर कै संसार मेरे प्रीतमा मैं तुझ बिन अवर न कोए मैं तुझ बिन अवर न पावई तू पावे सुख होए रहाओ नाम सलाही रंग स्यों गुर कै सबद संतोख जोगी से सोचल सी कूड़ा मोह न वेख वाट वटाणु आया नित चलदा साथ देख आखन आखे केतड़े गुर बिन बूझ न होए नाम वडाई जे मिले सत रपे पत होए जो तुद पावे से पले खोटा करा न कोए गुर शरणाई छुटी है मन खोटी रास अष्ट तात पाप साहती करिए।

जिन तन मन साज सुधारिया तिस प्रीति निवलाए रहाओ। तन दे संतर होमिए इक रत्ती तोल कटाए, तन मन समदा जे करी अंदिन अगन जलाए। हर नामे तुल न पुजई जे लख कोटि कर्म कमाए, अर्ध शरीर कटाइए सिर करवत धराए। तन है मंचल गालिए ती मन के रोग न जाए, हर नामे तुल न पुजई सब जिठी ठोक बजाए। कंचन के कोट गत करी।

को ऊंचा आखिए नीच ना दूसै कोई, इतने पांडे साजे इक चानन के होलोए, कर्म मिले सच पाइए थोर बख्श ना मिटे कोई, साध मिले साधु जने संतोष वसे गुर पा।

जो सतगुरु माहि समाए ई अमृत संतोखिया दरगह पैदा जाए। कट कट वाजे किंगुरी अंदिन शब्द सुभाए, विरले को सोजी पई गुरमुख मन समझाए।

अग्न मरे जल पाई है, जो बार एक दूजे माए, बिन जल कमल सो ना की है, बिन जल मीन मराए, नानक गुरमुख हर रस मिले, जीवा हर गुण गाए। श्री राग महला पहला। डूंगर देख डरावनो पेयड़े डरियास, ऊंचो पर्वत गाखड़ो ना पौड़ी तित पास, गुरमुख अंतर जानिया गुर मेली तरियास, पाई रे पाव जल बिखम डराओ, पूरा सतगुर रस मिले, गुर तारे हर नाओ, रहाओ चला चला जे करी, जाना चलन हार, जो आया सो चलसी, अमर सो गुर करतार, ही सच्चा सालाहना सच्चे थान प्यार, दर कर महला सोहने पक्के कोट हजार, हस्ती कोड़े पाखरे लश्कर लख अपार, किसी नाल ना चलिया खप खप मोए असार, सोयना रूपा संचिए माल जाल जंजाल, सब जग में दो

निर्मले शब्द निवारी पाहे नानक करिए सतनाम सिर सारा पाप चाहो। मैं हर नाम ना विसरे हर नाम रतन वेसाहो। मन मुख पौ जल पच मोए गुरमुख करे अथाहो। श्री राग महला पहला कर दूजा मुकाम कर कर।

बिन सतगुर को मग न जाने अंधे ठौर न काई, हर सुख दाता मन नहीं बसया अंत गया पछताई। तेयड़े जग जीवन दाता गुरमत मन वसाया, अंग दिन भगत करे दिन राती हों मैं मोह चुकाया। जिस यों राता कैसो होवे सच्चे सच समाया, आपे नदर करे पाओ लाए गुर शब्दी विचार। सतगुर सेवे सहज उपजे हों मैं तृष्णा मार, हर गुण दाता सद मन वसे सच रखिया उद्धार। प्रभ मेरा सदा निर्मला मन निर्मल पाया जाए, नाम निधान हर मन वसे हों मैं दुख सब जाए। सतगुर शब्द सुनाया हों सद बलिहारे जाऊं, अपने मन चित कहे कहाए दिन गुर आप ना जाए। हर जियो भगत वचन सुख दाता कर कृपा मन वसाई, नानक सोबा सुरत दे प्रभ आपे गुरमुख दे वलियाई। श्री राग महला तीजा, हो मैं कर्म कमाव दे जम दंड लगे तिन आए, जे सतगुर सेवन से उबरे हर सेती लिवलाए। मन रे गुरमुख नाम ते आए, गुर पूरब करते लिखिया किना गुरमत नाम समाए। रहाओ जिन सतगुर प्रतीत ना आवई, नाम ना लागो पाओ सुपने सुख ना पावई, दुख में सवै समाए। जे हर हर की कै बहुत लोची है किरत ना मेटे आ जाए, हर का पाना भगती मनिया से भगत पय दर खाए। गुर शब्द दिलावे रंग स्यों बिन कृपा लया न जाए, जो सो अमृत नीरिय पी दिख फल लागे ताए। से जन सच्चे निर्मले जिन सतगुरु नाल।

आए अमृत फल हर एक है आपे देखवाए। मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना चाओ, तिन्ना पास ना बैठी है ओना कर ना गिराओ। कटिया तै नित जालिए ओना शब्द ना नाओ।

सच समाओ। हुक्म ना जाने बपुने पूले सिरे गवार, मन हट कर्म कमाऊं दे नित नित होए कुआर। अंतर सांत न आवई ना सच लगे प्यार, गुरमुखिया मोह सोहने गुर के हेत प्यार। सच्ची भगती सच रते दर सच्चे सच्यार आए।

नानक नाम वडाइया करम प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा। गुरुमुख नाम से आये मन मुख बूझ न पाए, गुरुमुख सदा मुख उजले हर वस्या मन आए। सहजे ही सुख पाये सहजे रह समाए, पाई रे दासन दासा होए। गुर की सेवा गुर भक्त है विरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुरु भाए। सदा फिर निंचल पाये ना ओ मरे न जाए, शब्द मिली न बिछड़े फिर कै अंक समाए। हर निर्मल अप उजला बिन गुर पाया न जाए, पाठ पड़े ना बूझई तेथी परम पुलाए। गुरमति हर सदा पाया रसना हर रस समाए, माया मोह चुकाया गुरमति सह सुवाए। बिन सबदे जग दुखिया फिरे मन मुखनो गई खाए। सबदे नाम के आये सबदे सच समाए, माया फूले सिद फिरे समाज ना लगे सुवाए। तीने लो व्यापत है अधिक रही लपताए, बिन गुरु मुक्त न पाए।

बिन शब्द परम न चूके ना विचों हो मैं जाए। बिन प्रीति भगत न हो वही बिन शब्द छाए न पाए। शब्द हो मैं मारिये माया का परम जाए। नाम पदार्थ पाये गुरमुख सह सुभाए। बिन गुरु गुण न जापनी बिन गुण भगत न होए। भगत वत्सल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्द हर्षा लाहिये करम प्राप्त होए। श्री राग महला की जा। माया मोह मेरे प्रभ कीना आके परम पुलाए।

मन तन अर्पी आप गवाई चलना सतगुर भाए सद बलिहारी गुर अपने बिटों जे हर सेती चित लाए सो ब्राह्मण ब्रह्म जोगिंदे हर सेती रंग राता प्रभ निकट वसै सबना कट अंतर गुरमुख विर ले जाता नानक नाम मिले।

सतगुरु मिले फेर ना पवे जन्म मरण दुख जाए। पूरे शब्द सब सोजी होई हर नाम रह समाए। मन मेरे सतगुरु से चित लाए निर्मल नाम सद नवतनो आप वसे मन आए। रहाओ हर जियो राखो अपनी शरणाई ज्यो राखे त्यों रहना। गुर के शब्द जीवत मरे गुरमुख पव जल करना। वड्डे पाग नाव पाईए गुरमुख शब्द सुहाई आपे मन वसिया प्रभ करता सहजे रहा समाई। इतना मनमुख शब्द न पावे बंधन बंद पवाया लख्यो राशि फिर आवे दिसा जन्म गवाया। पगता मन आनंद है सच्चे शब्द रंग राते अंगिन गुण गावे सब निर्मल सहजे नाम समाते। गुरुमुख अमृत बाणी बोले सब आत्म राम पछाणी एको सेवन एक आराधे गुरुमुख अकथ कहानी। सच्चा साहिब सेवी है गुरुमुख वसे मन आए सदा रंग राते सच सो अपनी कृपा करे मिलाए। आपे करे कराए आपे इतना सुतिया दे जगाए आपे मेल मिलाएगा नानक शब्द समाए। श्री राग महला तीजा सतगुरु सेवे मन निर्मला पय पवित्र शरीर मन आनंद सदा सुख पाया पेटिया जहर गंभीर। सच्ची संगत बैसना सच नाम मन तीर मन रे सतगुरु सेव निसंग सतगुरु सेवे हर मन वसे लगे न मैल पतंग। रहाओ सच्चे शब्द पत उपजे सच्चे सच्चा नाओ जिन्नी हो मैं मार पछाणिया हो तिन बलिहारे जाओ। मन मुख सच न जानी तिन ठौर न कथू था।

पुकार जम दर्ब दे मारिए फूक न सुने पुकार बिरखा जन्म गवाया मर जमे वारो वार एहो जग जलता देख के पज पे सतगुर शरणा सतगुर सत दिला

रोग ग्रस्त पुतंग पलेतिया कद हरख कदे सोग गौण करे चौकुंट का करी न बैसन सोए चित आवे।

एक लूक न देवे दर्शा, एक मन ही जाता काट ना किन ही कहाया, सब कहते हैं पाया जिस मेले सो पगता सगल उकत।

नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। एहो जगत परम पुलाया आपो तुध खुआया पर पाप लगा दोहाजनी पाग जिना के नाह जियो। दोहाजनी क्या निशानिया खसमो कुथिया फिर निमानिया मैले वे उसकिना कामनी दुखी रहन विहाय जियो। सुहागनी क्या कर्म कमाया पूर्व लिखिया फल पाया नदर करे कै अपनी आपे ले मिलाए जियो। हुकम जिनानो मनाया तिन अंतर शब्द वसाया सैया से सुहागनी जिनसे नाल प्यार जियो। जिना पाने का रस आया तिन विच्चों परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे ले मिलाए जियो। सतगुर मिले फल पाया जिन विच्चों ए करम चुकाया दुर्मत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक।

सतगुर मिले आ जानिए, जित मिले नाम वखानिए, सतगुर बाज न पायो, सब सच्ची कर्म कमाए जियो। ओं सतगुर विट्टो कुमाया, जिन परम पुला मार्ग पाया, नदर करे जे आपनी आपे लहर लाए जियो। तू सबना माहे समाया, तिन करते आप लुकाया, नानक गुरमुख प्रगट होया, जा को जोत करी सरकार जियो। आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड देश आजिया, अपने सेवक की तैग रखिया, दोए कर मस्तक तार जियो। सब संजम रहे स्यान पा, मेरा प्रभ सब कुछ जानदा, प्रगट प्रताप वरतायो, सब लोक करे जयकार जियो। मेरे गुण अवगुण ना विचारिया, प्रभ अपना बिरज समारिया, कंठ लाए कह रखियो न लगे न तकी वाओ जियो। मैं मन तन प्रभु ते आया, जिए इच्छेड़ा फल पाया, सा पाप सा सिर खसम तू, जप नानक जीवे नाओ जियो। तुद आपे आप उपाया, दूजा खेल कर दिखलाया, सब सच्चो सच वर्तदा, जिस पावे किसे बुझाए जियो। गुर प्रसादी पाया, तिथे माया मोह चुकाया, कृपा करके अपनी आपे ने समाए जियो। गोपी ने गोवाली

لگا پائے جیو سن گلاں گر کہ آیا نامدان اس نام دلایا۔

तप अंतर करे वन जा रहा मित्रा खसम सेती अरदास खसम सेती अरदास वखाने उर्द ध्यान लिव लागा नामर जाद आया।

ज्ञान त्यान गुण संजम नाही जन्म मरोगे झूठे। तीरत वर्त सुच संजम नाही कर्म तर्म नहीं पूजा नानक पाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा। तीजे पैरे रैन कैवन जा रहा मित्रा सर हंस उलखड़े आए जोबन कटे जरुआ जिने बन जा रहा मित्रा आव कटे दिन जाए। अंत काल पछतासी अंगले जहां जम पकड़ चलाया सब किछ अपना कर कर राखिया खिन में पया कराया। बुद्ध विसर्जी गई सियानप कर अवगुण पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चेतो लिवलाए। चौथे पहरे रहन के बन जा रहा मित्रा बिरद पया तन खीन अखी अंध न दिसई बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने न वैन। अखी अंध जीव रस नाही रहे परातो ताना गुण अंतर नाही।

मेरा मेरा कर पालिए वन जा रहा मित्रा ले मात पिता गल लाए लावे मात पिता सदा गल सेती मन जाने खट खवाए जो देवे तिसे ना जाने मूड़ा दिते नो लपटाए कोई गुरमुख होवे सो करे विचार हर त्यावे मन

कर्म कमाने जैसा लिख तुर पाया, मात पिता पाई सुख बनता तिन पीतर प्रभु संजोया। कर्म सो कर्म कराए आपे इस जनते वस किछ

अज्ञान अंधेरा कटिया, गुर ज्ञान पर चंड बलाया, बलिया गुर ज्ञान अंधेरा बिनसिया, हर रतन पदार्थ लादा, हो मैं रोग।

से आया। हर पुरुख ना कभी बिन सह जावे, नित देवे चढ़े सवाया। नानक संत संत हर एको, जप हर हर नाम सुहंदी, हर राम राम।

गोविंद नाम समा ले। मन प्यारिया जी मित्रा हर निभे तेरे नाले, संग सहाई हर नाम त्याई, बिरसा कोई न जाए। मन सिंधे से ही फल पावे, चरण कमल चित लाए। जल थल पूर रहा बनवारी, कट कट नदर निहाले। नानक सिख दे मन प्रीतम, साध संग प्रम जाले। मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे, मन प्यारिया जियो मित्रा बिख सागर संसारे। चरण कमल कर बोहित करते, सहसा दुख न व्यापे। गुरपुरा पे तैवड पागी, आठ पहर प्रभ जापे। आप जुगादि सेवक स्वामी, पगता नाम आधारे। नानक सिख दे मन प्रीतम, बिन हर झूठ पसारे। मन प्यारिया जियो मित्रा हर लगदे खेप सवली। मन प्यारिया

रूप में ताया। चित्रगुप्त का कागद फारिया, जमदूता कछु न चली। नानक सिख दे मन प्रीतम, हर लदे खेप सवली। मन प्यारिया जियो मित्रा, कर संता संग निवासो। मन प्यारिया जियो मित्रा, हर नाम जपत परगासो। सिमर स्वामी सुखे गामी, इच्छ सगली पुनिया। पुर्बे कमाए श्री रंग पाए, हर मिले चिरी चुनिया। अंतर बाहर सर्वत रविया, मन उपजिया विश्वासो। नानक सिख दे मन प्रीतम, कर संता संग निवासो। मन प्यारिया जियो मित्रा, हर प्रेम भगत मन लीना। मन प्यारिया जियो मित्रा, हर जल मिल जीवे मीना। हर पी अघाने अमृत बाने, सर्व सुखा मन उठे। श्री तर पाए मंगल गाए, इच पुनी सतगुर तुटे। लड़ लीने लाए नौ निद पाए, नाओ सर्व सुखा कर दीना। नानक सिख

जोन ना पावे नह मरी। सतगुर दयाल कृपाल पेटत हरे, काम क्रोध लोभ मारिया कथन न जाए अकस स्वामी, सद कह जाए ना।

हर हर उत्तम नाम है जिन श्रेया सब कोई जियो। हर जी सबे प्रतपाल का कट कट रमैया सोए, सो हर सदा त्याई है तिस बिन अवर न कोए। जो मोहे माया चित लाए दे से छोड़ चले दुख रोए, जन नानक नाम ते आया हर अंत सखाई होए। मैं हर दिन अवर न कोए, हर गुरसरण आई पाई है मन जारिया मित्रा, वड भाग प्राप्त होए रहाओ। संत जना विण पाया हर किने न पाया नाओ, विच हो मैं कर्म कमाव दे ज्यो वेसुआ पुत ने नाओ। पिता जात ता होई है गुर तुठा करे पसाओ, वद पागी गुर पाया हर एनस लगा पाओ। जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीरत कर्म कमाओ, मन हर हर लगा चाओ गुर पूरे नाम दृढ़ाया। हर मिलिया हर प्रवनाओ रहाओ, जब लग जोबन सांस है तब लग नाम से आए। चल जिया नाल हर चलसी हर अंते ले छड़ाए, हौ बलिहारी तिन तो जिन हर मन मुठा आए। जिनी हर हर नाम न चेत्यो से अंत गए पछताए, तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम से आए। मन हर हर पीत लगाए, वड पागी गुर पाया गुर सब्जी पार लगाए रहाओ। हर आपे आप उपायदा हर आपे दे वैले, हर आपे परम पुलायदा हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन प्रगास है से विरले के ही के, हौ बलिहारी तिन कौ जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल प्रगासिया मन हर हर उठड़ा है, मन हर हर जपन करे हर गुर शरण आई पज पो। जिंदु सब किलिक दुख पर हरे रहाओ, कट कट मैया मन वसे क्यों पाये कित पत। गुर पूरा सतगुर पेटिये हर आए वसे मन चित। मैं तर नाम आधार है हर नाम में ते गत मत, मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामे ही जत पत। जन नानक नाम तिराया रंग रतड़ा हर रंग रत, हर त्यावो हर प्रभ सत। गुरु बचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ। जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास, सेवक पाए बन जा रिया मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वणज वपारिया जिन वखर लगेड़ा हर रास, गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिन पाया जिना आप तुथा गुणतास, हर त्यावो सास गिरास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा। हर नाम जिना रह रास रहाओ।

आओ आपो जे को पला कहाए नानक ता पर जापे जा पत लेखे पाए। महला दूजा जिस प्यारे सो ने हो तिस आगे मर चली है त्रिग जीवन संसार ताके पाछे जीवना पौड़ी। तुद आपे तरती साजी है चंद सूरज दोए जीवे दस चार हट तुद साजिया व्यापार करीवे इकना नो हर लाभ दे जो गुरमुख सीवे तिन जम काल ना व्यापई जिन सच अमृत पीवे ओए आप छुटे परवार स्यों तिन पिछे सब जगत छुटीवे। श्लोक महला पहला कुदरत करके वस्या सोए वक्त विचारे सो बंदा होए कुदरत है कीमत नहीं पाए जा कीमत पाए ता कहीं ना जाए सरे सरयत करें विचार बिन बूझे कैसे पावे पार सिद्ध कर सिजदा मन कर मकसूद जे तिर देखा ते तिर मौजूद। महला तीजा गुरसभा एव ना पाईए ना नेड़े ना दूर नानक सतगुर ता मिले जा मन रहे हदूर। पौड़ी सपत दीप सपत सागरा नव खंड चार वेद दस अष्ट पुराणा हर सबना विच तू वरतदा हर सबना पाना सब तुझे त्यावे जी जंत हर सारग पाना जो गुरमुख हर आराध दे तिन्हों कुर्बाना तू आपे आप वरतदा कर चोज विडाना। श्लोक महला तीजा कलो मसाजनी क्या सदाई है हिरदे ही लिख ले हो सदा साहिब के रंग रहे कबू न कूटसने हो। कलो मसाजनी जायसी लिखिया भी ना ले जाए नानक सह प्रीत।

पौड़ी शिष्ट उपाय सब तुद आपे रिजक समाया एक वल छल करके खाम दे मुंह कूड़ कुसत तिन्नी ताया तुद आपे पावे सो करें तुद ओते कम कोय लाया इकना सच बुझायन तिना अतुट भंडार देवाया हर चेत खाहे तिना सफल है अचेता हथ तदाया। श्लोक महला तीजा पर पड़ पंडित बेद बखाने माया मोह सुआए दूजे पाए हर नाम विसारिया मन मूरख मिले सजाए जिन जियो पिंड दिता तिस कभू न चेते जो देंदा रिजक समाहे जम का पाथा गलो न कटिए फिर आवे जाए मन मुख किछु न सूजे अंगले पूरब लिखिया कमाए पूरे पाग सतगुर मिले सुख दाता नाम वसे मने आए सुख माने सुख पहनना सुखे सुख विहाए नान सो ना मनो ना विसारिये जित दर सच्चे शोभा पाए। महला तीजा सतगुर सेव सुख पाया सच नाम गुण तास गुरमति आप पछाणिया राम नाम प्रगास सचो सच कमावना वड्याई वड्डे पास जियो पिंड सब तिस्ता सिफत करे अरदास सच्चे सबद सलाहना सुखे सुख निवास जप तप संजम मने माहे बिन नावै त्रिग जीवास गुरमति नाउ पाईए मन मुख मोह विनाश ज्यो पावे त्यो रास तू नानक तेरा दास। पौड़ी सब को तेरा तू सब सदा तू सबना रास सब तुदे पासो मंग दे नित कर अरदास जिस तू दे तिस सब किछ मिले इकना दूर है पास तुद बाजो थाओ को नाही जिस पासो मंगिए मन वेखो को निर्जास सब तुदे नो सलाह दे दर गुरुमुखा नो प्रगास। श्लोक महला तीजा पंडित पढ़ पढ़ उच्चा फूकदा माया मोह प्यार अंतर ब्रह्म न चीनई मन मूरख दावार दूजे पाए जगत प्रबोध दा न बुझे विचार बिरथा जन्म गवाया मर जम्मे वारो वार। महला तीजा जिन्नी सतगुर सेविया तिन्नी नाव पाया बूझो कर विचार सदा सांत सुख मन वसे चूके कूक पुकार आपे नो आप खाए मन निर्मल होवे गुर शब्दी विचार नानक शब्द रते से मुक्त है हर जियो हेत प्यार। पौड़ी हर की सेवा सफल है गुरमुख पावे थाए जिस हर पावे तिस गुर मिले सो हर नाम त्याए गुर शब्दी हर पाए हर पार लगाए मन हट किन न पायो पुछो वेदा जाए नानक हर की सेवा सो करे जिस लय हर लाए। श्लोक महला तीजा नानक सो तूरावरियाम जिन विच्चों दुष्ट अंकरण मारिया गुरमुख नाम सलाहे जन्म सवारिया आप होवा सदा मुक्त सब कुल निस्तारिया सोहन सच द्वार नाम प्यारिया मन मुख मरे अंकार मरण विगारिया सबो वर्ते हुकम क्या करे विचारिया आपो दूजे लग खसम विसारिया नानक बिन नावे सब दुख सुख विसारिया। महला तीजा गुरपुरे हर नाम दिड़ाया तिन विच्चों परम चुकाया राम नाम हर कीरत गाई कर चावन मद दिखाया हों में मार एक लिव लागी अंतर नाम बसाया गुरमति जम जोहे न साके साके नाम समाया सब आपे आप वर्ते करता जो पावे सो नाई लाया जन नानक नाम ले ता जीवे बिन नामे खिन मर जाया। पौड़ी जो मिलिया हर दीवान स्यों सो सबनी दीवानी मिलिया जिथे ओ जाए तिथे ओ सुरखरू उसके मोह जिथे सब पापी करिया उस अंतर नाम निदान है नामों पर वरिया नाव पूजी।

सतगुरु विच नाम निदान है कर्म प्राप्त होए सच रखे गुर सब स्यों तिन सच्ची सदा लिव होए नानक जिसनो मेले ना विछड़े सहज समावे सोए महला तीजा सो पगवती जो भगवंत जाने गुर प्रसादी आप पछाने तावत राखे इकत कर आने जीवत मरे हर नाम वखाने ऐसा भगवती उत्तम होए नानक सच समावे सोए महला तीजा अंतर कपट भगवती कहाए पाखंड पार ब्रह्म कदे न पाए पर निंदा करे अंतर मल लाए बाहर मल तोवे मन की जूठ न जाए सत्संगत क्यों बाद रचाए अंगन दुखिया दूजे पाए रचाए हर नाम न चेते बहु कर्म कमाए पूर्व लिखिया सो मेटना न जाए नानक बिन सतगुरु सेवे मोख न पाए पौड़ी सतगुरु जिन्नी त्याया से कर न सवाही सतगुरु जिन्नी त्याया से त्रिपत अगाही सतगुरु जिन्नी त्याया तिन जम डर नाही जिनको हुआ कृपाल हर से सतगुरु कैरी पाही तिन ऐसे उठे मुख

सो ऐसा हर नाम से आये मन मेरे जो सबना ऊपर हुक्म चलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर लय छाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो गुरुमुख नाम जपिया वड पागी तिन निंदक दुष्ट सब कैरी पाए। नानक नाम अराग सबना ते वड़ा सब नाम अगै आन निवाए। श्लोक महला तीजा। वेश करे कुरूप कुलखणी मन खोटे कूड़ियार तिर के पाने ना चले हुक्म करे गावार। गुर के पाने जो चले सब दुख निवारण हार। लिखिया मेट न सकिए जो तुर लिखिया करतार। मन तन सौंपे कंत को सब दे तरे प्यार। बिन नावे किने न पाया देखो हृदय विचार। नानक सा सुवालियो सुलखणी जे रावी सिरजनहार। महला तीजा। माया मोह गुवार है तिसदा ना दिसे उरवार ना पार। मनमुख अज्ञानी मां दुख पाए दे डुबे हर नाम विसार। पलके उठ बहु कर्म कमावे दूजे पाए प्यार। सतगुर सेवे अपना पौजल उतरे पार। नानक गुरमुख सच समावे सच नाम उरधार। पौड़ी। हर जल तल मैयल भरपूर दूजा नाहे कोए। हर आप बह करे न्याओ कुड़ियार सब मार कडोए। सचियारा दे वड्याई हर धर्म न्याओ की ओए। सब हर की करो उस्तत जिन गरीब अनाथ राख।

सतगुर कै पाए प्यार, सदा रावे फिर आपना सच्चे प्रेम प्यार। अस सुवाल्यो सुंदरी शोभावंती नार, नानक नाम सुहागनी मेली मेलनहार। पौड़ी हर तेरी सब करें उस्तक जिन फाफे काढ़िया, हर तुदनो करें सब नमस्कार जिन पापे ते राखिया। हर निमाणिया तू मान, हर डाडी हूँ तू डाडिया, हर अंकारिया मार निवाए मनमुख मूड साध्या। हर पगता दे वड्याई गरीब अनाथिया। श्लोक महला तीजा सतगुरु।

कै पाने जो चले तिस वडे आई वड्डी होए हर का नाम उत्तम मन वसे मेट न सके कोए कृपा करे जिस आपनी तिस कर्म प्राप्त होए नानक कारण करते वस है गुरमुख बूझे कोए महला तीजा नानक हर नाम जिनी आराध्या अंदिन हर लिवतार माया बंदी खत्म की तिन अगे कमावे कार पूरे पूरा कर छोड़िया हुक्म सवारण हार गुर प्रसादी जिन बुझिया तिन पाया मोख द्वार मनमुख हुक्म ना जाननी तिन मारे जम जंदार गुरमुख जिन्नी आराध्या तिन्नी तरिया पौ जल संसार सब औगण गुणी मिटाया गुर आपे बख्शनहार पौड़ी हर की भगता प्रतीत हर सब किछ जानदा हर जेवड़ नाही कोई जान हर धर्म विचारदा कारा अंदेसा क्यों कीजे जा नाही अतर्म मारदा सच्चा साहिब सच न्याओ पापी नर हारदा साला हो।

सो प्रभ सदा सदा गुर कहे प्यार, नानक जिस नजर करे तिस मेल ले, साई सुहागण नार महला तीजा। गुर सेवा ते हर पाई है जा को नजर करे, मानस ते देवते पे त्याया नाम हरे। हौ मैं मार मिलायन गुर कै शब्द तरे, नानक सहज समायन हर अपनी कृपा करे पौड़ी। हर अपनी भगत कराए वड्याई वे खालियन, अपनी आप करे प्रतीत आपे सेव कालियन। हर भगतानो दे आनंद फिर करी बहालियन, पापियानो ना दे फिर रहने चुन नरक कोर चालियन। हर भगतानो दे प्यार कर अंग निस्तारियन। श्लोक महला पहला। कबुद डूमणी कुदया कसायन, पर निंदा कट चूड़ी मुठी क्रोध चंडाल। तारी कड़ी क्यासी है जा चारे बैठिया नाल, सच संजम करनी कारा नावन नाव जपेही, नानक

इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध कटत है। मोर मोर कर अधिक लाड कर देखत ही जमराव हसे, ऐसा तैं जग परम लाया कैसे बूझे जब मोया है माया। रहाओ कह कबीर छोड़ बिखिया रस, इस संगत ने चो मरना। रमैया जपो प्राणी अनंत जीवन बाणी, इन विद पव सागर तरना। जा तिस पावे ता लागे पाओ, परम पुलावा विचों जाए। उपजे सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसाद अंतर लिव लागे। इत संगत नाही मरना, हुकम पछाण ता कसमे मिलना। रहाओ दूजा श्री राज त्रिलोचन का, माया मोह मन अगलड़ा प्राणी। जरा मरण पौ विसर गया, कुटुंब देख बिगसे कमला ज्यों। पर कर जो है कपट नरा, दूरा आयो हो जमे तना। तिन आगलड़े में रहन न जाए, कोई कोई साजन आए कहे। मिल मेरे बीतला ले बाहरी बलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए। रहाओ अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी, संसार सागर पे अमर पया। माया मूठा चेतस नाही, जन्म गवायो आलसिया। बिखम कोर पंख चालना प्राणी, रव सत तहना परवेसं। माया मोह तब बिसर गया, जा तजियले संसारं। आज मेरे मन प्रगट भया है, पेखियले तर्म राओ। तह कर दल करन महाबली, तिन आग लड़े में रहन न जाए। जे को मुंह उपदेश करत है, ता वन त्रिन रतड़ा नारायण। ऐ जी तू आपे सब किछ जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया। श्री राग भगत कबीर जीओ का। अचरज एक सुनो रे पंडिया, अब किछ कह न जाए। सुर नर गण गंधर्व जिन मोहे, त्रिभुवन मेखली लाए। राजा राम अनहद किंगरी बाजे, जाकी दिस्त नाद लिव लागे। रहाओ पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कनक कलश इक पाया। तिस में तार चुए अत निर्मल, रस में रसन चुआया। एक जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजिया। तीन पवन में एको जोगी, कहो कवन है राजा। ऐसे ज्ञान प्रगटिया पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग राता। और दुनी सब परम पुलानी, मन राम रसायन माता। श्री राजबाणी भगत बेणी जियो की।

रे नर गर्भ कुंडल जब आचत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मद ना एनस एक अज्ञान सोनागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनो बिसारया फिर पछतावेगा मूड़या तू कवन कुमत परम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचरे अनरादा रहाओ बाल विनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोह व्यापे रस मित मेद अमृत दिख चाकी तो पंच प्रगट संतापे जप तप संजम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना आराध्या उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधिया तरुण तेज परत्रय मुख जो है सर अपसर ना पछाणिया उन्मत काम महा बिख पूले पाप पुन ना पछाणिया सुत संपत देख एव मन गर्भया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तोले तो पग मुख जन्म विगोया कुंडर केस कुसुम ते तौले सपत पताल की बाणी लोचन श्रमय बुद्ध बल नाथी ता काम पवस माधानी ताते बिखे पई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछे पछताना निकुटी देह देख तुन उपजे मान करत नहीं बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कछु न सूझे थाका तेज उड़िया मन पंखी कर आंगन ना सुखाई बेणी कह सुनो रे भगतो मरण मुकत किन पाई श्री राग तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटिक जल तरंग जैसा जो पे हम ना पाप करंता अहे अनंता पतित पावन नाम कैसे हुंता रहाओ तुम जो नायक आछो अंतर जामी प्रभ ते जन जानी जय जमते स्वामी शरीर अरा दे मोको विचार देवू रविदास समदल।

हर हर नाम में हर मन भाया, वड पागी हर नाम ते आया। गुरपूरे हर नाम सिद्ध पाई, को विरला गुरमत चले जियो। मैं हर हर खर्च लिया बन पल्ले, मेरा प्राण सिखाई सदा नाल चले। गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया, हर नेचल हर तन पल्ले जियो। हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया, कोई आन मिलावे मेरे प्राण जीवाया। हों रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, मैं नीर वहे वह चले जियो। सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई, हों रह ना सका बिन देखे मेरी माई। हर जियो कृपा करो गुर मेलो, जन नानक हर तन पल्ले जियो। माज महला चौथा। मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा, हों हर बिन दूजा अवर ना जाना। कोई सज्जन संत मिले वड पागी, मैं हर तक प्यारा दसे जियो। हों मन तन खोजी पाल पलाई, क्यों प्यारा प्रीतम मिले मेरी माई। मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभु वसे जियो। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुरु रखवाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपाला। मेरा मात पिता गुर सतगुरु पूरा, गुर जल मिल कमल विकसे जियो। मैं बिन गुर देखे नींद ना आवे, मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगावे। हर हर दया।

था। हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए, मिल सत्संगत हर गुण गाए, जग पौजल दुत्तर तरिए जियो। आओ सखी हर मेल करेहा, मेरे प्रीतम का मैं दे स्नेहा, मेरा मित्र सखा सो प्रीतम भाई, मैं दसे हर नर हरिए जियो। मेरी बेदन हर गुरु पूरा जाने, हौ रह ना सका बिन नाम वखाने, मैं औखद मंत्र दीजे गुरपूरे, मैं हर हर नाम उधरिए जियो। हम चात्रिक दीन सतगुर शरणाई, हर हर नाम बूंद मुख पाई, हर जल निद हम जल के मीने, जन नानक जल बिन मरिए जियो। माज महला चौथा, हर जन संत मिलो मेरे भाई, मेरा हर प्रभ दसो मैं भूख लगाई, मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन पी जय जियो। मिल सत्संग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरे मन भाणी, हर हर अमृत हर मन पावे, मिल सतगुर अमृत पी जय जियो। वड पागी हर संगत पावे, पागहीन प्रम चोटा खावे, बिन पागा सत्संग न लब्बे, बिन संगत मैल परी जय जियो। मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे, हर हर नाम दया मन तारे, गुरमत नाम मीठा मन पाया, जन नानक नाम मन पी जय जियो। माज महला चौथा, हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया, मन हर रंग राता हर रस पी आया, हर हर नाम मुख हर हर बोली, मन हर रस टुल टुल पौदा जियो। आवो संत मैं गल मेल आईए, मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाइए, हर के संत मिलो मन देवा, जो गुरबाणी मुख चौदा जियो। वड पागी हर संत मिलाया, गुरपूरे हर रस मुख पाया, पागहीन सतगुर नहीं पाया, मन मुख गर्भ जूनी नित पौंदा जियो। आप दयाल दया प्रभ तारी, मल हौ मैं बिखिया सब निवारी, नानक हट पट्टन विच काया, हर लेंदे गुरमुख सौदा जियो। माज महला चौथा, हौ गुण गोविंद हर नाम ते आई, मिल संगत मन नाम वसाई, हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी, मिल सतगुर हर रस की चै जियो। तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता।

पाणे हर गुण गुरमुख गावा, पाणे परम पवे बहु जूनी, सब किछ तिसे रजाई जियो, ना को मूरख ना को स्याणा, वरते सब किछ तेरा पाणा, अगह अगोचर बे अंक अथाह, तेरी कीमत कहन ना जाई जियो। खास संतन की देहो प्यारे, आए पया हर तेरे द्वारे, दर्शन पेखत मन आघावे, नानक मिलन सुभाई जियो। माज महला पंजवा, दुख तदे जा विसर जावे, उख व्यापे बहु विध तावे, सिमरत नाम सदा सुहेला, जिस देवे दीन दयाला जियो। सतगुर मेरा वड समरथा, जी संभाली ता सब दुख लथा, चिंता रोग गई हौ पीड़ा, आप करे प्रतपाला जियो। बारिक वांगी हौ सब किछ मंगा, देन दे तोट नाही प्रभ रंगा, पैरी पै पै बहुत मनाई, दीन दयाल गोपाला जियो। हौ बलिहारी सतगुर पूरे, जिन बंधन काटे सगले मेरे, हृदय नाम दे।

ऊंच नीच करे प्रतपाला, नाम रसायन मंत्र पतायण, गुरमुख अमृत पीवा जियो। दुख सुख प्यारे तुद त्याई,

जित मैं सतगुरु मिलिया, सफल दर्शन नेत्र पेखत तरिया, तन मूरत चसे पल कड़िया, तन सो ओए संजोगा जियो, उद्दम करत मन निर्मल होआ, हर मार्ग चलत परम सगला खोया, नाम निधान सतगुरु सुनाया, मिट गए सगले रोगा जियो, अंतर बाहर तेरी बाणी, तुद आप कथी तै आप वखाणी, गुर कहया सब एको एको, अवर न कोई होएगा जियो, अमृत रस हर गुर ते पिया, हर पैनन नाम भोजन थिया, नाम रंग नाम चोज तमासे, नाउ नानक कीने भोगा जियो, माज महला पंजवा, सगल संतन पै वस्त इक मांगो, करो विनंती मान त्यागो, वार वार जाई

मेहरवान किरपाल दयाला सगले तृप्त अघाए जियो। वन त्रिण त्रिभवन की तुन हरिया करण हार छिन पीतर करिया गुरमुख नानक तिसै अराधे मन की आस पुजाए जियो। माज महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंधक तू मेरा

है मेरा माना, तुझ बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। जी जंत सब तुद उपाए, जित जित पाना तित तित लाए, सब किछ कीता तेरा होवे, नाही किछ असाड़ा जियो। नाम ते आए महा सुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन सीत लाया, गुरपूरे वजी वधाई, नानक जिता विखाड़ा जियो। माज महला पंजवा, जी प्राण प्रभ मने अधारा, भगत जीवे गुण गाए अपारा, गुण निधान अमृत हर नामा, हर त्याए त्याए सुख पाया जियो। मनसा तार जो करते आवे, साध संग जन्म मरण मिटावे, आस मनोरथ पूरे होवे, पेटत गुर दर्शाया जियो। अगम अगोचर किछ मित नहीं जानी, साधिक सिद्ध त्यावे ज्ञानी, खुदी मिटी चूका पोलावा, गुर मन ही मैं प्रगटाया जियो। आनंद मंगल कल्याण निधाना, सुख सहज हर नाम वखाना, होए कृपाल स्वामी।

तू प्रीतम ठाकुर अथ पारी, तुमरे कर्तव्य तुम ही जानो, तुमरी ओट गोपाला जियो। गुण गावत मन हरिया होवे, कथा सुनत मल सगली खोवे, पेटत संग साध संतन कै, सदा जपो दयाला जियो। प्रभ अपना साथ साथ समारो, ए मत गुर प्रसाद मन पारो, तुमरी कृपा ते हुए परगाता, सर्व मया प्रतपाला जियो। सत सत सत प्रभ सोई, सदा सदा सद आपे होई।

सर्व जिया को देवन हारा, गुर प्रसादी नदर निहारा, जल थल मैयल सब तृप्ताने, साधु चरण पखाली जियो। मन की इच्छे पुजावन हारा, सदा सदा जाई बलिहारा, नानक दान किया।

जल थल मैयल जय दिसवर साया, सांत पल बुझी सब कृष्णा, आनंद पया सब थाई जियो। सुखदाता दुख पंजन हारा, आते बख्श करे जी सारा, अपने की तेनो आप प्रतपाले, पै पैरी तिसे मनाई जियो। जाकी शरण पया गत पाये, साथ साथ हर नाम से आई है, तिस बिन होर ना दूर।

जप अमृत नाम संत संग मेला, करी मूरत सिमरत पल वंजे जीवन सफल तिथाई जियो। सिमरत नाम दोख सब लाथे, अंतर बाहर हर प्रभ साथे, तै पाओ परम खोया गुरपूरे, देखा सबनी जाई जियो। प्रभ समरथ वड ऊंच अपारा, नौ निज नाम परे पंडारा, आद अंत मद प्रभ सोई, दूजा लवे न लाई जियो। कर कृपा मेरे दीन दयाला, जाचित जाचे सादर वाला, देह दान ना।

खाते, खुद बिन अवर न कोई करते। मैं तर ओत तुम्हारी जियो, रसना जप जप जीवे स्वामी, पार ब्रह्म प्रभ अंतर जामी, जिन सेवया तिन

रह पाया, जन्म जन्म का रोग गवाया, हर कीर्तन गावो दिन राती, सफल एहा है कारी जियो। दृष्ट तार अपना दास सवारिया, कट कट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया, इकत विण होर दूजा नाही, बाबा नानक ए मत सारी जियो। माज महला पंजवा, मन तन दत्ता राम प्यारे, सर्व सु दीजे अपना वारे, आठ पैर गोवे।

कटिए जम की फासा जियो। चार पदार्थ हर की सेवा, पार जात जप अलग अपेवा, काम क्रोध किल दुख गुर काटे, पूरन होई आशा जियो। पूरन पाग पै जिस प्राणी, साध संग मिले सारंग पानी, नानक नाम वस्या जिस अंतर, परवान गृहस्थ उदासा जियो। माज महला पंजवा, सिमरत नाम हृदय सुख पाया, कर कृपा पंक्ति प्रगटाया, संत संग मिल हर हर जपिया, बिन से आलस रोगा जियो। जां कै गृह नव निध हर पाई, तिस मिलिया जिस पूर्व कमाई, ज्ञान ध्यान पूरन परमेश्वर, प्रभ सबना गल्ला जोगा जियो। किन में थाप उठापन हारा, आप इकंती आप पसारा, लेप नहीं जग जीवन दाते, दर्शन डिठे लहन विजोगा जियो। अंचल लाए सब सिस्त्राए, अपना नाव आप जपाई, गुरबो हित पाया कृपाते, नानक तुर संजोगा जियो। माज महला पंजवा, सोई करना जे आप कराए, जिथे रखे सा पली जाए, सोई सियाना सो पतवंता, हुक्म लगे जिस लीठा जियो। सब परोई इकत तागे, जिस लाए ले सो चरणी लागे, ऊंद कवल जिस होए परगासा, तिन सर्व निरंजन जीठा जियो। तेरी महिमा तू है जाने, अपना आप तू

जिन देखे सब उतरे कलमल, नानक नाम त्याय त्याय जीवे, बिनस्या परम पौ तीथा जियो। माज महला पंजवा, झूठा मंगन जे कोई मांगे, तिसको मरते करी ना लागे, पार ब्रह्म जो

काल न चापे दुख ना संतापे ज्योति विच मिल ज्योत समानी सुन मन सच समावने हौ वारी जियो वारी हर कै नाए शोभा पावने सतगुर सेव सच चित लाया गुरमती सहज समावने रहाओ काया कच्ची कच्चा चीर हंडाए दूजे लागी महल न पाए।

दुश्मन सच्चा सच सेवे दुख गवावणिया। सदा हजूर दूर ना जानो गुर शब्दी हर अंकर पछाणो, नानक नाम मिले वड्याई पूरे गुर ते पावणिया। माज महला तीजा ऐसे साचे सो आगे साचे, मन सच्चा सच्चे शब्द राचे, सच्चा सेवे सच कमावे सच्चो सच कमावणिया। हौ वारी जियो वारी सच्चा नाम मन वसावणिया, सच्चे सेवे सच समावे सच्चे के गुण गावणिया। रहाओ पंडित पढ़े साध न पावे, दूजे पाए माया मन परमावे, माया मोह सब सुध गवाई कर अवगुण पछोतावणिया। सतगुरु मिले ता तत पाए, हर का नाम मन वसाए, शब्द मरे मन मारे अपना मुक्ति का दर पावणिया। किलविख काटे क्रोध निवारे, गुर का शब्द रखे उधारे, सच रते सदा बैरागी हो मैं मार मिलावणिया। अंतर रतन मिले मिलाया, त्रिविध मनसा त्रिविध माया, पढ़ पढ़ पंडित मोनी छके चौथे पद की सार न पावणिया। आपे रंगे रंग चढ़ाए, से जन राते गुर शब्द रंगाए, हर रंग चढ़िया अथ पारा हर रस रस गुण गावणिया। गुरमुख रिद्ध सिद्ध सच संजम सोई, गुरमुख ज्ञान नाम मुक्त होई, गुरमुख कार सच कमावे सच्चे सच समावणिया। गुरमुख थापे थाप उथापे, गुरमुख जात पत सब आपे, नानक गुरमुख नाम ते आए नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा उत्पत परलो सब दे होवे, सब दे ही फिर ओपत होवे, गुरमुख वरते सब आपे सच्चा गुरमुख उपाय समावणिया। हौ वारी जियो वारी गुर पूरा मन वसावणिया, गुर ते शांत भगत करे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया। रहाओ गुरमुख धरती गुरमुख पानी, गुरमुख पावन बैसंतर खेले विडाणी, सो निगुरा जो मरमर जमे निगुरे आवन जावणिया। तिन करते इक खेल रचाया, ताया शरीर है विच सब किछ पाया, शब्द भेद कोई महल पाए महले महल बुलावणिया। सच्चा साओ सच्चे वणजारे, सच वणन जै गुर हेत अपारे, सच विहा जै सच कमावे सचो सच कमावणिया। बिन राशि को वत क्यों पाए, मनमुख पूले लोक सवाए, बिन राशि सब खाली चले खाली जाए दुख पावणिया। एक सच वणन जै गुर शब्द प्यारे, आप करे सगले कुल तारे, आए से परवान होए मिल प्रीतम सुख पावणिया। अंतर वस्त मूड़ा बाहर पाले, मनमुख अंधे फिरे बेताले, जिथे वत होवे तिथो कोई न पावे मनमुख परम कुलावणिया। आपे देवे शब्द बुलाए, महली महल सहज सुख पाए, नानक नाम मिले वड्याई आपे सुन सुन प्यावणिया। माज महला तीजा सतगुर साची सिख सुनाई, हर के तो अंत होए सखाई, हर अगम अगोचर अनाथ अजूनी सतगुर कह पाए पावणिया। हौ वारी जियो वारी आप निवारणिया, आप गवाए ता हर पाए हर स्यों सहज समावणिया। रहाओ पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, बिन पागा गुर पाई नाही शब्द मेल मिलावणिया। गुरमुख अलिपत रह संसारे, गुर के तकिए नाम आधारे, गुरमुख जोर करे क्या तिसनो आपे खप दुख पावणिया। मनमुख अंधे शुद्ध न काई, आत्म काती है जगत कसाई, निंदा कर कर बहु पार उठावे बिन मजूरी पार पहुंचावणिया। एहो जग वाड़ी मेरा प्रभ माली, सदा संभाले को नाही खाली, जे ही वासना पाए ते ही वरते वासु वास जनावणिया। मनमुख रोगी है संसारा, सुखदाता विसरिया अगम अपारा, दुखिए नित फिरे बिल्ला दे बिन गुर शांत न पावणिया। जिनकी ते सोई विद जाने, आप करे ता हुकम पछाणे, जेहा अंदर पाए तेहा वरते आपे बाहर पावणिया। तिस बाजों सच्चे मैं होर ना कोई,
जिस लाए लय सो निर्मल होई, नानक नाम वसै कट अंतर, जिस देवै सो पावणिया। माज महला तीजा, अमृत नाम मन वसाए, हौ मैं मेरा सब दुख गवाए, अमृत बाणी सदा सलाहे, अमृत अमृत पावणिया। हौ वारी जियो वारी, अमृत बाणी मन वसावणिया, अमृत बाणी मन वसाए, अमृत नाम ते आवणिया। रहाओ अमृत बोले सदा मुख वैणी, अमृत वेखे परखे सदा नैनी, अमृत कथा कहे सदा दिन राती, अवरा आख सुनावणिया। अमृत रंग रता लिव लाए, अमृत गुर प्रसादी पाए, अमृत रसना बोले दिन राती, मंथन अमृत पियावणिया। सो किछ करे जो चित न होई, किसदा हुक्म मेट न सके कोई, हुक्मे वरते अमृत बाणी, हुक्मे अमृत पियावणिया। अजब कम करते हर केरे, त्यों मन पूला जांदा तेरे, अमृत बाणी त्यों चित लाए, अमृत शब्द बजावणिया। खोटे खरे तुद आप उपाए, तुद आपे परखे लोक सवाए, खरे पर खजाने पाए, खोटे परम पुलावणिया। क्यों कर वेखा क्यों सलाही, गुर प्रसादी सबद सलाही, तेरे पाणी विच अमृत वरसे, तू पाणे अमृत पियावणिया। अमृत शब्द अमृत हर बाणी, सतगुर सेवै हृदय समाणी, नानक अमृत नाम सदा सुखदाता, पी अमृत सब कुख लै जावणिया। माज महला तीजा, अमृत वरसे सह सुवाए, गुरमुख विरला कोई जन पाए, अमृत पी सदा तृप्ता से, कर कृपा तृष्णा बुझावणिया। हौ वारी जियो वारी, गुरमुख अमृत पियावणिया, रसना रस चाक सदा रहे रंग राती, सहजे हर गुण गावणिया। रहाओ गुर प्रसादी सहज को पाए, दुबदा मारे इक क्यों लिवलाए, नदर करे ता हर गुण गावे, नदरी सच समावणिया। सदना उपर नदर प्रब तेरी, किसे थोड़ी किसे है कणेरी, तुझते बाहर किछ न होवे, गुरमुख सोजी पावणिया। गुरमुख तत है बिचारा, अमृत परे तेरे पंडारा, बिन सतगुर सेवे कोई न पावे, गुर कृपा ते पावणिया। सतगुर सेवे सो जन सो है, अमृत नाम अंतर मन मोहे, अमृत मन तन बाणी रता, अमृत सह सुनावणिया। मन मुख पूला दूजे पाए खुआए, नाम ना लेवे मरे बिख खाए, अंदिन सदा विस्ता में वासा, बिन सेवा जन्म गवावणिया। अमृत पीवे जिसनो आप पियाए, गुर प्रसादी सहज लिव लाए, पूरन पूर रहा सब आपे, गुरमत नदरी आवणिया। आपे आप निरंजन सोई, जिन सिरजी तिन आपे गोई, नानक नाम समाल सदा तू, सहजे सच समावणिया। माज महला तीजा, से सच लागे जो तुद पाए, सदा सच सेवै सह सुभाए, सच्चे सबद सच्चा सलाही, सच्चे मेल मिलावणिया। हौ वारी जियो वारी सच सलाणिया, सच त्यायन से सच राते, सच्चे सच समावणिया। रहाओ जह देखा सच सबनी थाई, गुर प्रसादी मन वसाई, तन सच्चा रसना सच राती, सच सुन आख वखानणिया। मनसा मार सच समाणी, इन मन दिखी सब आवन जानी, सतगुर सेवे सदा मन नहीं चल, निज कर वासा पावणिया। गुर के शब्द हृदय दिखाया, माया मोह शब्द जलाया, सच्चो सच्चा वेख सलाही, गुर शब्दी सच पावणिया। जो सच राते तिन सच्ची लिव लागी, हर नाम समाले सेवड पागी, सच्चे शब्द आप मिलाए, सत संगत सच गुण गावणिया। लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवे, ओ अगम अगोचर शब्द शुद्ध होवे, अंदिन सच शब्द सलाही, होर कोई ना कीमत पावणिया। पर परखा के सांत ना आई, तृष्णा जाले शुद्ध ना काई, बिख बिहाजे बिख मोह प्यासे, कूड़ बोल बिख खावणिया। गुर प्रसादी एको जाना,
दूजा मार मन सच समाना, नानक एको नाम वरते है मन अंतर गुर प्रसादी पावणिया। माज महला तीजा, वर्ण रूप वरते सब तेरे, मर मर जमे फेर पवे कनेरे, तू एको ने चल अगम अपारा, गुरमती बूझ बुझावणिया। हौ वारी जियो वारी, राम नाम मन वसावणिया, तिस रूप न रेखिया वरन न कोई, गुरमती आप बुझावणिया। रहाओ सब एका जोत जाने जे कोई, सतगुर सेवे प्रगट होई, गुप्त प्रगट वरते सब थाई, ज्योति ज्योत मिलावणिया। तिसना अगन जले संसारा, लोभ अभिमान बहुत अहंकारा, मर मर जन्मे पत गवाए, अपनी बिरथा जन्म गवावणिया। गुर का शब्द को विरला बूझे, आप मारे ता

गुर के सब सदर है समाए, सच सलाहे सब खट अंतर, सचो सच सुहावणिया। सच सलाही सदा हजूरे, गुर के शब्द रहा पर पूरे, गुर प्रसादी सच नदरी आवे, सच्चे ही सुख पावणिया। सच मन अंदर रहा समाए, सदा सच निश्चल आवे न जाए, सच्चे लागे सो मन निर्मल, गुरमती सच समावणिया। सच सलाही अवर न कोई, जित सेवे सदा सुख होई, नानक नाम रते विचारी, सचो सच कमावणिया। माज महला तीजा, निर्मल शब्द निर्मल है बाणी, निर्मल जोत सब माहे समाणी, निर्मल बाणी हर सा लाही, जप हर निर्मल मैल गवावणिया। हों वारी जियो वारी, सुख दाता मन वसावणिया, हर निर्मल गुर सब सलाही, सबदो सुन तिसा मिटावणिया। रहाओ निर्मल नाम वस्या मन आए, मन तन निर्मल माया मोह गवाए, निर्मल गुण गावे नित साचे के, निर्मल नाद बजावणिया। निर्मल अमृत गुर ते पाया, विच्चों आप मुआ सिखे मोह न माया, निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल, निर्मल बाणी मन वसावणिया। जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवे, होमे मैल गुर सबदे तोवे, निर्मल वाजे अनहद तुन बाणी, दर सच्चे सोबा पावणिया। निर्मल ते सब निर्मल होवे, निर्मल मनुआ हर शब्द पर होवे, निर्मल नाम लगे बड़ पागी, निर्मल नाम सुहावणिया। सो निर्मल जो सबदे सो है, निर्मल नाम मन तन मोहे, सच नाम मल कदे न लागे, मुख उजल सच करावणिया। मन मैला है दूजे पाए, मैला चौका मैले छाए, मैला खाए फिर मैल वधाए, मन मुख मैल दुख पावणिया। मैले निर्मल सब हुक्म सवाए, से निर्मल जो हर साचे भाए, नानक नाम वसे मन अंतर, गुरमुख मैल चुकावणिया। माज महला तीजा, गोविंद उजल उजल हंसा, मन बाणी निर्मल मेरी मनसा, मन उजल सदा मुख सोहे, अत उजल नाम ते आवणिया। हौ वारी जियो वारी, गोविंद गुण गावणिया, गोविंद गोविंद कहे दिन राती, गोविंद गुण शब्द सुहावणिया। रहाओ गोविंद गावे सह सुबाए, गुर कै पै उजल होमे मल जाए, सदा आनंद रहे भगत करे दिन राती, सुन गोविंद गुण गावणिया। मनुआ नाचे भगत दृढ़ाए, गुर कै शब्द मने मन मिलाए, सच्चा ताल पूरे माया मोह चुकाए, शब्दे नृत करावणिया। ऊंचा कूके तने पछाड़े, माया मोह जोहया जमकाले, माया मोह इस मने नचाए, अंतर तप्त दुख पावणिया। गुरुमुख भगत जा आप कराए, तन मन दाता सह सुभाए, बाणी वजे शब्द वजाए, गुरुमुख भगत साए पावणिया। बहुताल पूरे वाजे वजाए, ना को सुने ना मन वसाए, माया कारण पिड़ बंद नाचे, दूजे पाए दुख पावणिया। जिस अंतर प्रीत लगे सो मुक्ता, इंद्री वस सच संजम जुगता, गुर कै शब्द सदा हर त्याए, एहा भगत हर पावणिया। गुरमुख भगत जुग चारे होई, होरत भगत न पाए कोई, नानक नाम गुर भगती पाईए, गुर चरणी चित लावणिया। माज महला तीजा, सच्चा सेवी सच सलाही, सच्चे नाए दुख कभी नाही, सुख दाता सेवन सुख पायन, गुरमत मन वसावणिया। हौ वारी जियो वारी, सुख सहज समाध लगावणिया, जो हर सेवे से सदा सोहे, सोबा सुरत सुहावणिया। रहाओ सबको तेरा भगत कहाए, सही भगत तेरे मन पाए, सत बाणी तुदे सलाहन, रंग राते भगत करावणिया। सबको सच्चे हर जियो तेरा, गुरमुख मिले ता चूके फेरा, जा तुद पावे ता नाए रचावे, तू आपे नाओ जपावणिया।
गुरमती हर मन वसाया, हरख सोग सब मोह गवाया, इक स्यों लिव लागी सधी हर नाम मन वसावणिया। भगत रंग राते सदा तेरे चाए, नौ निद नाम वख्या मन आए, पूरे पाग सतगुर पाया सब दे मेल मिलावणिया। तू दयाल सदा सुखदाता, तू आपे मेले गुरमुख जाता, तू आपे देवे नाम वडाई नाम रते सुख पावणिया। सदा सदा साचे तुझ सलाही, गुरमुख जाता दूजा को नाही, एक सो मन रहा समाए मन मने मन है मिलावणिया। गुरमुख होवे सो साला है, साचे ठाकुर वे परवाहे, नानक नाम वसै।

तेरे पद सो है साचे दरबारे, गुर के शब्द नाम सवारे, सदा आनंद रहे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया।

होए तू कर कर वेखे जाने सोए आपे करे कराए करता गुरमत आप मिलावणिया कामन गुणवंती हर पाए पै पाए सिगार बनाए सतगुरु से सदा सुहागण सच उपदेश समावणिया शब्द विसारण तिना ठौर न ठाओ तम पूले ज्यों सुन्ने कर पाओ हलत पलत

कूड लिखे तै कूड कमावे है, जल जावे कूड चितलावण्या। गुरमुख सच्चो सच लिखे विचार, से जन सच्चे पावे मोख द्वार। सच कागज कलम मसवाणी, सच लिख सच समावण्या। मेरा प्रभ अंतर बैठा वेखे, गुर प्रसादी मिले सोई जन लेखे। नानक नाम मिले वड्याई, पूरे गुरते पावण्या। माज महल है तीजा, आत्म राम प्रवास गुरते होवे। हों मैं मैल लागी गुर सबदी खोवे। मन निर्मल अंदिन भगती राता, भगत करे हर पावण्या। हों वारी जियो वारी, आप भगत करन अवरा भगत करावण्या। तिना भगत जना को सदा नमस्कार कीजे, जो अंदिन हर गुण गावण्या। रहाओ आपे करता कारण कराए, जित पावे तित पारे लाए। पूरे भाग गुर सेवा होवे, गुर सेवा ते सुख पावण्या। मर मर जीवे ता किछ पाए, गुर प्रसादी हर मन वसाए। सदा मुक्त हर मन वसाए, सहजे सहज समावण्या। बहु कर्म कमावे मुक्त न पाए, देशांतर पवे दूजे पाए खुआए। बिरथा जन्म गवाया कपटी, बिन शब्दे दुख पावण्या। तावत राखे ठाक रहाए, गुर प्रसादी परम पद पाए। सतगुर आपे मेल मिलाए, मिल प्रीतम सुख पावण्या। एक कूड लागे कूड़े फल पाए, दूजे पाए बिरथा जन्म गवाए। आप डूबे सगले कुल डूबे, कूड बोल बिखावण्या। इस तन में मन को गुरमुख देखे, पाले पगत जा हूं मैं सोखे। सिद्ध साधिक मोन तारी रहे लिव लाए, तिन भी तन में मन ना दिखावण्या। आप कराए करता सोई, होर के करे कीते क्या होई। नानक जिस नाम देवे सो लेवे, नामो मन वसावण्या। माज महला तीजा, इस गुफा में अकुट पंडारा। तिस विच वसे हर जियो अलख अपारा। आपे गुप्त प्रगट है आपे, गुर शब्दी आप मनावण्या। हों वारी जियो वारी, अमृत नाम मन वसावण्या। अमृत नाम महा रस मीठा, गुरमति अमृत पियावण्या। रहाओ हों मैं मार बजर कपाट खुलाया। नाम अमोलक गुर प्रसादी पाया, बिन शब्द नाम न पाए कोई। गुर कृपा मन वसावण्या। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चामन अज्ञान अंधेर गवाया। ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, हर दर शोभा पावण्या। शरीरों पालन को बाहर जाए, नाम नाल है बहुत व्यवहार दुख पाए। मनमुख अंधे सूजे नाही, फिर किर आए गुरमुख वत पावण्या। गुर प्रसादी सच्चा हर पाए, मन तन वेखे हों में मैल जाए। बैस सुतान सद हर गुण गावे, सच्चे सबद समावण्या। नौ दरखा के तावत रहाए, दसवें निज करवासा पाए। ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरमती शब्द सुनावण्या। बिन शब्द अंतर आनेरा, ना वसल है ना चूके फेरा। सतगुर हथ कुंजी होरत दर खुले नाही, गुर पूरे पाग मिलावण्या। गुप्त प्रगट तू सबनी थाई, गुर प्रसादी मिल सोजी पाई। नानक नाम सलाहे सदा तू, गुरमुख मन वसावण्या। माज महला तीजा, गुरमुख मिले मिलाए आपे। काल न जो है दुख न संतापे, हों में मार बंधन सब तोड़े। गुरमुख शब्द सुहावण्या। हों वारी जियो वारी, हर हर नाम सुहावण्या। गुरमुख गावे गुरमुख नाचे, हर से तीचित लावण्या। रहाओ गुरमुख जीवे मरे प्रवाण, आर जा ना छीजे शब्द पछाण। गुरमुख मरे न काल न खाए, गुरमुख सच समावण्या। गुरमुख हर दर शोभा पाए, गुरमुख विच्चों आप गवाए। आप करे कुल सगले तारे, गुरमुख जन्म सवारण्या। गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर, गुरमुख हों में चूके पीर।
गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे, गुरमुख सह समावणिया। गुरमुख नाम मिले वड्याई, गुरमुख गुण गावे शोभा पाई, सदा आनंद रहे दिन राती गुरमुख शब्द करावणिया। गुरमुख अन दिन सब दे राता, गुरमुख जुग चारे है जाता, गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल शब्दे भगत करावणिया। बाज गुरु है अंध अंधारा, जम काल गरठे करे पुकारा, अन दिन रोगी बिस्ता के कीड़े बिस्ता में दुख पावणिया। गुरमुख आपे करे कराए, गुरमुख हृदय उठा आप आए, नानक नाम मिले वड्याए पूरे गुरते पावणिया। माज महला तीजा, एका जोत जोत है शरीरा, शब्द दिखाए सतगुर पूरा, आपे फर्क की तोन कट अंतर, आपे बनत बनावणिया। हों वारी जियो वारी, हर सच्चे के गुण गावणिया, बाज गुरु को सहज न पाए गुरमुख सहज समावणिया। रहाओ तू आपे सो है, आपे जग मोह, तू आपे नदरी जगत परोवे, तू आपे दुख सुख दे रहे करते गुरमुख हर देखावणिया। आपे करता करे कराए, आपे शब्द गुर मन वसाए, शब्दे उपजे अमृत बाणी गुरमुख आप सुनावणिया। आपे करता आपे पुगता, बंधन तोड़े सदा है मुक्ता, सदा मुक्त आपे है सच्चा, आपे अलख लखावणिया। आपे माया आपे छाया, आपे मोह सब जगत उपाया, आपे गुण गाता गुण गावे, आपे आप सुनावणिया। आपे करे कराए आपे, आपे थाप उठापे आपे, तुझते बाहर कछु न होवे, तू आपे कारे लावणिया। आपे मारे आप जीवाए, आपे मेले मेल मिलाए, सेवा ते सदा सुख पाया गुरमुख सहज समावणिया। आपे ऊंचा ऊंचो होई, जिस आप विखाले सो वेखे कोई, नानक नाम वसै कट अंतर, आपे वेख विखालणिया। माज महला तीजा, मेरा प्रभ पर

जग जीवन मन वसावणिया, हर जग जीवन निरपौ दाता, गुरमत सह समावणिया रहाओ। कर मैं करती तौल पताला, काही मैं प्रीतम सदा है बाला, सदा आनंद रह सुख दाता, गुरमत सह समावणिया। काया अंदर हो मैं मेरा, जमन मरण ना चूके फेरा, गुरमुख हो वैसो हो मैं मारे, सचो सच त्यावणिया। काया अंदर पाप पुन दोए पाई, दो ही मिलके सृष्ट उपाई, दोवे मार जाए इकत कर आवे, गुरमत सह समावणिया। कर ही माहे दूजे पाए अनेरा, चानन होवे छोड़े हो मैं मेरा, प्रगट सब रहे सुखदाता, अंदर नाम त्यावणिया। अंतर जोत प्रगट पासारा, गुर साखी मिटिया अंधियारा, कमल विगास सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलावणिया।

सब पावणिया आपे वस राखे आपे दे गुरमुख वणजे केई के नानक जिस नजर करे सो पाए पर कृपा मन वसावणिया माध महला तीजा हर आपे मेले सेव कराए गुर के शब्द पाओ दूजा जाए हर निर्मल सदा गुण दाता हर गुण में आप समावणिया हो वारी जियो वारी सच सच्चा हृदय वसावणिया सच्चा नाम सदा है निर्मल गुर शब्दी मन वसावणिया रहाओ आपे गुरदाता कर्म विदाता सेवक सेवे गुरमुख हर जाता अमृत नाम सदा जन सोवे गुरमत हर रस पावणिया इस गुफा में एक थान सुहाया पूरे गुर हों में परम चुकाया अंदिन नाम सलाहन रंग राते गुर के पाते पावणिया गुर के शब्द एहो गुफा विचारे नाम निरंजन अंतर वसे मुरारे हर गुण गावे शब्द सुहाए मिल प्रीतम सुख पावणिया जम जागाती दूजे पाए कर लाए नाहो पुल्ले देश जाए करी मोहत का लेखा लेवे रतियो मासा।

पाया जाए। कृपा करे तो सतगुरु पेटे मदरी मेल मिलावणिया। दूजे पाए पड़े नहीं बूझे, त्रिविध माया कारण लूजे। त्रिविध बंधन टूटे गुर शब्दी मुक्त करावणिया। यो मन चंचल वस ना आवे, दुबदा लागे दै दिस्तावे। बिखा कीड़ा बिखने राता, बिखी माए।

बहु कर्म करे किस खाए न पाए, तुझसे बाहर किछु न होवे, बसे सबद सुहावणिया। उपजे पचे हर बूजे नाही, अनदिन दूजे पाए फिराही, मन मुख जन्म गया है बिरता, अंत गया पछतावणिया। फिर परदेश सिगार बनाए, मन मुख अंध ऐसे कर्म कमाए, हलत न सोभा पलत न टोई, बिरथा जन्म गवावणिया। हर का नाम किने विरले जाता, पूरे गुर के शब्द पछाता, अंदिन

पंडित होई आप करे सगले कुल तारे हर नाम मन वसावणिया हो वारी जियो वारी हर रस चख साध पावणिया हर रस चाखे से जन निर्मल निर्मल नाम ते आवणिया रहाओ सो नेह कर्मी जो शब्द विचारे अंतर तत ज्ञान हो मैं मारे नाम पदार्थ नौ निद पाए त्रै गुण मेट समावणिया हो मैं करे नेह कर्मी ना होवे गुर प्रसादी हो मैं खोवे अंतर विवेक सदा आप विचारे गुर शब्दी गुण गावणिया हर सर सागर निर्मल सोई संत चुगे नित गुरमुख होई इस नाम करे सदा दिन राती हो मैं मैल चुकावणिया निर्मल हंसा प्रेम प्यार हर सर वसे हो मैं मार एन प्रीत शब्द साचे हर सर वासा पावणिया मन मुख सदा बग मैला हो मैं मल लाई इस नाम करे पर मैल न जाई जीवत मरे गुर शब्द विचारे हो मैं मैल चुकावणिया रतन पदार्थ करते पाया पूरे सतगुर शब्द सुनाया गुर प्रसाद मिटिया अंधियारा फट चानन आप पछानणिया आप उपाय तै आपे वेखे सतगुर सेवे सो जन लेखे नानक नाम वसे कट अंतर गुर कृपा ते पावणिया माज महला तीजा माया मोह जगत सवाया तै गुण दीसे मोहे माया गुर प्रसादी को विरला बूजे चौथे कद लिवलावणिया हौ वारी जियो वारी माया मोह शब्द जलावणिया माया मोह जलाए सो हर्षों चित लाए हर दर मैली सो

देवा मूल है माया, सिमरत खास जिन उपाया, काम क्रोध पथरिया संसारे, आए जाए दुख पावणिया, तिस विच ज्ञान रतन इक पाया, गुर प्रसादी मन वसाया, जप सत संजम सच कमावे, गुर पूरे नाम ते आवणिया, पेयड़े तन परम पुलाणी, दूजे लागी फिर पछो ताणी, हलत पलत दोवे गवाए, सुपने सुख न पावणिया, पेयड़े तन कंत समाले, गुर प्रसादी वेखे नाले, फिर कैसे रह रंग राती, शब्द सिंगार बनावणिया, सफल जन्म जिना सतगुर पाया, दूजा पाओ गुर शब्द जलाया, एक रव रहा कट अंतर, मिल सत्संगत हर गुण गावणिया, सतगुर ना सेवे सो काहे आया, त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया, मन मुख नाम चेतना आवे, बिन नावे बहु दुख पावणिया, जिन शिष्ट साजी सोई जाने, आपे मेले शब्द पछाने, नानक नाम मिलिया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लिखावणिया, माज महला चौथा, आद पुरख अपरंपर आपे, आपे थापे थाप उथापे।

गुर प्रसाद करे नाम देवै नामे नाम समावणिया। तू आपे सच्चा सृजनहारा भक्ति परे तेरे भंडारा गुरमुख नाम मिले मन पीजे सहज समाध लगावणिया। आन दिन गुण गावा प्रभ तेरे तुझ साला ही प्रीतम मेरे तुझ बिन अवर न कोई जाचा गुर प्रसादी तू पावणिया। अगम अगोचर मित नहीं पाई अपनी कृपा करें तू लह मिलाई।

गुरुमुख सदा रहे रंग राती मिल सच्चे शोभा पावणिया। मनमुख कर्म करे अंकारी जुए जन्म सब बाजी हारी अंतर लोभ महा गुबारा फिर आवन जावणिया। आपे करता दे वडिआई जिनको आप लिखत तुर पाई नानक नाम मिले पौ पंजन गुर शब्दी सुख पावणिया। माध महला पंजवा कर पहला अंतर अलख ना जाई लखिया नाम रतन लै गुजा रखिया अगम अगोचर सब

चाल जित पार ब्रह्म ते आए किन विद कीर्तन गाए जियो। गुरुमुख मुक्ता गुरुमुख जुगता गुरुमुख ज्ञानी गुरुमुख बक्ता तन गिर ही उदासी गुरुमुख गुरुमुख कीमत पाए जियो। होमे बांदा गुरुमुख चूटा गुरुमुख आन जान टूटा गुरुमुख कर्म गुरुमुख ने कर्मा गुरुमुख करे सो सुभाए जियो। गुरुमुख सुखिया मनमुख दुखिया गुरुमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया गुरुमुख मिलिए मनमुख विचरे गुरुमुख विद प्रगटाए जियो। गुरुमुख अक्षर जित तावत रहता गुरुमुख उपदेश दुख सुख सम सहता गुरुमुख चाल जित पार ब्रह्म ते आए गुरुमुख कीर्तन गाए जियो। सगली बनत बनाई आपे आपे करे कराए थापे इकस से होयो अनंता नानक एकस माए समाए जियो। माज महला पंजवा प्रभ अविनाशी ता क्या काड़ा हर भगवंता ता जन खरा सुखाला जी प्राण मान सुख दाता तू करे सोई सुख पावण्या। हों वारी जियो वारी गुरुमुख मन तन पावण्या।

भक्ति पाए पय पंडारा, दया तार राखे तुझसे पूरे कर्म समावण्या। अंधकूप ते कंडे चाड़े, कर कृपा दास नदर निहाले, गुण गावे पूरन अगनासी, कह सुन तोट ना आवण्या। ऐसे ओथे तू है रखवाला, मात गर्भ में तुम ही पाला, माया अगर न पोहे तिनको, रंग रते गुण गावण्या। क्या गुण तेरे आख समाली, मंतन अंतर तुद नदर निहाली, तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुद बिन अवर न जानण्या। जिसको तू प्रभ कया सहाई, तिस पत्ती वाव न लगे पाई, तू साहिब शरण सुखदाता, सत संगत जप प्रगटावण्या। तू ऊंच अथाह अपार अमोला, तू साचा साहिब दास तेरे गोला, तू मीरा साची ठकुराई, नानक बल बल जावण्या। माज महला पंजवा कर दूजा, नित नित दया समालिए, मूल न मनो विसारिए, रहाओ संता संगत पाइए, जित जम के पंथ न जाइए, तोसा हर का नाम।

ए प्रभ अवगाहिया ए रस पोगण पातशाहिया मंदा मूल न उपजो तरे सच्ची तारे लाग जियो करता मन वसाया जन्मे का फल पाया मन पावंदा कंत हरे तेरा थिर होआ सुहाग जियो अटल पदार्थ पाया पै पंजन की शरण आया लाए अंचल ना

जित पर हर कंस ना सगते पथ नगर से ग्राम सर्व सिगार तंबोल रस।

विमानन हर जेठ रंगीला तिस्तनी जिसके पाग मथन असार तपंदा तिस लगे हर नाम जिन्ना पास असार तपंदा तिस लगे।

पास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आसार सुहंदा किस लगे जिस मन हर चर

इच्छुनी वड पागुनी वर पाया हर राय। मिल सैया मंगल गावही गीत गोविंद अलाय। हर जेहा अवर न दिसई कोई दूजा लवे न लाए। हालत पलक

नानक जीवै जप हरि दोष सबे ही हंत दिन रैन जिसना विसरै सो हरिया होवै जंत। सर्व कला प्रभ पूर्णो मंद निमाणी थाओ हर ओट दही मन

मूल न जाने अकबल टंडोलिम टूंडिम डिख में नानक जग तू का कमल हर पौरी तू करता पुरख अगम है आप सृष्ट उपाति रंग तरंग उपार्जना बहु बहु विध पाती तू जाने जिन उपाय सब खेल तुमाती एक आवे एक जाहे उठ बिन नावे मर जाती गुरुमुख रंग चलू लिया रंग हर रंग राती सो सेवो सत निरंजनो हर पुरख विदाती तू आपे आप सुजान है वड पुरख वडाती जो मन चित तुद त्याय दे मेरे सच्चा बल बल हों तिन जाती।

जिन रच रचिया तिसे न जाने अंधा अंध कमाए। जा पजे ता ठीक होवे कारत करी न जाए। नानक गुर बिन नाहे पत पत बिन पार न पाए। महला दूजा देंगे थावो दिता चंगा मनमुख ऐसा जानिए। सुरत मत चतुराई ताकि क्या कर आंख वखानिए। अंतर बह के कर्म कमावे सोचो कुंडी जानिए। जो कर्म कमावे किस कर्म नाव होवे पाप कमाने पापी जानिए। तू आपे खेल करें सब करते क्या दूजा आंख वखानिए। जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति विच तू बोले। विन ज्योति कोई किछ करो दिखा सियानिए। नानक गुरमुख नदरी आया हर इको सुगड़ सुजानिए। पौड़ी तुद आपे जगत उपाय कै तुद आपे तंदे लाया। मोठ गौली पाए कै तुद आपो जगत खुआया।

मर जम में आया जाया दिन सतगुर मोह न टूटई सब थके कर्म कमाया गुरमति नाम ति आई है सुख रजा जा तुद पाया कुल उधारे अपना तन जने दी माया शोभा सुरत

ना पाया। होर कार दे कार है एक सच्ची कार है लाया, पुत कलप कुटंब है एक अलिपत रहे जो तुद पाया, ओह अंदरों बारों निर्मले सच्चे नाए समाया। श्लोक महला पहला।

कपड़ पहरा तोवा सदाकार बड़ा रत्ता पीला काला बेदा करी पुकार होए कुचील रामल तारी दुर्मत मत विकार ना हो ना मैं ना हो होवा नानक शब्द विचार महला पहला वस्त्र पखाल पखाले काया आपे संजम होवे अंतर मैल लगी नहीं जाने बारो मल मल तोवे अंदा फूल पया जम जाने वस्त्र आई अपनी कर जाने हो मैं विच दुख काले

संजोग मेल मिलाया, तिन्ही किया विजोग जिन उपाया, मूर्ख भोगे भोग दुख सवाया, सुखों उठे रोग पाप कमाया, हरखों सोग विजोग उपाय खपाया, मूर्ख गणत गणाए चगड़ा पाया, सतगुर हथ निबेड़ चगड़ चुकाया, करता करे सुहोग न चले चलाया। श्लोक महला पहला। ऊर बोल मुर्दार खाए, अवरी नो समझावन जाए, मुठा आप मुहाए साथ है, नानक ऐसा आगू जापे। महला चौथा। जिस दे अंदर सच है, सो सच्चा नाम मुख सच अलाए, ओ हर मार्ग आप चलदा, होर नानो हर मार्ग पाए। जे अग्गे तीर्थ होए ता मल लह, छप्पड़ नाते सगरी मल लाए, तीर्थ पूरा सतगुरु जो अंदिन हर हर नाम के आए, ओ आप सुता कुटुंब स्यो दे हर हर नाम सब सृष्टि छदाए, जन नानक तिस बलिहारण जो आप जपे अवरा नाम जपाए। पौड़ी। एक कंद मूल चुन खाए वन खंड वासा, एक भगवा वेश कर फिरे जोगी सन्यासा, अंदर तृष्णा बहुत छादन भोजन की आशा, बिरथा जन्म गवाए न गिरही ना उदासा, जमकाल सिरो ना उतरे त्रिविद मनसा, गुरमति काल ना आवे नेड़े जा होवे दासन दासा, सच्चा शब्द सच मन कर ही मह उदासा, नानक सतगुर सेवन अपना से आसा ते निराशा। श्लोक महला पहला। जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत, नानक नाम खुदाई का दिल हच्छे मुख ले हो अवर दिवा।

मुसलमान सदाए नानक जेते कूड़े आर कूड़े कूड़ी पाए पौरी एक रतन पदार्थ वंज दे एक कच्चे देवा पारा सतगुर तुठे पायन अंदर रतन पंडारा विन गुर किने ना लद्या अंधे पौके मुए कुड़ियारा मन मुख दूजे पच मुए ना बूझे विचारा एक बाजो दूजा को नहीं किस अगे करे पुकारा एक दिल तन सदा पौक दे एक ना परे तुजारा गिन नावे होर तन नाही होर बिख्या सब छारा नानक आप कराए करे आप हुकम सवारन हारा। श्लोक महला पहला। मुसलमान कहावन मुश्किल जा होए ता मुसलमान कहावे अवल औल दीन कर मिठा मस्कल माना माल मुसावे होए मुस्लिम दीन मुहाने मरण जीवन का पर

तौ नानक सर्व जिया मेहरमत होए ता मुसलमान कहावै। महला चौथा, पर हर काम क्रोध झूठ निंदा तज माया अहंकार चुकावै। तज काम कामनी मोह तजै ता अंजन माही निरंजन पावै। तज मान अभिमान प्रीत सुत दारा तज प्यास आस राम लिव लावै। नानक साचा मन वसै सात शब्द हर नाम समावै। पौड़ी, राजे रैयत सिकदार कोई ना रहसियो, हट पटन बाजार हुक्मी तहसियो। पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने, दर पड़े पंडार रीते इक खने। ताजी रथ तुखार हाथी पाथरे, बाग मिलख कर बार किथे से अपने। तंबू पलंग निवार सराय के लालती, नानक सच दा तार सिनाकत कुदरती। श्लोक महला पहला, नदियां होवे तेनवा सुम होवे दुध कियो। सगली तरती शक्कर होवे खुशी करे नित जियो। पर्वत सोयना रूपा होवे हीरे लाल जड़ाओ। पी तू है सालाहना आखन लह न चाओ। महला पहला, पार अठारह मेवा होवे गरुड़ा होए सुआओ।

सुरगे दिया मोहनिया स्त्रिया होवन नानक सबो जाओ पीतू है सालाना आसन लह न चाओ। पौड़ी बद शैली गैबाना कसम ना जाने सो कही है देवाना आप ना पछाने कल्ले बुरी संसार वादे खपी है विर नावे बेकार परमे पची है राह दो में इक जाने सोई सिज सी कुफर गो कुफराने पया दज सी सब दुनिया सुबहान सच समाई है सिज दर दीवान आप गवाई है। महला पहला श्लोक सो जीव्या जिस मन वस्या सोए नानक अवर न जीवे कोए जे जीवे पत लखी जाए सब हराम जेता किच खाए राज रंग माल रंग

क्या सोए, क्या मेवा, क्या क्यों गुड़ मिठा, क्या मैदा, क्या मांस, क्या कपड़, क्या सेज खाली, चीजें भोग विलास, क्या लश्कर, क्या नेब खवासी, आवे महली वास, नानक सच्चे नाम विण सबे तोल विनाश। पौड़ी जाति दे क्या हाथ सच परखिए, मोरा होवे हाथ मरिए चखिए, सच्चे की सरकार जुग जुग जानिए, हुक्म मने सिरदार दर दीवानिए, फुरमानी है कार खसम पठाया, तबलबाज विचार सबक सुनाया, एक होए असवार इतना साखती, इतनी

बेटा गंद बोले सच कोए, मोया गंद नेकी सत होए, एस गंद वरते संसार, मूरख गंद पवे मोहे मार, नानक आखे एहो विचार, सिफती गंद पवे दरबार, पौड़ी आपे कुदरत साज के आपे करे विचार, एक खोटे एक खरे आपे परखनहार।

पौड़ी सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया गुरमती आप गवाए सच पछाणिया सच तेरा दरबार शब्द निशानिया सच्चा शब्द विचार सच समाणिया मन मुख सदा कूड़ियार परम कुलाणिया विष्टा अंदर वास साध ना जानिया गिन नामे दुख पाए।

रहा, काव थान सिना मास खवाले एह चलाए रहा, नदियां विच टिब्बे दे खाले थली करे असगाहा, कीड़ा खात दे पात साई लश्कर करे स्वाहा, जेते जी जीवे ले साहा जीवाले ताके असाहा, नानक ज्यों

कार कर्म कमाई है, गुरमति आप गवाए नाम से आई है, दूजी कार है लग जन्म गवाई है, बिन नाम है सब विश्व जय खाई है, सच्चा सबर सलाह सच समा

मीत पवार गया ई उठ रचियों वाद सहवरिया की पिड़ बदी सबे वेला वक्त सब जे अठी पौ होए नानक साहिब मन वसै सच्चा नावण होए महला दूजा।

कर्म पूरे पूरा गुरु पूरा जा का बोल नानक पूरा जे करे कटे नाही तोल पौड़ी जा तू ताक्या होर मैं सच सुनाइए मुठी तंदे चोर महल ना पाइए इने चित कठोर सेव गवाइए जित काट सच ना पाए सो पन कढ़ाइए क्यों कर पूरे वट तोल तुलाइए कोई ना आखे तत हो मैं

ब्रह्मना बिंद ते सागरं संसारस गुर प्रसादी तरह के करण कारण समरथ है कहो नानक विचार कारण करते वस है जिन कल रखी तार पौड़ी खसने कै दरबार टाडी वसिया सच्चा खसम कलान कमल विकसिया खसमो पूरा पाए मनो रहस्या दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरसिया सच्चा सतगुरु सेवन सच्चा मार्ग दसिया सच्चा शब्द विचार काल विदुषिया ताडी कथे अकस शब्द सवारिया नानक गुण गहरास हर जियो मिले प्यारिया। श्लोक महला पहला। खत्यो जम्मे खत्ते करनित खत्या विच पाहे तोते मूल ना उतरे जेसो तोन पाहे नानक बख्शे बख्शिए नाहे तपाई पाए। महला पहला। नानक बोलन चखना दुख छद मंगिए सुख सुख दुख दोए कर कपड़े पैरे जाए मनुख जिथे बोलन हारी है तिथे चंगी चुप पौड़ी चारे कुंडा देख अंदर पालिया सच्चे पुरब अलख सिरज निहालिया उजड़ पुले रहा गुर वे खा लिया सतगुर सच्चे वाहो सच समा लिया पाया रतन कराहो दीवा बालिया सच्चे सबल सलाहे सुखिए सच वालिया निदरिया डर लग गर्व से गालिया नावो पुला जग फिर बेतालिया। श्लोक महला तीजा। पैरच जमे पै मरे पीपो मन में होए नानक पैरच जे मरे सहला आया सोए। महला तीजा। पैविन जीवे बहुत बहुत खुशियां खुशी कमाए नानक पैविन जे मरे मोह काले उठ जाए पौरी सतगुरु होए दयाल ता सरदा पूरी है सतगुरु होए दयाल ना कभू चूरी है सतगुरु होए दयाल ता दुख ना जानिए सतगुरु होए दयाल ता हर रंग मानिए सतगुरु होए दयाल ता जमका डर के हा सतगुरु होए दयाल ता सद ही सुख देहा सतगुरु होए दयाल ता नव निद पाईए सतगुरु होए दयाल ता सच समाईए। श्लोक महला पहला। सिर खोहाए पिए मलवानी जूठा मंग मंग खाई फोल फदीहत मोलैन परासा पानी देख सगाई पेगा वांगी सिर खोहायन परियन हाथ सुहाई माऊ पियू किरत गवाए टब्बर रोवन ताही ओना

तू सच्चा दातार नित देवे चरे सवाया, नानक मंगे दान जो तुद पाया। श्लोक मैला दूजा, दीखिया आख बुझाया सुस्ती सच समेओ, तिनको

सिर पर चलिए सहिए पार, नगरी कर्मी गुर विचार। कै बिन कोई ना लंगस पार, कै पौ राख्या पाए सवार। रहाओ कै तन अगन पखे पै नाल, कै पौ कड़िए सब दुसवार। कै बिन काड़त कच निकच, अंधा सच्चा अंधी सच। बुद्धि बाजी उपजे चाओ, सह स्याणप पवे न पाओ। नानक मन मुख बोल।

डर डर जाए, सो डर के हाँ जित डर डर पाए, तुद बिन दूजी नाही जाए, जो किछ वरते सब तेरी रजाए। डरिए जे डर हो वै होर, डर डर डरना मन का सोर, रहाओ ना जियो मरे ना डूबे तरे, जिन किछ किया सो किछ करे, हुक्मे आवे हुक्मे जाए, आगे पाछे हुक्म समाए। हंस हेत आखा समान, तिस विच

गौरी महला पहला पौने पानी अग्नि का मेल चंचल चपल बुद्ध का खेल नौ दरवाजे दसवां द्वार गुजरे ज्ञानी यो विचार कत्ता बकता सुनता सोई आप बिचारे सो ज्ञानी होई राव देही माटी बोले कौन गुजरे ज्ञानी मुआ है कौन मुई सुरत बाद अंकार ओ नाम हुआ जो देखन हार जय कारण पट तीरथ जाही रत्न पदार्थ पट ही माही पढ़ पढ़।

लिख हुकम संजोगी गण दस द्वार पंचवसे मिल जोत अपार आप तुले आपे वनजार नानक नाम सवारनहार गौड़ी महला पहला जातो जाए कहां ते आवे कह उपजे कह जाए समावे।

मन से उपजे मन माए समाए, गुरमुख मुक्तो बंद न पाए, शब्द विचार छुटे हर नाए, तरवर पंखी बहु निस्वास, सुख दुखिया मन मोह विनाश, साज बिहाग तक है आगास, देह दिस पारे करम लिखियास। नाम संजोगी गोयल खाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट, बिन वखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट, साध मिले पूरव संजोग, सच रहसे पूरे हर लोग, मन तन दे ले सहज सुभाए, नानक तिन कै लागू पाए। गौड़ी महला पहला।

अग्न पानी बोले पड़वाओ, जेवा इंद्री एक सुआओ, दिष्ट विकारी नाही पौ पाओ, आप मारे तो पाए नाओ। शब्द मरे फिर मरण न होए, बिन मुए क्यों पूरा होए, पर पंच व्याप रहा मन बोए, फिर नारायण करे सो होए। बोहित चढ़ो जावे वार, ठाके बोहित दरगे मार, सत्साला ही तन गुरुद्वार, नानक दर कर एक अंकार। गौड़ी महला पहला, उल्टियो कमल ब्रह्म विचार, अमृत तार गगन दस द्वार, त्रिभुवन वेदिया आप मुरार, रे मन मेरे पौम न की जय, मन माने अमृत रस पी जय रहाओ। जन्म जीत मरण मन मानिया, आप मुआ मन मन ते जानिया, नजर कई कर करते जानिया, जप सत तीरथ मज्जन नाम, अजक विचार करो किस काम, नर नारायण अंतर जाम, आन मनो तो कर कर जाओ, किस जाचो नहीं को थाओ, नानक गुरुमत।

मरण रहन रस अंतर पाए, गर्भ निवार गगनपुर पाए, मरण लिखाए आए नहीं रहना, हर जप जाप रहन हर शरणा रहाओ, सतगुर मिले त दुबदा पागे, कमल विगास मन हर प्रबल।

क्या जानो क्या आगे होए, ज्योतिष पाना सोई हुआ, अगर न करने वाला दुआ, न जाना कर्म केवल तेरी दात, कर्म कर्म तेरे नाम की जात रहाओ, तू एवड दाता देवन हार, सोत नाही खुद भगत पंडार, किया गर्द न आवे रात, जियो पिंड सब तेरे पास, तू मार दीवाले बक्स मिलाए, जो पावी त्यो नाम जपाए, तू दाना बीना साचा सिर मेरे, गुरमत दे परोसे तेरे, तन में मैल नाही मन राता, गुरबचनी सब शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वड्याई, नानक रहना भगत शरणाई, गौड़ी महला पहला, जिन अतक कहाया अपियो पी आया, हम कह विसरे नाम समाया, क्या डरिए डर डरे समाना, पूरे गुर के शब्द पछाना रहाओ, जिस नर राम हृदय हर वास, सह सुभाए मिले सावास, जाए सवारे सांझ बिहाल, इत उत मन मुख बांधे काल, एनस राम हृदय से पूरे, नानक राम मिले परम दूरे, गौड़ी महला पहला।

ते हर जान राम भगत गुर सेवा करना बहुड़ जन्म ना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कहे सब कोई सिमरत पास्त पंडित भुक्सोई बिन गुर अर्थ विचार न पाया मुक्त पदार्थ भगत हर पाया। जाऊ कह हृदय वस्या हर सोई गुरुमुख भगत प्राप्त होई हर की भगत मुक्त आनंद गुरुमत पाए परमानंद। जिन पाया गुरु देख दिखाया आशा माए निराश बुझाया दीना नाथ सर्व सुख दाता नानक हर चरणी मन राता। गौड़ी चेती महला पहला अमृत काया रह सुखाली बाजी एहो संसारो लब लोभ।

हाँ तुद आसा मेरी काया तू सुन सिखामारी निंदा चिंदा करे पराई झूठी लाए तबारी वेल पराई जो है जियड़े करें चोरी बुरियारी।

सुन मूरख मन अजाना, भोग तिसे का पाना रहाओ। साहो हमारा ठाकुर पारा, हम तिसके वन जारे। जियो पिंड सब रास तिसे की, मार आपे जी वाले। गौरी चेती महला पहला, अगर पंच हम एक जना, क्यों राखो कर बार मना। मारे लूटे नीत नीत, किस आगे करी पुकार।

साधना अमृत केल करे नित पामन और लुटेन सो पंच जना। ताहे मड़ोली लूटिया देहोरा सातन पकड़ी एक जना जम डंडा गल।

पट पीतर मुंदरा काया की जय खिंसाता पंच चेले वस की जय रावल इहो मन की जय डंडाता जोग जुगत इव पावसता एक शब्द दूजा होर नास्त कंद मूल मन लावस्ता रहाओ मूंड मुंडाए जे गुर पाये हम गुर की नी गंगा पार त्रिभवन तारण हार स्वामी एक न चेत समझाता कर पटंग गली मन लावस संसा मूल न जावस्ता एक चरणी दे चित लावे लब लोभ की तावस्ता जपस निरंजन रचस मना काहे बोले जोगी कपट खना रहाओ काया कमली हंस आना मेरी मेरी करत बिहानी ता प्रणवत नानक नागी दाजे फिर पाछे पस्तानी ता गौड़ी चेती महला पहला औखद मंत्र मूल मन एक है जे कर दृढ़ चित की जय रे जन्म जन्म के पाप कर्म के पातन हारा ली जय रे मन एको

राखने री सूजस नाही लज टूकस मूसा पाई रे। मन मुख करे ते का दुख लागे गुरुमुख मिले बढ़ाई रे। जो तिन किया सोई हुआ कितना मेटिया जाई रे। सुबर भरे ना होवे उने जो राते रंग लाई रे। तिनकी पंख होवे जे नानक तो मूड़ा किस पाई रे। गौड़ी चेती मैला पहला कब की माई बात कब चेरा किदू था वो हम आए अगन बिंब।

एके ते पंख उड़ाए हट पटन बिज मंदर पन्ने कर चोरी कर आवे अगो देखे पिछो देखे तुझते कहां छपावे तट तीरथ हम नवखंड देखे हट पटन बाजारा लेके तकड़ी।

तरे अंश न चाहे आ जाए, अंश को चाहन जो गए से आए अंश गवाए। आपन लिया जे मिले ता सबको पाग होए, कर्मा ऊपर निबड़े जे लोचे सब कोए। नानक करना जिन किया सोई सार करे, हुक्म न जाती खत्म का किसे बढ़ाई दे।

पूरे भाग मिले गुर आए साचे सहज साथ कमाए रहाओ। गुर मिले कृष्णा अग्न बुझाए गुर ते सांत वसे मन आए गुर ते पवित्र पावन सुच होए गुर ते शब्द मिलावा होए। बाद गुरु सब परम पुलाई बिन नामे बहुता दुख पाई गुरमुख हो वैसो नाम से आए दर्शन सत्य सच्ची पत होए। किसनो कहिए दाता इक सोई कृपा करे शब्द मिलावा होई मिल प्रीतम साचे गुण गावा नानक साचे।

सब किस साचा आते आते कर्म होवे सत्संग मिलाए हर गुण गावे बैस सुखाए रहाओ जलो ए जेवा दूजे पाए हर रस न चाखे फीका आलाए बिन बूझे तन मन फीका होए बिन नावे दुखिया चलिया रोए रसना हर रस चाखिया सहज सुदाए गुर कृपा ते सच समाए साचे राती गुर शब्द विचार अमृत पीवे निर्मल तार नाम समावे जो पांडा होए उंदे पांडे टिके ना कोए गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच पांडा जिस सब

गावत रहे जिस सतगुरु पावे, मन सन राता नाम सुहावे, रहाओ इक दावे इक भगत करे, नाम न पावे बिन असने, सच्ची भगत गुर शब्द प्यार, अपना तिर राखिया सदा उद्धार। भगत करे मूर्ख आप जनावे, नच नच तपे बहुत दुख पावे, नचिए तपिए भगत न होए, शब्द मरे भगत पाए जन सोए, भगत वछल भगत कराए सोए, सच्ची भगत विच्चों आप खोए, मेरा प्रभु साचा सब विद जाने, नानक बसे नाम पछाने, गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, मन मारे तात मर जाए, बिन मुए कैसे हर पाए, मन मरे दारू जाने कोए, मन शब्द मरे बूझे जन सोए, जिसनो बख्शे देव डिहाई, गुर प्रसाद हर वसे मन आई, रहाओ गुरमुख करनी कार कमावे, ता इस मन की सोजी पावे, मन में मत मैगल मित धारा, गुर अंकत मार जीवा लनहारा, मन असाध साधे जन कोए, अचर चरे ता निर्मल होए, गुरमुख एव मन।

नानक गुरमुख नाम पछाणे गौरी ग्वारे री महला की जा। होमे विच सब जग बोराना दूजे पाए परम फुलाना बहुत चिंता चितवे आप न पछाना तंदा करत्या अन दिन विहाना हृदय राम रमो मेरे पाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाओ। गुरमुख हृदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता। हो मैं मार गुर शब्द पछा।

हर कृपा ते हर वसै मन आए। राम राम करत्या सुख सांस शरीर, अंतर वसै न लागे जंपीर, आपे साहेब आप वजीर, नानक सेव सदा।

विसरें जे तुझ आप पुलाए तिन तू विसरें जे दूजे पाए मन मुख अज्ञानी जो नी पाए मन मुख अज्ञानी जो नी पाए जिन एक मन तुठा से सतगुरु सेवा लाए जिन एक मन तुठा तिन हर मन वसाए।

जय सतगुरु सहजे हर गुण गाई, जय सतगुरु तहां हौ मैं शब्द जलाई, गुरुमुख सेवा महली थाऊ पाए, गुरुमुख अंतर हर नाम वसाए, गुरुमुख भगत हर नाम समाए।

आई कहा गुपत प्रगट प्रभ बनत बनाई आपे सुतिया देह जगाई किसकी कीमत किने न होई कह कह कथन कहे सब कोई गुर शब्द समावे बूझे हर सोई सुन सुन वेखे शब्द मिलाए वड्डी वड्याई गुर सेवा ते पाए नानक नाम रते हर नाम समाए नानक नाम रते हर नाम समाए गौड़ी ग्वारे री महला तीजा मनमुख सूता माया मोह प्यार गुरमुख जागे गुण ज्ञान विचार से जन जागे जिन नाम प्यार सहजे जागे समय न कोए पूरे गुर से बूझे जन कोए रहाओ असंत अनाड़ी कदे न बूझे कथनी करे ते माया नाल लूझे अंध अज्ञानी कदे न सीजे इस जुग में राम नाम निस्तारा बिरला को पाए गुर शब्द विचारा आस करे सगले कुल उधारा इस कल युग में कर्म कर्म ना कोई कली का जन्म चंडाल कह कर होई नानक नाम बिना को मुक्त न होई गौड़ी महला तीजा ग्वारे री सच्चा अमर सच्चा पातशाह मन साचे राते हर वे पर

परमे आवे परमे जाए ते जग जन्मिया दूजे पाए मन मुख न चेते आवे जाए आप पुला के प्रभ आप पुलाया इहो जियो विडानी चाकरी लाया मां दुख खटे बिरसा जन्म गवाया कृपा कर सतगुरु मिलाए एको नाम चेते विच्चों परम चुकाए नानक नाम जपे नाओ नौ निद पाए गौड़ी ग्वारे री महला तीजा जिना गुरुमुख त्याया तिन पूछो जाए गुर सेवा के मन पति आए से तनवंत हर नाम कमाए पूरे गुर के सोजी पाए हर हर नाम जपो मेरे पाई गुरुमुख सेवा हर काल खाए पाई गुरुमुख सेवा हर काल खाए पाई रहाओ आप पछाणे मन निर्मल होए जीवन मुक्त हर पावे सोए हर गुण गावे मत उत्तम होए सहजे सहज समावे सोए दूजे पाए न सेवे आ जाए हों मैं माया महा बिख खाए पुत कुटुंब गृह मोह आजमाए मन मुख अंधा आवे जाए हर हर नाम देवे जन सोए अंजन भगत गुर सबदी होए गुरमत विरला बूजे कोए नानक नाम समावे सोए नानक नाम समावे सोए गौड़ी ग्वारे री महला तीजा गुर सेवा जुग चारे होई पूरा जनकार कमावे कोई अखुट नाम तन हर कोट न होई ऐसे सदा सुख दर शोभा होई ए मन मेरे परम न कीजै गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ सतगुर सेवे से महापुरुष

सतगुर सेवे सदा मन दाता, होमे मार कमल प्रगाता, अनहद वाजे निज कर वासा, नाम रते कर माहे उदासा। सतगुर सेवे तिनकी सच्ची बाणी, जुग जुग पवती आस वखाणी। हम दिन जपे

हृदय नाम नित हर रस कोग, गुरुमुख प्राणी नाम हर चाहे, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान स्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा से किने विरले चख दीठा, कर्म कांड बहु करे अचार, बिन नावे त्रिग त्रिग अहंकार, बंधन बांधियो माया पास, जन नानक छूटे गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागन, जैसी धरती ऊपर मेघुला बरसत है, क्या धरती मजे पानी नाही, जैसे धरती मजे पानी पर गासिया, बिन पगा बरसत फिराही।

पुरुष होए के क्या होए कर्म समाही, नाना रूप सदा है तेरे तुझ ही माहि समाही। इतने जन्म फूल परे से जा पाया ता फूले नाही, जा का कार्य सोई पर जाने जे गुर के सबल समाही। तेरा शब्द तू है आपे परम कहाई, नानक तत् तत् क्यों मिलिया पुनरप जन्म न आही। गौरी बैरागन महला तीजा, सब जग काले वस है बांदा दूजे पाए, हो मैं कर्म कमाऊं दे मन मुख मिले सजाए। मेरे मन गुर चरणी चित लाए, गुरमुख नाम निधान ले दरगे ले छबाए।

गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसिया मन आए अंदिन भगती रत्या हर नामे सुख समाए मन शब्द मरे प्रतीत होए हो मैं तजे विकार जन नानक करमी पायन हर नामा भगत पंडार गौरी बैरागन महला तीजा कई अड़े दिन चार है हर हर लिख पाया शोभावंती नार है गुरमुख गुण गाया पेव करे गुण समले सौरे वास पाया गुरमुख सहज समानिया हर हर मन पाया ससुरे पेय पिर वसे कहो कित विद पाये आप निरंजन अलख है आपे मेलाये रहाओ आपे ही प्रभु देह मत हर नाम ते आये वड़पागी सतगुरु मिले मुख अमृत पाये हो मैं दुबदा बिनस जाए सहजे सुख समाये सब आपे आप वर्तदा आपे नाए लाये मन मुख गर्भ न पायो अज्ञान ए आने सतगुर सेवा ना करें फिर पछताने गर्भ जो नी वास पाए दे गर्भे गल जाने मेरे करते ए वह पामदा मन मुख परमाने मेरे हर प्रभ लेख लिखाया दुर्मस्तक पूरा हर हर नाम से आया पेटिया गुरसूरा मेरा पिता माता हर नाम है हर बंधक बीरा हर हर बस मिलाए प्रभु जन नानक कीरा गौड़ी बैरागन महला तीजा सतगुर ते ज्ञान पाया हर सत विचारा मत मलीन प्रगट पई जत नाम मुरारा शिव सकत मिटाया चूका अंधियारा तुर मस्तक जिन को लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित विद पाई है संत जनो जिस देख हो जीवा हर बिन चसाना जीवती गुर मेलियो हर रस पीवा रहाओ हो हर गुण गावा।

हर शरणागत राखले हो, मूड मुग्ध निस्तारे सहज आनंद सदा गुरुमति, हर हर मन त्याया सज्जन हर प्रभ पाया, पर सोहेला गाया हर दया तार प्रभ बेनती, हर हर चेताया जन नानक मंगे तूर तिन, जिन सतगुर पाया गौड़ी ग्वारे री महला चौथा।

पंडित खास सिमरत पड़या, जोगी गोरख गोरख करया, मैं मूरख हर हर जप पड़या, ना जाना क्या गत राम हमारी। हर

सूद वैश पर किरत कमावे, मैं मूरख हर नाम छुड़ावे। सब तेरी सृष्ट तू आप रहा समाई, गुरमुख नानक दे वड्याई। मैं अंधले हर टेक टिकाई, मैं अंधले हर टेक टिकाई। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, निर्गुण कथा कथा है हर की। पज मिल साधु संगत जन की, तर पौजल अकथ कथा सुन हर की। गोविंद सत संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए। रहाओ जो जन प्यावे हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा। जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुनावे। सो जन हमरे मन चित पावे, जन पग रेण वड पागी पावे। संत जना स्यों प्रीत बन आई, जिनको लिखत लिखिया तुर पाई। ते जन नानक नाम समाई, ते जन नानक नाम समाई। गौड़ी ग्वारे री महला चौथा, माता प्रीत करे पुत खाए। मीने प्रीत पई जल नाए, सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए। ते हर जन हर मेलो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाए हमारे। रहाओ जो मिल बछरे गौ प्रीत लगावे, कामन प्रीत जा फिर कर आवे। हर जन प्रीत जा हर जस गावे, सारंग प्रीत बसे जल पारा।

गुर सिख प्रीत गुर मिले गुलाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे। गौरी ग्वारे री महला चौथा, पीखक प्रीत पीख प्रभ पाए, भूखे प्रीत होवे अन खाए, गुर सिख प्रीत गुर मिल आघाए, हर दर्शन देहो हर आस।

त्यागे गुर सिख प्रीत गुरु मुख लागे बछरे प्रीत खीर मुख खाए हृदय बिबसै देखे माए गुर सिख प्रीत गुरु मुख लाए और सब प्रीत माया मोह काचा बिनस जाए कूड़ा कछ पाचा जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा जन नानक प्रीत त्रिपत गुर साचा। गौरी ग्वारे री महला चौथा सतगुर सेवा सफल है बनी जित मिल हर नाम ते आया हर तनी जिन हर जपिया तिन पीछे छूटी कणी गुर सिख हर बोलो मेरे भाई हर बोलत सब पाप लह जाई राव जब गुर मिलिया तब मन वस आया तावत पंच रहे हर त्याया अंदिन नगरी हर गुण गाया सतगुर पग तूर जिना मुख लाई तिन कूर त्यागे हर लिव लाई ते हर दरगे मुख उजल पाई गुर सेवा आप हर पावे कृष्ण बल कद्र गुर पग लग त्यावे नानक गुरुमुख हर आप तरावे नानक गुरुमुख हर आप तरावे। गौरी ग्वारे री महला चौथा हर आपे जोगी डंडा तारी हर आपे रब रहा बनवारी हर आपे तप

चौथा साहो हमारा तू तनी जैसी तू रास दे तैसी हम ले हर नाम बनन जय रंग स्यो जे आप दयाल होए दे हम बन जा रे राम के हर वंज करावे दे रास रे रहाओ लाहा हर तगत तन खटिया हर सच्चे सा मन पाया हर जप हर वखर लद्या जम जा गाती नेड़ ना आया और वणज करे व्यापारिये अनंत तरंगी दुख माया कोई जे है वणज हर लाया फल से हा तिन पाया हर हर वणज सो जन करे जिस कृपाल होए प्रभ दे जन नानक साओ।

तन छाट दे पर भोग बिलासा त्यो हर जन प्रीत हर राखदा दे आप हथासा मेरे राम मैं मूर्ख हर राख मेरे गुस्सैया जन की उपमा तुझे वडैया रहाओ मंदर कर आनंद हर हर जस मन पावे सब रस मीठे मुख लगे जा हर गुण गावे हर जन परवार सवार है इक्की कुली सब जगत छड़ावे जो किछ किया सो हर किया हर की वड्याई हर जी तेरे तू वरतदा हर पूज कराई हर भगत पंडार लहाएगा आपे वरताई लाला हाट विहाजिया क्या शिष चतुराई जे राज बहाले ता हर गुलाम काशी को हर नाम कढ़ाई जन नानक हर का

लाए हल जोते उद्यम करे मेरा पुत ती खाए त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छाए मैं मूरख की गत की जय मेरे राम गुर सतगुर।

वो बतावे क्यों हर जन हर हर बोलता हर बोल सुख पावे। बिच संचय हटवाणिया बह हाट कमाए मोह झूठ पसारा झूठ का झूठे लपताए। क्यों हर जन हर

सो जंतर है जो दासन दास जन नानक नाम से आया गुरुमुख परगास। गौड़ी बैरागन महला चौथा। नित दिन सरात लालच करे पर मैं परमाया वेगार सिरे वेगारिया सिर पार उठाया। जो गुर की जन सेवा करे सो कर के कम हर लाया। मेरे राम तोड़ बंधन माया कर के कम लाए। नित हर गुण गावे हर नाम समाए रहाओ। नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजे अर्थ सब माया। कै बंदे कै दान ले कै नरपत मर जाया। तन तन सेवा सफल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया। नित सौदा सूद की चै बहु पात कर माया कै ताई। जा लाहा दे ता सुख मने तोटे मर जाए। जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाए। जितनी भूख अन रस साध है तितनी भूख फिर लागे। जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे। जन नानक हर रस तृप्तिया फिर भूख न लागे। गौड़ी बैरागन महला चौथा। हमरे मन चित हर आस नित क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा। जिन प्रीत लाई सो जानता हमरे मन चित हर बहुत प्यारा। हों कुर्बानी गुर अपने जिन विछड़िया मेलिया मेरा सृजनहारा। मेरे राम हम पापी शरण परे हर द्वार। मत निर्गुण हम मैले कबहू अपनी कृपा तार रहाओ। हमरे अवगुण बहुत बहुत हैं।

सतगुरा जब गुरु बोले तब विषम होए जाए। हम जैसे अपराधी अगर कोई राख है, जैसे हम सतगुरु राख लिए छड़ाए। तू गुरु पिता तू है गुरु माता, तू गुरु बंदब मेरा।

तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे, गौरी बैरागन महला चौथा। कंचन नारी में जियो लुभत है मोह मीठा माया, कर मंदर कोड़ खुशी मन अन रस लाया।

दाता हर हर दयाल कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे रहाओ। किछ रूप नहीं किछ जात नहीं किछ ढंग न मेरा क्या मोह लै बोले गुण विहून नाम जपया ना तेरा। हम पापी संग गुर उबरे पुन सतगुर केरा सब जियो पिंड मुख नक दिया बर्तन तो पानी अन

जन नानक हाट विहाजिया हर गुलम गुलामी। गौड़ी बैरागन महला चौथा। जो जननी सुत जन पालती राखे नगर मझार अंतर बाहर मुख दे गिरास खिन खिन पोचार त्यों सतगुरु गुरसिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारिक हर प्रभ के।

जरा मरा ताप सिरत साप सब हर के बस है, कोई लाग न सके बिन हर का लाया। ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावो, जन नानक जो अंति।

आओ कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुरु पूरा इच पुनी जन केरिया ले सतगुरु तूरा हर भगत दृढ़ावे हर भगत सुने तिस सतगुरु मिलिए तोटा मूल न आवे हर लाभ नित दृढ़िए जिस को हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उदरे।

गुरमुख रंग पाया अत गूड़ा, हर रंग पीनी मेरी चोली, अपने हर पद की हों बोली, जब हम हर सेती मन मानिया।

स्वामी सो सतगुर मेल मेरा प्राणे राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने हम मूर मुगद असुद मत होते गुर सतगुर के बचन हर हम जा

हर का नाम अमृत रस चाखिया, मिल सतगुर मीठ रस गाने, जिनको गुर सतगुर नहीं पेटिया, ते साकत मूड दीवाने, जिनके कर्महीन तुर पाए, देख दीपक मोय कचाने, जिनको तुम दया कर मेलो, ते हर हर सेव लगाने, जन नानक हर हर हर जप प्रगते, मत गुरमत नाम समाने, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है, स्वामी कौ किथे हर पहु नसीए, हर आपे बस ले प्रभ साचा, हर आप छदाए छुटिए, मेरे मन जप हर हर हर मन जपिए, सतगुर की शरण।

सेवै निज कर वसिए गुरमुख जाए लहो कर अपना कस चंदन हर जस कसिए मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम लै लाहा हर मन हसिए हर हर आप दया कर देवै ता अमृत हर रस चखिए मेरे मन नाम बिना जो दूजे लागे ते साकत नर जम कुटिए ते साकत चोर जिना नाम विसारिया मन तिनके निकट न फिटिए मेरे मन सेवो अलख निरंजन नर हर जित सेवे लेखा छुटिए जन नानक हर प्रभ पूरे किए खिन मासा तोल न कटिए गौड़ी पूर्वी महला चौथा हमरे प्राण वसगत प्रभ तुमरे मेरा जियो पिंड सब तेरी दया करो हर दर्स दिखावो मेरे मन सन लोच कनेरी राम मेरे मन सन लोच मिलन हर केरी गुर किरपाल कृपा किंचत गुर कीनी हर मिलिया आए प्रभ मेरी रहाओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम हर जानो मेरी अंदिन नाम जपी सुख।

आगे जो हर राखे त्यों ठाणे हम फूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरे काडे। गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु परया मिर साधु खंडल खंडा है पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा है कर साधु अंजलि पुन वड्डा है कर दंडौत पुन वड्डा है राव सात हर रस साधन।

तन तन गुरु हर राया, राम गुर के बचन हर पाया। रहाओ मेरे हीरे प्रीत राम राय की, गुरु मार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सर।

आया। हम अपराध पाप भोकी ने कर दुष्टी चोर चुराया। अब नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर भाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाद। गुरमत मनुआ गावे बद पागी गुर दर्शन पाया। तन तन गुरु लिवलावे गुरमुख हर निवलावे। रहाओ हमरा ठाकुर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे। हम मल मल तोवे पाम गुरु के जो हर हर कथा सुनावे। हृदय गुरमत राम रसायन जुहवा हर गुण गावे। मन रसक रसक।

जन नानक कहो हर कृपा तारी, मत गुरमत नाम दृढ़ावे। रागौड़ी माज महला चौथा, गुरमुख जिंदु जप नाम करम्मा, मत माता मत जियो नाम मुख रामा। संतोख पिता कर गुर पुरख अजन्मा, वड पागी मिल रामा। गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो। वड पागी मिल सुगड़ सुजानी जियो, मेरा मन तन हर रंग तिन्ना। आवो संतो मिल नाम जपाहा, रिच संगत नाम सदा ले लाहा जियो। कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो, मिल पूरब लिखियड़े तुर कर्मा। सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो, मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया। हर अमृत उठड़ा

मन अन दिन अन ग्रह जियो हर पायणा वड पा गई मेरे गोविंदा नित लैला हा मन हस जियो हर आप उपाय हर आपे देखे हर आपे कारे लाया जियो इक खावे बस टोट ना आवे इतना फक्का पाया जियो इक राजे तख्त बहे नित सुखिए इतना भिख मंगाया जियो सब इको शब्द वर्तदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम ते आया जियो गौड़ी माज महला चौथा मन माही मेरे गोविंदा हर रंग रता मन माही जियो हर रंग नाल ना लखिए मेरे गोविंदा गुरपुरा अलख लखाही जियो हर हर नाम परदासे।

मेरा हर प्रभु सज्जन सैनी जियो, हर आए मिलिया जग जीवन मेरे गोविंदा, मैं सुख विहानी रहनी जियो। मैं मेलो संत मेरा हर प्रभु सज्जन, मैं मन तन भुख लगाया जियो, हऊ रह ना सको बिन देखे मेरे प्रीतम, मैं अंतर बिरहो हर लाया जियो। हर राया मेरा सज्जन प्यारा, गुर मेले मेरा मन जीवाया जियो, मेरे मन तन आशा।

हर दान देवे सब मंगी जियो, भगता नाम आधार है मेरे गोविंदा, हर कथा मंगे हर चंगी जियो, हर आपे भगत कराएंदा मेरे गोविंदा, हर भगता लोच मन पूरी जियो, आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा, रब रहा नहीं दूरी जियो, हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा, हर आप रहा पर पूरी जियो, हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा, हर वेखे आप हदूरी जियो, हर अंतर वाजा कौन है मेरे गोविंदा, हर आप वजाए क्यों वाजे जियो, हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा, गुर शब्दी हर प्रभ गाजे जियो, आपे शरण पवाएंदा मेरे गोविंदा, हर भगत जना राख लाजे जियो, वड पागी मिल संगती मेरे गोविंदा, जन नानक नाम सिदका जय जियो, गौड़ी माज महला चौथा, मैं हर नामे हर बिरहो लगाई जियो, मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जियो, हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जियो, मेरा नाम सखा हर पाई जियो, गुण गावो संत जियो, मेरे हर प्रभ केरे जियो, जप गुरमुख नाम जियो, भाग वडेरे जियो, हर हर नाम जियो, प्राण हर मेरे जियो, फिर बहुड़ न पव जल फेरे जियो, क्यों हर प्रभु वेखा मेरे मन तन चाओ जियो, हर मेलो संत जियो, मन लगा पाओ जियो, गुर शब्दी पाये हर प्रीतम राओ जियो, वड पागी जप नाओ जियो, मेरे मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो, हर मेलो संत जियो, गोविंद प्रभ पासा जियो, सतगुर मत नाम।

वाजी वाजियो मन अंदर अमृत गुरमत हर मुंवाजियो मन हर रंग रतना हर रस सदा पीवाजियो हर पायड़ा मन जीवा जियो मेरे मन तन प्रेम लगा हर बाण जियो मेरा प्रीतम मित्र हर पुरख सुजान जियो गुरु मेले संत हर सुगड़ सुजान जियो हौ नाम विटो कुर्बान जियो हौ नाम विटो कुर्बान जियो हौ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो हर दसो संतो जी हर खोज पवाई जियो सतगुर तुठड़ा दसे हर पाई जियो हर नामे नाम समाई जियो मैं वेदन प्रेम हर बिरहों लगाई जियो गुर सरदा पूर

इन विद कुशल होत मेरे पाई, क्यों पाई है हर राम सहाई। रहाओ कुशल ना ग्रे मेरी सब माया, ऊंचे मंदर सुंदर छाया, झूठे लालच जन्म गवाया। हस्ती कोड़े देख विगासा, लस्कर जोड़े नेब खवासा, गल जेवड़ी हूं मैं के फासा, राज कमावे दैग सारी, माने रंग भोग बहुनारी, जो नरपत सुपने पे खारी। एक कुशल मोको सतगुरु बताया, हर जो किछ करे सो हर क्या पगता पाया, जन नानक हूं मैं मार

कई जन्म गर्भ हिर खरिया, कई जन्म साफ कर उपाया, लख 84 जोन परमाया, साध संग पयो जन्म परापत, पर सेवा पद हर हर गुरमत, त्याग मान झूठ अभिमान, जीवत मरहे दर्द है परवा।

पंजवां कर्म पूम में बो हो नाम पूरन होए तुम्हारा काम फल पावे मिटे जम त्रास नित गावे हर हर गुण जास हर हर नाम अंतर उर्धार।

उपाग छोड़ गहो तिसकी ओट, निमख माहे होवे तेरी छोट, सदा निकट कर तिसनो जान, प्रभ की आज्ञा।

अविनाशी गुर के बचन कटी जम फांसी गुर का बचन जी के संग गुर के बचन रचे राम के रंग जो गुर दिया सो मन के काम संत का किया सत्कर्मान रहाओ गुर का बचन अटल अछेद गुर के बचन कटे परम पेद गुर का बचन कतो न जाए गुर के बचन हर के गुण गाए गुर का बचन जी के साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ गुर के बचन नरक ना पवे गुर के बचन रसना अमृत रवे गुर का बचन प्रगट संसार गुर के बचन न आवे हार जिस जन हुए आप कृपाल नानक सतगुर सदा दयाल गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा जिन कीता माटी ते रतन गर्भ में राखिया जिन कर जतन।

सिमर सिमर सिमर गुणतास, एको मन एको सब ठाए, पूरन पूर रहो सब जाए, गुर पूरे सब परम चुकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया। गौरी ग्वारेरी महला पंजवा, अगले मोए से पा

सिर ऊपर ठाडो तवन राए, मीठी कर कर बिखिया खाए। हौ बंदो हौ साधो बैर, हमरी पूम कौन काले पैर। हौ पंडित हौ चतर सियाना, करने हार न बुझे बिगाना। अपनी गत मित आपे जाने, क्या को कहे क्या आंख वखाने। जित जित लावे तित तित लगना, अपना पला सब काहू मंगना।

पहला पंजवा अनिक जतन नहीं होत छुटारा बहुत सियाणत आगल पारा हर की सेवा निर्मल हेत प्रभ की दरगे शोभा सेत मन मेरे गहो हर नाम का ओला तुझे ना लागे ताता चोला रहाओ ज्यो बोहित पै सागर माहे अंधकार दीपक दीपाहे अगन शीत का

कृपा जिस आप दिवावे, हर हर नाम जाके हृदय बसे, दुख दर्द ते नानक नसे, गौड़ी द्वारे री महला पंजवा, बहुत दर्ब कर मन ना अघाना, अनेक रूप देख नहीं पतिया।

त्रिग तन त्रिग तन माया संग राते राव जो बिगारी कै सिर दीजे दाम ओए खसमे कै गृह उन दुख सहाम जो सुपने हुए बैस।

पुत्र कलत्र ग्रस्त का फासा, होन न पाये राम के दासा। कवन सो विद जित राम गुण गाए, कवन सो मत जित तर ए माए राव। जो पलाई सो बुरा जाने, साच कहे सो बिखे समाने। जाने नाही जीत अर हार, इहो लेवा साकत संसार। जो हला हल सो पीवे बौरा, अमृत नाम जाने कर कौरा। साध संग के नाही नेर, लख चौरासी परमता फेर। एक जाल पहाए पंखी, रस रस भोग कर।

निमख न कृष्णा तेरी लाखे, हर रास्ता तू चाखे साद, चाखत होए रहे विस्माद। अमृत रसना पियो प्यारी, ए रस राती होए तृप्तारी। रहाओ हे जेवे तू राम गुण गाओ, निमख निमख हर हर हर त्याओ। आन न सुनिए कतहु जाइए, साध संगत वड पागी पाइए। आठ पैर जेवे आराद, पार ब्रह्म ठाकुर आगाद। इहा उहा सदा सुहेली, हर गुण गावत रसन अमोली। बनस्पत मौली फल फूल पेगे, ए रस राती बोर न छोड़े। आन न रस कस लवे न लाई, कहो नानक गुरु पे हैं सहाय। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, मन मंदर।

कवन बपारी जाका उहां विसाहो, नाम रतन को व्यवहारी अमृत भोजन करे आहारी रहाओ, मन तन अर्पी सेव करी जय कवन सो जुगत जित कर पी जय, पाए लगो तज मेरा तेरे कवन सो जन जो सो

संगा ठाकुर नाम कियो उनवर्तन त्रिपत अगावन हर कै दर्शन हर संग राते मन तन हरे गुरपुरे की सरनी परे रहाओ चरण कमल आत्म आधार एक निहारे आज्ञाकार एको बनज एको व्योहारी अवर न जाने बिन निरंकारी हर सोग दो हूते मुक्ते सदा अलिपत जोग हर जुगते दीसे सब में सबते रहते पार ब्रह्म का ओए ध्यान करते संतन की महिमा कवन वखानो अगाध बोध किछ मित नहीं जानो पार ब्रह्म मोहि।

नीचे आया, मरम तुम्हारा घुरते पाया, सब गुरते दृढ़या एक एक है, नानक दास हर हर हर ते कह। गौड़ी ग्वारेड़ी महला पंजवा, व्यापक हरख सोग विस्थार, व्यापक सुर्ग नरक अवतार, व्यापक तन निरतन पेख शोभा, मूल व्यादि व्यापस लोभा, माया व्यापक बहु प्रकारी, संत जीवे प्रभ ओठ तुम्हारी, रहाओ व्यापक अंग बुद्ध का माता, व्यापक पुत्र कलत्र संग्राता, व्यापक हस्त कोड़े अर बस्ता, व्यापक रूप जोबन मदमस्ता, व्यापक पूम रंक अर रंगा, व्यापक गीत नाद सुन संगा, व्यापक सेज महल सिगार, पंच दूत व्यापक अंधियार, व्यापक कर्म करे हो फासा, व्यापक ग्रस्त व्यापक उदासा, आचार व्यवहार व्यापक इन जात, सब कुछ व्यापक बिन हर रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहां व्यापै माए, कहो नानक जिन

सगल भगत जाका नाम आधार, सर्व व्यापत पूरन तनी, जाकी शोभा कट कट बनी। जिस सिमरत दुख डेरा कहे, जिस सिमरत जम किछु ना कहे, जिस सिमरत होत सूखे हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन।

संत प्रसाद मोको नाम निवास। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा। सतगुर दर्शन अग्न निवारी। सतगुर पेत तो हूं मैं मारी। सतगुर संग नाही मन डोले। अमृत बाणी गुरुमुख।

संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे, संत कृपा ते मिटे मोह परम, साध रेण मज्जन सब धर्म, साध कृपाल दयाल गोविंद, साधा मैं ए हमरी जिंद, कृपा निध कृपाल ते आवो, साध संग ता बैठन पावो, मोहे निर्गुण को प्रभु कीनी दया, साध संग नानक

अब मत दिन सी दुष्ट बिगानी, जब के सुनिया हर जस्तानी, रहाओ सहज सुख आनंद निधान, राखन

सुखदाता जे नाम जपावे कर कृपा तिस संग मिलावे रहाओ जिस होए दयाल तिस आप मिलावे सर्व निधान गुरु ते पावे आप त्याग मिटे आवन जाना साध के संग।

पार ब्रह्म परमेश्वर क्या गुर पूरे ते ए मत पाये रहाओ करण करावन हार दयाले जी जम सगले प्रतपाल अगम अगोचर।

प्रभ सेवक साचा वेसा हो गुर पूरे रख दे हाथ नानक पार ब्रह्म सम्राट गौड़ी द्वारे री महला पंजवा गुरु प्रसाद नाम मन लागा जन्म जन्म का सोया जागा अमृत गुण उचरे प्रभ बाणी पूरे गुरु की सुमत प्राणी प्रभ सिमरत कुशल सब पाए कर बाहर सुख सह सबाए रहाओ सोई पछाता जिन्हें उपाया कर कृपा प्रभ आप मिलाया बाँ पकड़ लीनो कर अपना हर हर कथा सदा जप जपना मंत्र तंत्र औखद पुने चार हर हर नाम जी प्राण आधार साचा तन पायो हर रंग दुतर करे साध के संग सुख बैसो संत सज्जन परवार हर तन खटियो जाका

हस्त पुनीत हुए तत्काल, दिलस जाए माया जंजाल, रसना रमो राम गुण नीत, सुख पावो मेरे पाई मीत, लिख लेखन कागद मसवाणी, राम नाम हर

आप कमाओ अवरा उपदेश, राम नाम हृदय प्रवेश। जाके माथे एहो निदान, सोई पुरख जपे भगवान। आप पैर हर हर गुण गाओ, कहो नानक हों।

पिक्चर आ गया पिक्चर पोगे पोग जल न पाये राम स्नेह तीर्थ संयोग सती उठ होई रहाओ देखा देखी मन हठ जल जाये प्रिय संग न पावे बहु जोन को आये शील संयम प्रिय आज्ञा माने किस नारी को दुख न जमाने कौ नानक जिन प्रयो परमेश्वर कर जानिया तन सती दरगे परवानिया गौरी द्वारे री महला पंजवा हम तनवंत पाग

परे पंडार अकूट अतोल, खावे खर्चे रल मिल पाई, तोट ना आवे वद दो जाए, कहो नानक जिस मस्तक

छोड़ न जाई सर पर तारे रहाओ। दुख रोग सोग बिसरे जब नाम, सदा आनंद जा हर गुण गाम। बुरा पला कोई न कही जाए, छोड़ मान हर

रस हर रस है आयो सो अन रस नाही लपटायो जाता तहया दर्दे चले सो किसको नजर ले आवे तले जाता सब किस ताका होए नानक ताको सदा सुख होए गौड़ी महला पंजवा जाके दुख सुख सम कर जापे ताको काड़ा कहाँ ब्यापे सहज आनंद हर साधु माहे आज्ञाकारी हर हर राय रहाओ जाके अचिंत वसे मन आए ताको चिंता कतहु नाहे जाके दिन स्यो मन से फरमा ताके कछु नाही डर जमा जाके हृदय दियो गुरु नामा कहो नानक ताके सगल निधाना गौड़ी महला पंजवा अगम रूप का मन में थाना गुर प्रसाद किने विरले जाना सहज कथा के अमृत कुंटा जिसे प्राप्त तिस

जिस कर कृपा सतगुरु मिले दयाल, तिस ही गुण तिन ही प्रभ जाता, जिसकी मान ले सुखदाता रहाओ दूजा। गौरी महला पंजवा, आपन तन नहीं जाके दरबा, राज मिलख नहीं आपन दरबा, आपन नहीं का को लपटायो, आपन नाम सतगुर के पायो रहाओ। सुत बनता आपन नहीं पाई, इष्ट मीत आप बाप ना माई, सोयना रूपा सुन नहीं दाम, हैवर गैवर आपन नहीं काम। कहो नानक जो गुरु बख्श मिलाया, इसका सब किस जिसका।

कहो नानक मैं सो गुर पाया, पार ब्रह्म पूरन देखाया, गौड़ी महला पंजवा दुलभ दे पाई वड पागी।

कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ आया, केवल नाम हृदय समाया। गौड़ी महला पंजवा, का की माई का को बाप, नाम तारीख झूठे सब साथ, काहे को मूर्ख पकलाया।

पूर्व विच अग कोट संत प्रसाद जन्म मरण के छोट संत का दर्श पूरन स्नान संत कृपा ते जपिए नाम रहाओ संत के संग मिटिया अंकार दृष्ट आवे सब एक अंकार संत सो प्रसन्न आए वस पंचार अमृत नाम हृदय ले संचार कहो नानक जाका पूरा कर्म किस पेते साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा हर गुण जपत कमल प्रगास है हर सिमरत त्रास सब नास है सामत पूरी जित हर गुण गावे वडे पाग साधु संग पावे रहाओ साध संग पाये निज नामा साध संग पूरन सब कामा हर की भगत जन्म परवान गुर कृपा ते नाम बखान कहो नानक सो जन परवान जा कै हृदय वसै भगवान गौड़ी महला पंजवा एक जा का मन राता जिसरी तिसे पराई पाता बिन गोविंद ना दिसे कोई करण करावन करता सोई रहाओ मन है कमावे मुख हर हर बोले सो जन इत उत्कत है न डोले जा के हर तन सो सत्साओ गुर पूरे कर दीनो विसाओ जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवा नाम भगत के प्राण आधार नामो तन नामो व्योहार नाम वडाई जन शोभा पाए कर कृपा जिस आप दिवाए रहाओ नाम भगत के सुख स्थान नाम रत सो भगत परवान हर का नाम जन को तारे सास सास जन नाम समारे कहो नानक जिस पूरा

चरण ठाकुर के मार्ग कहावो फलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम तय पार उतरिया रहाओ नेत्र संतन का।

आओ हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे इस जन दुख निकट नहीं आवे हर की टहल कर जन सो है ताको माया अगर न पो है मन तन मुख

दुख बिन से सुख हर गुण गाए, गुरपुरा पेटिया लिव लाए, रहाओ हर का नाम दियो गुर मंत्र, मिटे वसूरे उतरी चिंत, अनद पए गुर मिलत कृपाल, कर कृपा का तेज जमजाल, कहो नानक गुर पूरा पाया, ताते बहुर न व्यापे माया। गौड़ी महला पंजवा, रास लिया गुर पूरे आप, मन मुख को लागो संताप, गुरु

गुर का शब्द तेरे संग सहाई, दयाल कहे सगले जी पाई, गुर पूरे जब कृपा करी, पनक नानक मेरी पूरी परी। गौड़ी महला पंजवा, अनक रसा खाए जैसे तोर, मोह की जेवरी बांधियो चोर, मृतक देह साध संग बिहुना, आवत जात जोनी दुख छीना, रहाओ अनेक बस्त्र सुंदर पहराया, जो डरना खेत माहे डराया, सगल शरीर आवत सब काम, नेफल मानुक जपे नहीं नाम, कहो नानक जा को कहे दयाला, साध संग मिल पजे गोपाला। गौड़ी महला पंजवा, कल कलेश गुर शब्द निवारे, आवन जान रहे सुख सारे, तै दिन से निरपो हर के आया, साध संग हर के गुण गाया, रहाओ चरण कवल हृद अंतर तारे, अग्न सागर गुर पार उतारे, बूढ़त जात पूरे गुर कांडे, जन्म जन्म के टूटे गांडे, कहो नानक किस गुर बलिहारी, जिस पेटत गत पई हमारी। गौड़ी महला पंजवा, साध संग ताकी सरनी परो, मन तन अपना आगे तरो, अमृत नाम पीवो मेरे पाई, सिमर सिमर सब तपत बुझाई, रहाओ तज अभिमान जन्म मरण निवारो, हर के दास के चरण नमस्कारो, साफ साफ प्रभ मने संभाले, सो तन संचो जो चाले नाले, तिसे प्राप्त जिस मत

चिंत पुनि मन आशा करी दया सतगुरु गुण ताशा दुख नाठे सुख आए समाए हील न परी जा गुर फरमाए इस पुनि पूरे गुर मिले नानक के जन सुख।

सगल रोग का दिल सिया खाओ। सैंक सुभाए बोले हर बाणी, आज पहर प्रभ सुनरो प्राणी। दुख दर्द जम नेड़ न आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे। गौड़ी महला।

जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग ओ बेला को हों बल जाओ जित मेरा मन जपे हर नाओ रहाओ सफल मूरत सफल ओ परी जित रसना उचरे हर हरी सफल ओ माथा संत नमस्कार से चरण पुनीत चले हर मार्ग कहो नानक भला मेरा कर्म जित पेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा गुरु का शब्द रास मन माहे नाम सिमर चिंता सब जाहे दिन भगवंत नाही अनकोए मारे राखे को सोए रहाओ गुरु के चरण हृदय उर्धार अगन सागर जब उतरे पार गुरु मूरख सो लाए ध्यान इहा उहा पावे मान सगल त्याग गुर शरणी आया मिटे अंधेसे नान सुख पाया गौड़ी महला पंजवा जिस सिमरत दुख सब जाए नाम रतन वसे मन आए जब मन मेरे गोविंद की बाणी साधु जन राम रसन वखाणी रहाओ इक्कस बिन नाही दूजा कोए जाकी दृष्ट सदा सुख होए साजन मीत सखा कर एक हर हर अक्षर मन में लेख रव रया सरबत स्वामी गुण गावे नानक अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा तै में रचियो सब संसारा तिस पौ नाही जिस नाम अधारा पौ ना व्यापे तेरी सरना जो तुझ पावे सोई करना रहाओ सोग हरख में आवन जाना तिन सुख पाया जो प्रभ पाना अगन सागर मा व्यापे माया से शीतल जिन सतगुरु पाया राख ले प्रभ

तू मन वसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा से परम पौ पागे, पार ब्रह्म अपरम पर स्वामी, सगल कथा के अंतर जामी, करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सचरास, गौड़ी महला पंजवा। कण बिना जैसे सोथर तुखा, नाम विहून सुने से मुखा, हर हर नाम जपो नित प्राणी, नाम विहून त्रिग जे बिगानी, रहाओ नाम बिना नाही।

जो कुछ वरतै सब तेरा पाना, हुक्म बूझै सो सच समाना, कर कृपा दीजै प्रभु दान, नानक सिमरै नाम निधान। गौड़ी मैला पंजवा ताका दर्श पाये वड़ पागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाके हर वसिया मन माही, ताको दुख सुपने भी नाही। राव सर्व निधान राखे जन माहे, ताके संग किलविक दुख जाहे, जन की महिमा कति न जाए, पार ब्रह्म जन रहा समाये, कर कृपा प्रभु बिनो सुनी जय, दास की सूर नानक को दी जय। गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण वसै मन आए।

का निर्मलमंता सोड उपाव एक टेक राख महापदार्थ अमृत रस चाख बिखम सागर तेई जन तरे नानक जाको नदर करे गौड़ी महला पंजा।

चरण कमल हृदय उतारी, मन तन तन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होवे प्रवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत तूर पाये वड पागी, नानक गुर पेटत हर सों लिव लागी। गौड़ी महला पंजवां। करे दुह कर्म दिखावे होर, राम की दरगे बांदा चोर, राम रमे सोई रामाना, जल सल मैयल एक समाना, रहाओ अंतर बिख मुख अमृत सुनावे, जमपुर बांदा चोटा खावे, अनक पर्दे में कमावे विकार, खिन में प्रगट हो है संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक किसके

आनंद निवासे राम जना को राम परोसा नाम जपत सब मिट्यो अंदेसा रहाओ साध संग कछ पौ ना पराती गुण गोपाल गाये दिन राती कर कृपा प्रभ बंदन छोटे चरण कमल की दीनी ओट कहो नानक मन पई प्रतीत निर्मल जस की रे जननीत गौड़ी महला पंजवा हर चरणी जा का मन लागा दुख दर्द प्रमता।

सांस आनंदा जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिटे कलेश चरण कमल मन में प्रवेश उचरो राम नाम लख बारी अमृत रस पीवो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद खोए साध के संग किलबिख सब टोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजे सागर वाला गौड़ी महला पंजवा जिसका दिया पैने खाए किस क्यों आलस क्यों बने माए खसम विसार आन कम लागे कौडी बदले रतन त्यागे रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोबा दास सलाम करत कत सोबा अमृत रस खावे खान पान जिन दिए तिसे न जाने स्वान कहो नानक हम लून हरामी बख्श ले हो प्रभ अंतरगामी गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मन माए ध्यान सगल तीर्थ मजन स्नान हर दिन हर सिमरन मेरे पाई कोट जन्म की मल ले जाए रहाओ हर की कथा रिद माए बताए मन बाचत सगले फल पाए जीवन मरण जन्म परवान जाके हृदय वसे भगवान कहो नानक से जन पूरे जिना प्राप्त साधु पूरे गौड़ी महला पंजवा खादा पैन दा मुह कर पाए किसनो जो है दूत धर्म राए किस त्यों बेमुख जिन जियो पिंड दीना कोट जन्म पर मैं बहुजूना रहाओ साकत की ऐसी है रीत जो किस करे सगल विपरीत जियो प्राण जिन मन तन तारिया सोई ठाकुर मनो विसारिया बदे विकार लिखे बहु कागर नानक उदर कृपा सागर पार ब्रह्म तेरी

सगल मनोरथ मुक्त पद गीत, ऐसा मीत करो सब कोए, जाके बिरथा कोए न होए। रहाओ अपने स्वाए हृदय ले तारिया, दुख दर्द रोग सगल बिदारिया। रखना गीदी बोलत राम, पूर्ण होए सगले काम। अनेक बार नानक बलिहारा, सफल दर्शन गोविंद हमारा। गौड़ी महला पंजवा, कोट बिगन हिरे खिन माहे, हर हर कथा साध संग सुनाहे, पीवत राम रस।

औषध मंत्र तंत्र सब सार करने हार हृदय में तार सब सब परम पजियो पार ब्रह्म कौ नानक अटल ए धर्म गौड़ी महला पंजवा कर कृपा पेटे गुरसोई तित बल रोग न व्यापे कोई राम रमन करण तै सागर करण सूर फारे जम कागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम ए आसर पूरन पै काम जप तप संयम पूरी वडियाई गुर कृपाल हर पै साई मान मोह खोए गुर परम देख नानक पसरे पार ब्रह्म गौरी महला पंजवा दिखे राज के अंदुला पारी दुख लागे राम नाम सितारी तेरे दास को तुही वड्याई माया मगन नरक ले जाई रहाओ रोग ग्रस्त सितारे नाओ दिख माते का

अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा। आठ पैर संगी बटवारे कर कृपा प्रभ ले निवारे, ऐसा हर रस रमो सब कोए सर्व कला पूरन प्रभ सोए। रहाओ महातप सागर संसार प्रभ खिन में पार उतारन हार, अनित बंधन तोरे नहीं जाहे सिमरत नाम मुक्त फल पाए। उकत सियानप किसके कछ नाहे कर कृपा नानक गुण गाहे गौड़ी महला पंजवा। थाती पाई हर को नाम विचर संसार पूरन सब काम, वड पागी हर कीर्तन गाये पार ब्रह्म तू देहता पाये। रहाओ हर के चरण हृदय उर्धार।

नानक दरगे पाए मान गौड़ी महला पंजवा जल थल मैयल पूरन हर मीत ब्रह्म बिन से गाए गुण गीत उठत सोवत हर संग पहरुआ जा कै सिमरन जम नहीं डरुआ रहाओ चरण कमल प्रभ हृदय निवास सगल दुख का होया नास आसा मान तान तन एक साचे साकी मन में टेक महा गरीब जन साध अनाथ नानक प्रभ राखे देहात गौरी महला पंजवा हर हर नाम मजन कर सूचे कोट ग्रहण पुन फल मूचे रहाओ हर के चरण हृदय में बसे जन्म जन्म के किल विख नसे साध संग कीर्तन फल पाया जम का मार्ग दृष्ट न आया मन बच क्रम गोविंद आधार ताते छुटियो बिक संसार कर कृपा प्रभु कीनो अपना नानक जाप जपे हर जपना गौड़ी महला पंजवा पौ शरणाई जिन हर जाते मन तन शीतल चरण हर राते कै पंजन प्रभ मन ना बसाही दरपत दरपत जन्म बहुत जाही रहाओ जा कै हृदय बस्यो हर नाम सगल मनोरथ

0: का नानक टेक गौड़ी मैला पंजवां। बार रासोर रह समाल कर आए गोविंद लै नाल, हर हर नाम संतन कै संग, मंतन राता राम कै रंग। रहाओ गुरु प्रसादी सागर तरिया, जन्म जन्म के किन विच सब हिरिया। शोभा सुरत नाम भगवंत, पूरे गुरु का निर्मल मंत। चरण कमल हृदय में जाप, नानक पेख जीवे प्रताप। गौड़ी मैला पंजवां। तन एहो थान गोविंद गुण गाए, कुशल खेम प्रभ आप बसाए। रहाओ विपत तहां जहां हर सिमरन नाही, कोट आनंद जह हर गुण गाही। हर बिसरे दुख रोग कनेरे, प्रभ सेवा जम लगे ननेरे। सोवड पागी निचल थान, जह जपिए प्रभ केवल नाम। जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी, नानक को मिलिया अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा।
1: जो प्राणी गोविंद त्यावे, पढ़िया अन पढ़िया परम

रूपवंत सो चतुर सियाना, जिन जन मान्या प्रभ का पाना, जग में आया सो परवान, काट काट

टोल महारस हर अमृत की जय रहाओ। निर्मल उद्दक गोविंद का नाम, मज्जन करत पूरन सब काम। संत संग ते गोष्ट होए।

आद जुबाद प्रगट प्रताप निंदक मुआ उपज वदताप इन मारिया जे रखे न कोए आगे पाछे मंदी सोए अपने दास राखे।

साज तूर कर सुध मन जाई, अनक जला जे तो वै दे, मैल ना उतरे सुध ना ते। सतगुर पेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर कात्या पौ काल। मुकत पुगत जुगत हर नाओ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ। गौड़ी महला पंजवा, जीवन पदवी हर के दास। जिन मिलिया आत्म प्रगास, हर का सिमरन सुन मन कानी। सुख पावे हर द्वार प्राणी, रहाओ आठ पैर त्याई है गोपाल। नानक दर्शन देख निहाल, गौड़ी महला पंजवा। सांत पाई गुरु गोविंद पाई, पाप पाप दिन से मेरे पाई। रहाओ राम नाम नित रसन बखान, दिन से रोग पे कल्याण। पार ब्रह्म गुण अगम विचार, साधु संगम है निस्तार। निर्मल गुण गावो नित नीत, गई ब्याद उभरे जनमीत। मन बच क्रम

दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की कैद रखी करकारे, बादशाह सा सब वस्त्र दीने, अमृत नाम मारस पीने, निरपो होए।

राते न जले, हर संग राते माया नहीं चले, हर संग राते नहीं डूबे जला, हर संग राते सुफल फला, सब कहते तुम्हारे नाए, एकत संग हर हर गुण गाए, रहाओ हर संग राते मिटे सब चिंता, हर सो सो रचे जिस साध का मनता, हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूरन आस, हर संग राते दुख न लागे, हर संग राता अंग जागे, हर संग राता सहज कर वसे, हर संग राते परम पौ नसे, हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए, कहो नानक तिनको बल जाए, जिनको प्रभु मेरा बिसरत नाही, गौरी मैला पन्नवा, उद्दम कर शीतल मन भये, मार्ग चलत सगल दुख गए, नाम जपत मन पये आनंद, रस गाए गुण परमानंद, खेम पया कुशल कार्य आए, एकत साध संग गई बलाए, रहाओ, नेत्र पुनीत ते खत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस।

अखिर पै बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन, गौरी महला पंजवा, कोट मज्जन तीनो स्नान, लाख अरब खरब दीनो दान, जा मन वस्यो हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल, पाप मिटे साधु शरण दयाल, रहाओ बहुत उर्द तप साधन सादे, अनेक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम रसन आरादे, सिमरत सासत वेद बखाने, जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ सो मन माने, अदाज बोध हर अगम अपारे, नाम जपत नाम हृदय विचारे, नानक को प्रभ कृपा धारे, गौरी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुर हृदय बसाया, गुर गोविंद

मनुख को आप सहाय, नित प्रत पारे बाप जैसे माई, प्रभु की शरण उभरे सब कोए, कर्म करावन पूर्ण सच सोए रहाओ, अब मन बसिया करने हारा, कै दिन से आत्म सुख सारा, कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के

राम को बल पूरन पाई, ताके बिरथा ना व्यापे काई। रहाओ जो जो चितवे दास हरमाई, सो सो करता आप कराई। निंदक की प्रभ पत गवाई, नानक हर गुण निरपोगाई। गौरी महला पंजवा, उज बल वीर ब्रह्म सुख सागर। गर्त परत जह लेहो अंगुरिया, रहाओ श्रवण न सुरत नैन सुंदर नहीं आरत। द्वार रटत पिंगुरिया, दीना नाथ अनाथ करुणा में साजन मीत पुता।

मन अर्पो तन राखो आगे, मन की मत मोहि सगल त्यागी, जो प्रभु की हर कथा सुनावे, हम दिन फिरो तिस पिछे विरागी, पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे, पेटियो पुरुष रसिक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी, गौरी महला पंजवा, निकसरे पंखी सिमर हर

कोई संत मिलावे मेरा रहाओ। सेवा करो दास दासन की अनित पांच किस करो निहोरा। तुला तार तोले सुख सगले

कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मोहे मार्ग दे बताई रहाओ। अंतर अलख न जाई लखिया विच पर्दा हो मैं पाई माया मोह सबो जग सोया तिहु परम कहो क्यों जाई। एका संगत इकत गृह बसते मिल बात न करते पाई एक बस्त बिन पंच दुहेले ओ बस्त अगोचर ठाई। जिसका गृह तिन दिया ताला कुंजी गुर सो पाई अंत उपाव करे।

खेद करें और बहुत संतावे हैं। आयो शरण तुहारे कर कर हारो अंत बहु पाती छोड़े कतहु नाही। एक बात सुनता की ओटा साध संग मिट जाहे कर कृपा संत मिले मोहि तिनके तीरज पाया संती मंत दियो मोहि निरपो गुर का शब्द कमाया जीत ले ओए महा दुखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन पाया परगासा पाया पद निर्वाणी। गौड़ी महला पंजवा ओ अविनाशी राया निरपो संग तुम्हारे बसते इहो धर्म कहाँ ते आया रहाओ एक महल तू हुए अफारो एक महल निवानो एक महल तू

रोजा में जैसा पेट करावे बाजी दर ओ तैसो ही साज आने अनक कोठरी बहुत पाप करिया आप हुआ रखवारा जैसे महल राखे तैसे रहना क्या हो करे बिचारा जिन कुछ किया सोई जाने जिन ए सब विद साजी कहो नानक अप

जो मोहयो उन मोहनी बाला उसते कटे नाही रुच चसुआ जग ऐसा मोहे गुरहे दिखायो तो शरण पर्यो तज गर्भ सुआ मार्ग प्रभ को

आ रहा हो, अंतर की विद तुम ही जाने, तुम ही सदन सुहेले। सर्व सुखा में तुझते पाए मेरे ठाकुर अगे अतोले, वरन ना साको तुमरे रंगा गुण निधान सुख दाते, अगम अगोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुरते जाते। प्रम्पो काट किए ने केवल जब के हूँ मैं मारी, जन्म मरण को चूको सहसा साध संगत दरसारी, चरण पसार करो गुर सेवा, बार जाओ लख

जन पार ब्रह्म रंग राते सूख सहज आनंद तिना संग उन संसार अवर न दाते। जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श

पंच चेले मिल पे इकतरा एक वस्तिये दस बैरागन आज्ञाकारी तब निर्मल जोगी थिए परम जराए चराई विपूता पंच एक कर पेखिया सहज सुख सोखी ने पुगता जो ठाकुर मस्तक लेखिया जय कहो नाही ता आसन बांधियो सिंगी अनहत बानी पत विचार डंडा कर राखियो जुगत नाम मन पानी ऐसा जोगी वद पागी पेटे माया के बंधन काटे सेवा पूज करो तिस मूरत की नानक तिस पग चाटे गौड़ी महला पंजवा अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याय ले मीता हर औषध जाको गुर दिया ताके निर्मल चीता रहाओ अंधकार मिट्यो किन तंते गुर शब्द दीपक परिदासा।

रंगा पूरन हुई मन की आशा गुरु के त्योहर रंगा नाम खजाना पगती पाया मन तन तृप्त

तुम प्रवराते पोत पोत भगतन संग जोरी प्रयो प्रयो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओ चंद चकोरी राम संत में भेद किछ नाही एक जन कई मह लाख करोरी जा कहिय प्रगट प्रभु हुआ हम दिन कीर्तन रसन रमोरी तुम समरथ अपार अत ऊंचे सुखदाते प्रभ प्राण अधोरी नानक को प्रभु की जय कृपा उन संतन के संग संगो।

हर नाम मेरा मन जाके संत प्रसाद नान खर पेटे मन तन शीतल त्राके गौड़ी महला पंजवा सह समायो देव मोको सतगुर।

पयो प्रगास सर्व उजियारा गुरजान मने प्रगटायो अमृत नाम पियो मन सत्या अनकह ठहरायो मान आ गया सर्व सुख पाए दुखे ठाउ गवायो जो सो प्रसन्न पय प्रभु ठाकुर सब अनज रूप दिखायो ना किछ आवत ना किछ जावत सब खेल कियो हर आयो।

जिन तार ब्रह्मंड खंड हर ताको नाम जपी जय रे रहाओ मन की मत त्यागो हर जन हुकम बूझ सुख पाए रे जो प्रभ करे सोई फल मानो सुख दुख ओही त्याए रे कोट पतित उधारे किन में करते बार न लागे रे दीन दर्द दुख पंजन स्वामी जिस पावे तिसे निवाजे रे

सर्व सुख दाता सगल कथा प्रतिपारे रहाओ मां कष्ट काते खिन पीतरे रसना नाम चितारे शीतल सांत सुख हर सरणी जलती अग्नि निवारे गर्भ कुंड नरक के राखे पव जल पार उतारे चरण कमल आराधत मन में जम की त्रास बिदारे पूरन पार ब्रह्म परमेश्वरे ऊंचा अगम अपारे गुण गावत त्यावत।

संत संग हर मन वसे, दुख दर्द अनेरा प्रमनसे, संत प्रसाद हर जाती है, सोजन दुख ना व्यापी है, जाके गुर हर मंत्र दे, सो उबरिया माया अगन के, नानक

तू गुरु प्रसाद कर राज योग हर रस जिन जन चाखिया ताकि कृष्णा लाखिया हर विश्राम निध पाया सो

पान प्रभ का खाना रहाओ। ऐसे है रे खसम हमारा, खिन में साज सवार नहारा। काम करी जे ठाकुर पावा, गीत चरित प्रभ के गुण।

अज्ञानी मानस पया जो नाही सो लोरे रैन अंधारी कारिया कवन जुगत जित पोरे प्रम तो हारिया।

सुख भय अकाल पुरख अगाध बोध सुनत जसो कोट अग है कृपा निज प्रभ मया तार नानक हर हर नाम लय गौड़ी पूर्वी महला पंजवा मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए जा दिन बिसरे प्राण सुख दाता सो दिन जात अजाए रहाओ एक रैन के पावन तुम आए बहु जुग आस बदाए गृह मंदिर संपे जो दिसे जो तरवर की छाए तन मेरा संपे सब मेरी बाग मिलख सब जाए देवनहारा बिसरे ठाकुर चिन्ह में होत पराए।

रतन जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बलहरिया रहाओ, जेते सास ग्रास मन लेता, तेते ही गुण गाइए, जो होए दयाल सतगुर अपना, ताके मत बुद पाइए, मेरे मन नाम ले जम बनते छूटे, सर्व सुखा सुख पाइए, शेर स्वामी सतगुर दाता, मन बंचत फल आइए, नाम इष्ट नीत सुत करता, मन संग तुहार

0: मैं कैसो कह पुकार नाम कह सुन रे मना कर कीर्तन होए उधार
1: राग गौड़ी माला।

हरक सोग हान मिर्त दुख सुख चित संसर गुर मिले राव जौ लो हों किस सोचो चितो तौ लो दुखन परे जो किरपाल गुर पूरा पेटिया सो अनद सहजे जेती स्यान कर्म हों किए तेते बंद परे जो साधु कर मस्तक तरयो तब हम मुक्त भये जो लो मेरो मेरो करतो तौ लो बिखेरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए जो लो पोट उठाई चलियो तौ लो दान परे पोट डार गुर पूरा मिलिया तौ नानक निर्भय गौड़ी माला महला पंजवा पावन त्यागियो री त्यागियो त्यागियो मैं गुरु मिल त्यागियो सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोविंद आग्यो रहाओ मान अभिमान दो समाने मस्तक डार गुर पाग्यो संपत हरखना आपत दुखा रंग ठाकुर लाग्यो बास बासरी एक है स्वामी उद्यान दृष्टाग्यो निरपो पे संत प्रम डार्यो पूरन सर्वाग्यो जो किस करते कारण कीनो मन बुरो न लागियो।

साध संगत पर साध संतन कह सोयो मन जाग्यो। जन नानक और तुहारी परयो आयो शरण आग्यो। नाम रंग सहज रस माने।

किया। सतगुर सब समाया रहाओ, लाठी भूख त्रिशन सब लाठी, चिंता सगल बिसारी, कर मस्तक गुर पूरे तरयो, मन जीतो जग सारी। त्रिप अधाए रहे रिद अंतर, दोलन ते अब चूके, अखुट खजाना सतगुर दिया, तोट नहीं रे मुके। अचरज एक सुनो रे पाई, गुर ऐसी बूझ बुझाई, लाए परदा ठाकुर जो पेटियो, तो बिसरी तात पर आई। कहो ना जाई एहो अचंबो, सो जाने जिन चाखिया, कहो नानक सच पे बिगाता, गुर निधान हृदय ले राखिया। गौड़ी माला महला पंजवा, उबरत राजा राम की सरणी, सर्व लोक माया के मंडल, गिर गिर परते तरणी रहाओ। शास्त्र सिमरत वेद विचारे, माँ पुरखन यूं कहया, बिन हर भजन नाही निस्तारा, सूख न किन्हू लया। तीन पवन की लखनी जोरी, बूझत नाही लहरे, बिन हर भगत कहाँ स्थित पावे, फिर तो पहरे पहरे। अनक बिलास करत मनमोहन, पूरन होत न कामा, जलतो जलतो कभू न बूझत, सगल बिरसे बिन नामा। हर का नाम जपो मेरे मीता, यह सार सुख पूरा, साध संगत जन्म मरण निवारे, नानक जन की पूरा।

दीन दयाल दमोदर राया जियो, कोट जना कर सेव लगाया जियो, भगत वचल तेरा बिरद रखाया जियो, पूरन सबनी जाई जियो, क्यों पेखा प्रीतम कौन सुख।

पतित पवित लग गुर के पैरे जियो, प्रम को काट किए निर्वैरे जियो, गुर मन की आस पुराई जियो, जिन नाउ पाया सो तनवंता जियो, जिन प्रभ ते आया सो सोभावंता जियो, जिस साधु संगत तिस सब सो करनी जियो, जन नानक सह समाई जियो, गौड़ी महला पंजवा माज, आओ हमारे राम प्यारे जियो, रैन दिनस साथ साथ सितारे जियो, संत देव संदेशा पै चरणारे जियो, तुद दिन कित बिज करिए जियो, संग तुम्हारे मैं करे आनंदा जियो, वन तिन त्रिभवन सुख परमानंदा जियो, सेज सुहावी इहो मन बिज संदा जियो, पेख दर्शन इहो सुख लई है जियो, चरण पठार करी नित सेवा जियो, पूजा अर्चा बंदन देवा जियो, दासन दास नाम जप लेवा जियो, बिनो ठाकुर पै कही है जियो, इच पुन्नी मेरी मन तन हरिया जियो, दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जियो, हर हर नाम जपे जप करिया जियो, एहो अजर नानक सुख सही है जियो, गौड़ी माज महला पंजवा, सुन सुन साजन मन वित प्यारे जियो, मन तन तेरा एहो जियो पेवारे जियो, विसरना ही प्रभ प्राण आधारे जियो, सदा तेरी शरणाई जियो, जिस मिले मन जीवे पाई जियो, गुरु प्रसादी सो हर हर पाई जियो, सब किछ प्रभ का प्रभ किया जाए जियो, प्रभ को सद बल जाए जियो, एहो निधान जपै वट पागी जियो।

माया मोहड़िया दे बुजार सारता से अखी जिठड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी कहा इकस दो चौ क्या गणी सब इकत साध मुठी एक अग नाए रसियड़ा का विरली जाए बुठी भगत सच्चे दर सोंदे आनंद करें दिन रात रंग रते परमेश्वर है जन नानक तिन बल जात गौड़ी।

आओ जित कट वसे पार ब्रह्म सोई सुहावा थाओ जम कंकर नेड़ न आवई रसना हर गुण गाओ सेवा सुरत न जानिया ना जापे आराध ओठ तेरी जग जीवना मेरे ठाकुर अगम आगाज पाए किरपाल गुसाइया नखे सोग संताप तत्ती वाव ना लग गई सतगुर रखे आप गुर नारायण दया गुर गुर सच्चा सृजनहार गुर तुठ है सब किस पाया जन नानक सद बलिहार गौड़ी माज महला पंजवा हर राम राम राम रामा जप पूरन होए कामा रहाओ राम गोविंद जपेंदिया हुआ मुख पवित्र हर जस सुनिए जिससे सोई पाई मित्र सब पदार्थ सब फला सर्व गुणा जिस माहे क्यों गोविंद मनो विसारिये जिस सिमरत दुख जाहे जिस लड़ लगे है जीविये पव जल पईये पार मिल साधु संग उधार होए मुख उजल दरबार जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रास नानक उबरे नाम जप दर सच्चे सा वास गौड़ी माज महला पंजवा मीठे हर गुण गाओ जिंदू तू मीठे हर गुण गाओ सच्चे सेती रतिया

सर जो करे फिट सो जीवन सोए अंचल गह के साध का तरना इव संसार पार ब्रह्म आराधी है उदरे सब परवार साजन बंग सो मित्र सो हर नाम हृदय दे अवगुण सब मिटाए के पर उपकार करे माल खजाना थो कर हर के चरण निदान नानक जाचत।

साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते ऐनस पागो, रहाओ सुख दुख दोनों समकर जाने और मान अपमाना, हर्ष सोगते रह अतीता तिन जग तत पछाना, उस तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाणा, जन नानक एव खेल कथन है किन्हो गुरमुख जाना, गौड़ी मैला नावा साधो रचना राम बनाई, एक दिन से एक अस्थिर माने।

शरणाई गौड़ी महला नावा। प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, एन इस मगन रहे माया में, कहो कैसे गुण गावे रहाओ, पूत मीत माया ममता स्यो, ए विद आप बंधावे, मृग तृष्णा ज्यो चूठो इहो जग, देखता उठतावे, भुगत मुक्त का

मोह माया पुन भजन राम चित लावो, नानक कहत मुकत पंथ एहो, गुरुमुख होए तुम पावो। गौड़ी मैला नामा को माई पूलियो मन समझावे, वेद पुराण साध मग सुन कर निमख न हर गुण गावे। रहाओ दुर्लभ दे पाए मानस की बिरसा जन्म सिरावे, माया मोह महा संकट बन ता क्यों रुच उपजावे। अंतर बाहर सदा संग प्रभ ता क्यों निहो न लावे, नानक मुकुट ताहि तुम मानो जे कट राम समावे। गौड़ी महला नावा साधो राम शरण विश्रामा, वेद पुराण पढ़े को ए गुण सिमरे हर को नामा। रहाओ लोग मोह माया ममता कुन औ बिकियन की सेवा, हरख सोग परस है जे नाहिन सो मूरत है देवा। सुर्ग नरक अमृत बिक ए सब क्यों कंचन अर पैसा, उस्तत निंदा ए समझा कै लोग मोह फुन कैसा। दुख सुख ए बांधे जे नाहिन ते तुम जानो ज्ञानी, नानक मुक्त ताहे तुम मानो ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा मन रे कहां पयो तै बौरा, एनक और कटे नहीं जाने पयो लोग संग होरा। रहाओ जो पन ते अपनो कर मान्यो अर सुंदर गृह नारी, इनमें कट से रोरे नाहिन देखो सोच बिचारी। रसन जन्म अपनो ते हारियो गोविंद दत्त नहीं जानी, निमख ना लीन पयो चरणन त्यों बिरसा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावे, और सगल जग माया मुहिया निरपय पद नहीं पावे। गौड़ी महला नावा नर अचेत पाप से डर रे, दीन दयाल सगल पै पंजन शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत ताको नाम ही है मो तर रे, पावन नाम जगत में हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस दे बौर ने पावे कछु उपाओ मुक्त का कर रे, नानक कहत गाय।

निज सिद्ध निर्मल नाम विचार पूरन पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी बिमल मजार गुर की मत जिए आई कार। इन विद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ इक सुख मानिया सहज मिलाया निर्मल बाणी परम चुकाया लाल पहे सूहा रंग माया नगर पही दिख ठाक रहाया उलट पही जीवत मर जा गया शब्द रवे मन हर क्यों ला गया रस संग्रह दिख पर हर त्या गया पाए बसे जम का पौ पा गया साज रहे बादंग अंकारा चित हर क्यों राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पही सुख आत्मा।

लोए नारी पुरुष सबाई लोए रव सस देखो दीपक उजियाला सर्व निरंतर प्रीतम बाला कर कृपा मेरा चित लाया सतगुरु मो को एक बुझाया एक निरंजन गुरुमुख जाता दूजा मार शब्द पछाता एको हुक्म वर्ते सब लोई एक से सब ओपत होई राह दोवे खसम एको जान गुर कै शब्द हुक्म पछाण सगल रूप वर्ण मन माही कहो नानक एको सालाही गौड़ी महला पहला अध्यात्म कर्म करे ता साचा मुक्त पेर क्या जाने काचा ऐसा जोगी जुगत विचार है पंच मार सात पुरधार है रहाओ जिसके अंतर सात वसावे जोग जुगत की कीमत पावे राम सत एको गृह उद्यान है करनी कीरत कर्म समान है एक शब्द एक पिछला मांगे ज्ञान ध्यान जुगत सत जागे पैरच रहे ना बाहर जाए कीमत कौन रहे लिवलाए आपे मेले परम चुकाए गुर प्रसाद परम पद पाए गुर की सेवा शब्द विचार हमें मारे करनी सार जब तब संजम पाठ पुराण कहो नानक अपरम परमान गौरी महला पहला हिमा गही व्रत शील संतोखं रोग ना व्यापे ना जम दोखं मुक्त पाए प्रभ रूप ना देखं जोगी को कैसा डर होए रूख बिरख गृह बार सोए रहाओ निरपौ जोगी निरंजन त्यावे अंदिन जागे सच विवलावे सो जोगी मेरे मन पावे सो जोगी मेरे मन पावे काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे जरा मरण गत गर्व निवारे आप तरह पितरी निस्तारे सतगुरु सेवे सो जोगी होए पैरच रहे सो निरपो होए जैसा सेवे तैसो होए नर नहीं केवल निरपो ना हो अनाथे नाथ करे बल चाओ पुनरप जन्म ना ही गुण गाओ अंतर बार एको जाने गुर के शब्दे आप पछाने साचे शब्द दर निशाने शब्द मरे तिस निज कर वासा आवे ना जावे चूके आसा गुर के शब्द कमल पर गासा जो दिसे तो आप निराशा काम क्रोध बिक भूख पे आसा नानक बिरले मिले उदासा गौरी महला पहला ऐसो दास मिले सुख होई दुख विसरे पावे सत सोई दर्शन देख पई मत पूरी अखट मज्जन चरने तूरी रहाओ नेत्र संतोखे एक लिव तारा देवा सूची हर रसारा सत करनी अब अंतर सेवा मंत्र पास्या अलख अपेवा जय जय देखो तै तै साचा दिन बूझे जगरत जग काचा गुर समझावे सोजी होई गुरमुख बिरला बूझे कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूझे पशु कहे बेताले गुर कहया अवर नहीं दूजा किस कहो देख करो अन पूजा संत हेत प्रभ त्रिपवन तारे आत्म चीन है सो तत विचारे साच हृदय सच प्रेम निवास प्रणवत नानक हमता के दास गौड़ी मेला पहला ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया वेद की विपत पड़ी पछतानिया जह प्रभ सिमरे तही मन मानिया ऐसा गर्भ बुरा संसार है जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार है रहाओ बल राजा माया अंकारी जगन करे बहु पार अपारी बिन गुर पूछे जाए प्यारी हरी चंद दान करे जस लेवे बिन गुर अंक ना पाए अपेवे आप पुलाए आपे मत देवे दुर्मत हरनाथ दुराचारी प्रभ नारायण गर्भ परहारी प्रहलाद उधारे कृपा तारी पूलो रावण मुगद अचेत लूटी लंका सीत समेत गर्भ गया बिन सतगुर हेत सहस बाहो मद कीट में खासा हरनाकस ले नखो विदासा दैत संगारे बिन भगत अभ्यासा जरा संद काल जमुन संगारे
रकत बीज काल नेम बिदारे दैत संगार संत निस्तारे आपे सतगुर शब्द विचारे दूजे पाए दैत संगारे गुरमुख साच पगत निस्तारे बूढ़ा दुर्योधन पत खोई राम न जानिया करता सोई जन को दुख पचे दुख होई जन में जय गुर शब्द न जानिया क्यों सुख पावे परम पुलानिया इत तिल पूले बौर पछतानिया कंस के चांडूर ना कोई राम ना छीनिया अपनी पत कोई बिन जगदीश ना राखे कोई बिन गुर दर्ब ना मेटिया जाए गुरमत धर्म

अंक चढ़ावो, पाठ पटंबर पहर हटावो, दिन हर नाम कहाँ सुख पावो, क्या पहरो क्या ओढ़ दिखावो, बिन जगदीश कहाँ सुख पावो, रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला, लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहाँ सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोर सिगार करे अत प्यारी, बिन जगदीश पजे नित खुआरी, दर कर महला सेज खाली, एनक फूल बिछावे माली, बिन हर नाम सो देह दुखाली, हैवर गैवर नेजे वाजे, लक्कर नेब खवासी पाजे, बिन जगदीश चूठे दिवाजे, सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बुलावो, ताज कुले सिर खतर बनावो, बिन जगदीश कहाँ सच पावो, खान मलूक कहावो राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द ना सवरस काजा, हो मैं ममता गुर शब्द विसारी, गुरमत जान्या हृदय मुरारी, प्रणवत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक ना जानत अवरे, पर पंच ब्याज त्याग है कवरे, पायु मिले सच साचे सचरे, ऐसा राम भगत जन होई, हर गुण गाए मिले मल तोई, रहाओ ऊंदो कवल सगल संसार है, दुर्मत अग्न जगत पर जा रे, सो उभरे गुर शब्द विचार है, प्रिंग पतंग कुंचर अर मीना, मृग मरे सह अपना कीना, तृष्णा राज तत नहीं दीना, काम चिते कामन हितकारी, क्रोध विनाश है सगल विकारी, पत मत खोवे नाम विसारी, पर कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी तंदे लपटाए, गुरमुख छूटस हर गुण गाए, जो तन विधवा पर को दे, काम दाम चित पर वसे, बिन फिर तृप्त न कभू होई, पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़े सुन साटा, बिन रस राते मन बो नाटा, ज्यो चात्रिक जल प्रेम प्यासा, ज्यो मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस की तृप्तासा, गौड़ी मेला पहला, हट कर मरे ना लेखे पावे, वेद करे बहु पसंद लगावे, नाम विसार बहुर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम विसार सह जम दुख, रहाओ चोवा चंदन अगर कपूर, माया मगन परम पद दूर, नाम विसार है सब कूड़ो कूर, नेजे वाजे तख सलाम, अद की तृष्णा व्यापे काम, बिन हर जाचे भगत ना नाम, वाद अहंकार नाही प्रभ मेला, मन दे पावे नाम सुहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला, बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोहित सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट, सिस को वाहो वाहो जे वाट दिखावे, जिसको वाहो वाहो जी शब्द सुनावे, जिसको वाहो वाहो जी मेल मिलावे, वाहो वाहो जिसको जिसका इहो जियो, गुर शब्द जी मत अमृत पियो।

नानक नाम रते पत पाए। कौड़ी महला पहला हो मैं करत देखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत बिरले मन मानिया। हो करत नहीं पत पाई है, हो मैं जाए परम पद पाई है। रहाओ हो मैं कर राजे बहुत आवे, हो मैं खपे जन्म मर आवे। हो मैं निवरे गुर शब्द विचार है, चंचल मत त्यागे पंच संगार है। अंतर सात सहज कर आवे, राजन जान परम गत पावे। सच करनी गुर परम चुकावे, निरपो के कर तारी लावे। हो कर मरना क्या पावे, पूरा गुर पेटे सोच अगर चुकावे। जेती है तेती क्यों नाही, गुरमुख ज्ञान पेट गुण गाही। हो मैं बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे। गौरी महला पहला प्रथमे ब्रह्मा काले कर आया, ब्रह्म कमल प्याल न पाया। आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजे सो काल संगारिया। हम हर राखे गुर शब्द विचारिया। रहाओ माया मोहे देवी सब देवा, काल न छोड़े बिन गुर की सेवा। ओ अविनाशी अलख पेवा, सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना। नामो पूले जम का दुख सहना, मैं पर नाम ज्यों राखो रहना। चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, सा मरे संचे माया दाम। मैं तन जी जय हर अमृत नाम, रैयत मेहर मुकदम।

ओ गुरुमुख जापे ता पत होई, काजी सेख पेख फकीरा, वडे कहावे हो मैं तन पीरा, काल न छोड़े बिन सतगुर की तीरा, काल जाल जेवा अरनैनी, कानी काल सुने बिख देनी, बिन सबदे मूठे दिन रैनी, हृदय साच वसे हर नाए, काल ना जो है सके गुण गाए, नानक गुरमुख शब्द समाए, गौरी मैला पहला बोले साच मिथ्या नहीं राई, चाले गुरमुख हुकम रजाई, रहे अतीत सच्चे शरणाई, सच कर बैसे काल ना जो है, मनमुख को आवत जावत दुख मोह है, रहाओ अप्यो पियो अकथ कथ रही है, निज कर बैस सहज कर रही है, हर रस माते इहो सुख कही है, गुरमत चाल नहीं चल नहीं डोले, गुरमत साच सहज हर बोले, पीवे अमृत तत विरोले, सतगुरु देखिया दीखिया लीनी, मन तन अर्पियो अंतर गत कीनी, गत मित पाई आत्म चीनी, भोजन नाम निरंजन सार, परम हंस सत जोत अपार, जह देखो तह एकंकार, रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुरु चरणी, मन से मन मानिया क्योंकि अंग प्रमणी, इन विद कौन कौन नहीं तारिया, हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर न पारिया, साच महल गुर अलख लखाया, नेचल महल नहीं छाया माया, साच संतोखे परम चुकाया, जिनके मन वसिया सत सोई, तिनकी संगत गुरमुख होई, नानक सात नाम मल खोई, गौरी महला पहला, राम नाम चितराते जाका, उपजंप दर्शन की जय ताका, राम ना जपो अपार कुमारा, जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा, रहाओ गुरमत राम जपे जन पूरा, चित कट अनहत बाजे तूरा, जो जन राम भगत हर प्यार, से प्रभ राखे कृपा तार, जिनके हृदय हर हर सोई, जिनका दर्द परस सुख होई, सर्व जिया में एको रवे, मन मुख अंकारी फिर जूनी पवे, सो बूझे जो सतगुर पाए, हों में मारे गुर शब्दे पाए, अर्ग उर्द की संग क्यों जाने, गुरमुख संग मिले मन माने, हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन करिए, हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ होए दयाल नानक जन करिए, सोलें अष्टपदिया।

की सेवा करें, साकुर नहीं दीस है, ओखर नीर विरोली है, माखन नहीं दीस है। इस पद जो अखाए ले सो गुरु हमारा, नानक की ने आपको सो अपर अपारा, सब आपे आप वर्तदा आपे परमाया, गुर कृपा से बूझिए सब गम समाया।

मन का सूतक दूजा भाओ, परने पूले आवो जाओ, मन सूतक कवे न जाए, जिचर शब्द न पीजे हर कहनाए राव। सबो सूतक जेता मो आकार, मर मर जमे वारो वार, सूतक अग्न पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाए, सूतक कर्म न पूजा होए, नाम रते मन निर्मल होए, सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न खाए, सातक सिमरत सोध देखो कोए, बिन नावे को मुक्त न होए, जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल में गुरमुख उतरत पार, साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रह समाए, गौड़ी मैला सीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा, हर जियो राखो हृदय उर्धारा, गुरमुख सोबा सात द्वारा, पंडित हर पर तजो विकारा, गुरमुख पौजल उतरो पारा रहाओ। गुरमुख विचो हो मैं जाए, गुरमुख मैल ना लागे आए, गुरमुख नाम वसे मन आए, गुरमुख कर्म कर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो सुने न कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई, मनमुख डंफ बहुत चतुराई, जो किस कमावे सो थाए न पाई, आवे जावे खौर न काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभिमाना, बग जो लाए बहन चाना, जम पकड़िया तभी पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई, गुरदाता जुग चारे होई, गुरमुख जात पत नामे।

आई। राम पढ़ो मन करो विचार, गुर प्रसादी मैल उतार रहाओ। वाद विरोध ना पाया जाए, मन तन फीका दूजे पाए। गुर कै शब्द सच लिवलाए, हो मैं मैला यो संसारा। नित तीर्थ नावे ना जाए।

रखवारा। सो जन साचा जे हों मैं मारे, गुर के शब्द पंच संगारे, आप तरे सगले कुल तारे, माया मोह नट बाजी पाई, मन मुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई, बहुते पेख करे पेख तारी, अंतर तिसना फिरे अंकारी, आप ना चीने बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतुराई, माया मोह अत परम पुलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई, नाम रते सदा बैरागी, ग्रही अंतर साच लिव लागी, नानक सतगुर सेवें सेवड पागी। गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अव्यासा, तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा, त्रै गुण परमे नाही निज करवासा, हम हर राखे सतगुरु मिलाया, अंदिन भगत हर नाम दृढ़ाया, रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पर वाद वखाणे सिर मारे जमकाला, तत न चीने बन्ने पंड पराला, मन मुख अज्ञान को मार्ग पाए, हर नाम विसारिया बहु कर्म दृढ़ाए, पवजल डूबे दूजे पाए, माया का मोह

गुर कै शब्द अंतर सहजरी दे, मेरा प्रभ पाया गुर कै शब्द सीधे, सतगुर मेले प्रभ आप मिलाए, मेरे प्रभ साचे कै मन पाए, हर गुण गावे सह सुवाए, बिन गुर साचे परम पुनाए, मनुख अंधे सदा बिख खाए, जम डंड सह सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की शरणाई, हों मैं मार सच लिवलाई, सदा रहे हर नाम लिवलाई, सतगुर सेवे से जन निर्मल पवित्ता, मन स्यों मन मिलाए सब जग जीता, इन विद कुशल तेरे मेरे नीता, सतगुरु सेवे सो फल पाए, हृदय नाम विच्चों आप गवाए, अनहद बाणी शब्द वजाए, सतगुरु ते कवन कवन ना सीधो मेरे पाई, पगती सीधे दर शोभा पाई, नानक राम नाम वड्याई, गौड़ी महला तीजा, त्रै गुण वखाणे परम ना जाए, बंधन ना टूटे मुक्त ना पाए, मुक्त दाता सतगुरु जुग माए, गुरमुख प्राणी परम गवाए, सहज तुन उपजे हर लिवलाए, रहाओ त्रै गुण काले की सिरकारा, नाम न चेते उपावन हारा, मर जमे फिर वारो वारा, अंधे गुरु ते परम न जाई, मूल छोड़ लागे दूजे पाई, बिखा माता बिख माए समाई, माया तर मूल जंत्र पर माए, हर जियो विसरिया दूजे पाए, जिस नजर करे सो परम गत पाए, अंतर साच बार साच वरताए, साच न छपे जे को रखे छपाए, ज्ञानी बूझे सह सुभाए, गुरुमुख साच रहा लिवलाए, हों मैं माया शब्द जलाए, मेरा प्रभ साचा मेल मिलाए, सतगुरु दाता शब्द सुनाए।

गुरमुख गावे सचगुण दास, दासन दास नित होवे दास, गृह कुटुंब मैं सदा उदास। जीवन मुक्त गुरमुख को होई, परम पदार्थ पावे सोई, त्रै गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साच मिले प्रभ सोई। मोह कुटुंब स्यों प्रीत न होए, जा हृदय वसिया सच सोए, गुरमुख मन दे दिया अस्थिर होए, हुकम पचाने बूझे सच सोए। तू करता मैं अवर न कोए, तुझ सेवी तुझ ते पत होए, कृपा करे गावा प्रभ सोए, नाम रतन सब जग में लोए। गुरमुख बाणी मीठी लागी, अंतर बिकसे अंदिन लिव लागी, सहजे सच मिलिया प्रसादी, सतगुर पाया पूरे वड पागी। हो मैं ममता दुर्मत दुख नास, जब हृदय राम नाम गुण तास, गुरमुख बुद्ध प्रगति प्रभ जास, जब हृदय

मन ही मन सवारिया पैसे सवाए शब्द मन रंगिया लिव लाए निज कर वस्या प्रभ की रजाए सतगुरु सेवे जाए अभिमान गोविंद पाईए गुणी निधान रहाओ मन बैरागी जा शब्द पौ खाए मेरा प्रभ निर्मला सब तै रहा समाए गुर कृपा ते मिले मिलाए हर दासन को दास सुख पाए मेरा हर प्रभ इन विद पाया जाए हर कृपा ते राम गुण गाए त्रिग पहु जीवन जित हर नाम न लगे प्यार त्रिग से सुखाली कामन मोगवार तिन सफल जन्म जिन नाम आधार त्रिग त्रिग गृह कुटुंब जित हर प्रीत न होए सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए हर नाम बिना मैं अवर न कोए सतगुर ते हम गत पत पाई हर नाम ते आया दुख सगल मिटाई सदा आनंद हर नाम ले विलाई गुर मिलिए हमको शरीर शुद्ध भई हऊ मैं तृष्णा सब अग्न बुझई बिन से क्रोध खिमा गह लई हर आपे कृपा करे नाम देवे गुरुमुख रतन को विरला लेवे नानक गुण गावे।

मन करहला गुरु गोविंद समाल रहाओ, मन करहला विचारिया मन मुख फाथिया महाजाल, गुरुमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम समाल, मन करहला मेरे प्यारिया सत्संगत सतगुर पाल, सत्संगत लग हर त्याये हर हर चले तेरे नाल, मन करहला वड पादिया हर एक नजर निहाल, आप छाए छुट्टी है सतगुर चरण समाल, मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत समाल, गुरु नौ निज नाम विखा लिया हर दात करी दयाल, मन करहला तू चंचला चकराई छड़ विकराल, हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल, मन करहला बड पागिया तू ज्ञान रतन समाल, गुर ज्ञान खड़ग हथ तारिया जम मारे अड़ा जमकाल, अंतर निधान मन करहले प्रम पवे बार पाल, गुर पुरख पूरा पेटिया हर सज्जन लगड़ा।

जब हो मन में करत गुमाना तब एहो बावर फिरत बिगाना, जब एहो हुआ सगल की रीना ताते रमैया कट कट चीना, सहज सुहेला फल मस्कीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी, रहाओ जब किसको एहो जान समंदा तब सगले इस मेले फंदा, मेर तेर जब इन्हें चुकाए ताते इस संग नहीं बैराए, जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल पारी, जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता, जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा, जब इसते सब बिन से परमा पेद नाही है पार ब्रह्मा, जब इन किछ कर माने पेदा तब ते दुख दंड अरखेदा, जब इन एको एक ही बूझिया तब ते इसनो

कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी। करन करावन सब किछ एक है, आपसे बुद्ध विचार विवेक है, दूर

जास जपत पाव अपदा जाए तावत मनुआ आवे ठाए। जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत ए हो मैं पागे। जास जपत वस आवे पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा। जास जपत ए तृष्णा बुझे, जास जपत हर दरगे सिजे। जास जपत कोट मिटे अपराध, जास जपत हर होवे साध। जास जपत मन शीतल होवे, जास जपत मल सगली खोवे। जास जपत रतन हर मिले, बहुर न छोड़े हर संग हिले। जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जपत सुख सह निवास। जास जपत ए अग्न न पोहत, जास जपत एहो काल न जोहत। जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जपत सगला दुख लाता। जास जपत मुश्किल कछु न बने, जास जपत सुन।

जिसके हृदय मंत्र दे हरि अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा। कहो नानक जिस सतगुरु पूरा। गौड़ी महला पंजवा। गुर का शब्द निरिद अंतर तारे, पंच जना स्यो संग निवारे। दस इंद्री कर राखे वास, ताके आत्मे होए प्रगास। ऐसी दृढ़ता ताके होए, जाको दया मया प्रभ सोए। रहाओ साजन दुष्ट जाके एक समान है, जेता बोलन तेता ज्ञान है, जेता सुनना तेता नाम, जेता पेखन

जा के सहज मन पया आनंद ताको पेटिया परमानंद सहजे अमृत पियो नाम सहजे कीनो जी को दान सहज कथा में आत्म रसिया ताके संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे ऋण चुनकार सुहाया ताके कर पार ब्रह्म समाया सहजे जाको पर्यो कर्मा सहजे गुर पेट्यो सच धर्मा जाके सहज पया सो जाने नानक दास ताके कुर्बाने गौड़ी मैला पंजवा प्रथमे गर्भ वास्ते तरिया पुत्र कलत्र कुटंब संग जुरिया भोजन अनेक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करेंगे बपुरे कवन स्थान जो कबहु ना तरे कवन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ इंद्रपुरी में सर पर मरना ब्रह्मपुरी नेचल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रैगुण माया बिनस बिताला गिर तर तरण गगन अरतारे रव सस पवन पावक नीरारे दिनस रैन बर्त अर पेदा सासत सिमरत बिन सेंगे बेदा तीरथ देव देहरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती तोती दंडौत प्रसादन पोगा गमन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुर्क अर हिंदू पस पंखी अनेक जोन जिंदू सगल पसार दिसे पासारा बिनस जाए गो सगल आकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद नेचल सचताना तहां संगत साध गुण रसे अनपौ नगर तहां सदवसे तें पौ परमा सोग ना चिंता।

कहो नानक जिस कृपा करे नेचर थान साध संगतरे गौड़ी महला पंजवा। जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसे वड्याई जो इस मारे तिसका दुख जाए ऐसा कोई जे दुबदा मार दवावे इसे मार राज जोग कमावे रहाओ। जो इस मारे तिसको पौना है जो इस मारे

जो इस मारे सो नहीं चलता नी, जो इस मारे सो वड पागा, जो इस मारे सो अंधिन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता।

इस मारी बिन थाए न परे, कोट कर्म जाप तप करे, इस मारी बिन जन्म न मिटे, इस मारी बिन जमते नहीं छूटे, इस मारी बिन ज्ञान न होई, इस मारी बिन झूठ न तोई, इस मारी बिन सब किछ मैला, इस मारी बिन सब किछ जौला, जाको पै किरपाल कृपा निज, इस पै खलासी होई।

मन अपने में फिर चेत बिनस जाए माया के हेत हर अविनाशी तुमरे संग मन मेरे रच राम के रंग जाके काम उतरे सब भूख जाके काम ना जो है दूत जाके काम तेरा वड गमर जाके काम होवे तू अमर जाके चाकर को नहीं दान जाके चाकर को नहीं बान जाके दफ्तर पूछे ना लेखा ताकि चाकरी करो विशेखा जाके ऊन

काले ना को चतुर ना ही को मूड़ा ना को हीन ना ही को सूरा जित को लाया।

बोले कूर साकत मुखकारा बिन सिमरन गर्दब की न्याई साकत थान परिष्ट फिराई बिन सिमरन कूकर हर काया साकत लोभी बंद न पाया बिन सिमरन है आत्म काती साकत नीचे तिस कुल नहीं जाती जिस पया कृपाल तिस सत संग मिलाया कहो नानक गुर जगत कराया गौड़ी महला पंजवा गुर के बचन मोह परम गत पाई गुर पूरे मेरी पैर रखाई गुर के बचन से आयो मोह नाओ गुर प्रसाद मोह मिलिया थाओ रहाओ गुर के बचन सुन रसन वखाणी गुर कृपा से अमृत मेरी बाणी गुर के बचन मिटिया मेरा आप गुर की दया ते मेरा वड प्रताप गुर के बचन मिटिया मेरा परम गुर के बचन पेख्यो सब ब्रह्म गुर के बचन कीनो राज जोग गुर के संग तरिया सब लोग गुर के बचन मेरे कार्य सिद्ध गुर के बचन पाया नाव निद जिन जिन कीनी मेरे गुर की आशा तिसकी कटिए जम की फासा गुर के बचन जागिया मेरा कर्म नानक गुर पेटिया पार ब्रह्म गौड़ी मैला पंजवा तिस गुर को सिमरो सास सास गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी

मां अगन ते हाथ दे राखा, किस गुर के गह टोवो पानी, जिस गुर ते अकल गत जानी, किस गुर के गृह पीसो नीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत, जिन गुरमो को दीना जियो, अपना दासरा आपे मुल लियो, आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार, कल कलेश पै परम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समराथा, गौड़ी मैला पंजवा, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देहो, नाम बिना त्रिग त्रिग असनेहो, रहाओ नाम बिना जो पहरे खाए, जो कूकर जूठन में पाए, नाम बिना जेता व्यवहार, जो मृतक मिथ्या सिगार, नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग, नाम त्याग करे अनकाज, बिनस जाए चूठे सब पाज, नाम संग मन प्रीत न लावे, कोट कर्म कर तो नरक जावे, हर का नाम जिन मन ना आरादा, चोर की न्याई जमपुर बादा, लाख अडंबर बहुत विस्तारा, नाम बिना चूठे पासारा, हर का नाम सोई जन ले, कर कृपा नानक जिस दे, गौड़ी मैला पंजवा, आद मध जो अंत निवा है, सो साजन मेरा मन चाहे, हर की प्रीत सदा संग चाले, दयाल पुरख पूरन प्रतपाले, रहाओ बिन सत नाही छोड़ न जाए, जह पेखा तह रया समाए, सुंदर सुगड़ चतुर जी दाता, पाई पूत पिता प्रभ माता, जीवन प्राण आधार मेरी रास, प्रीत लाई कर हृदय निवास, माया सिरख काटी गोपाल, कर अपना लीनो नदर निहाल, सिमर सिमर काटे सब रोग, चरण त्यान सर्व सुख भोग, पूरन पुरख नवतन नित बाला, हर अंतर बार संग रख

खोजत फिरे असंख अंत ना पारिया, सेई होए भगत जिना कृपारिया, हों वारिया हर वारिया। रहाओ सुन सुन पंथ डराओ बहुत पहारिया, मैं तक्की और संता लेहो उबारिया। मोहन लाल अनूप सर्व साधारिया, गुर निव निव लागो पाए देहो दिखारिया। मैं किए मित्र अनेक इक्कस बलिहारिया, सब गुण किसी नाहे हर पूर पंडारिया। चौं दिस जपिए नाउ सूख सवारिया, मैं आही और तुहार नानक बलिहारिया। गुर काढ़ियो पूजा पसार मोह कुपारिया, मैं जीत्यो जन्म अपार बहुर नहारिया। मैं पायो सर्व निदान अकत कतारिया, हर दरगे शोभावंत बाल उडारिया। जन नानक लगा रतन अम

हर रंग रंगो जप जेवा हर एक मंगो राव तज हो मैं गुरु ज्ञान पजो मिल संगत तुर कर्म लिखियो जो दी सह सो संग न गयो साकत मूड लगे पच मोयो मोहन नाम सदा रव रहे कोट मदे किने गुरमुख लयो हर संतन कर नमो नमो नौ निद पावे अतुल सुखो नैन अलोवो साध जनो हृदय गावो नाम निदो काम क्रोध लोभ मोह तजो जन्म मरण दो ते रहो दुख अंधेरा करते मिट्यो गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो जिन सेव्या सो पार परयो जन नानक गुरमुख जगत करयो। महला पंजवा गौड़ी हर हर गुर गुर करत परम गए मेरे मन सब सुख पायो रहाओ बल तो जल तो तौ क्या गुर चंदन शीत लायो अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दी पायो पावक सागर गहरो चर संतन नाव तरायो ना हम कर्म ना कर्म सुच प्रभ गह पूजा अपायो पौ खंडन दुख पंजनो भगत वचल हर नायो अनाथ नाथ कृपाल दीन समरथ संत ओटायो निर्गुनी आरे की बेनती देहो दर्श हर आयो नानक शरण तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो। गौड़ी महला पंजवा रंग संग बिखिया के पोगा इन संग अंध ना जानी हौ संचो हौ खाटता सगली अवध बिहानी रहाओ हौ सूरा प्रधान हो को नाही मुझे समानी जो बनवंत अचार कुलीना मन में होए गुमानी जो उलझायो बाद बुद्ध का मर्त्या नहीं बिसरानी पाई मीत बंदव सके पाछे तिन्हों को संपानी जित लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी आंग बुद्ध सुच कर्म कर ए बंधन बंदानी दयाल पुरख।

सिगार मिठरस भोग भोजन सब झूठ किते ना लेखे। मैं मत जोबन गर्भ गाली दुद्धा थनी ना आवे। नानक सासन मिले मिलाई बिन फिर नींद ना आवे। मुंद निमानड़िया जियो बिन तनी प्यारे। क्यों सुख पावेगी बिन उर्धारे। ना बिन करवास ना ही पुछो सखी सहेलिया। बिन नाम प्रीत प्यार ना ही वसे साथ सुहेलिया। सच मन सज्जन संतोख मेला गुरमती सो जानिया। नानक नाम ना छोड़े सातन नाम सहज समानिया। मिल सकी सहेलड़ियो हम फिर रावे हा। गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द स्नेहा। शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया। निकस जातो रह अस्थिर जाम सच पछाणिया। साच की मत सदा नौतन

कर साजने आया। मिलवर नारी मंगल गाया, गुण गाए मंगल प्रेम रहती। मुंद मन उमा हो साजन रहन से दुष्ट व्यापे, साच जप सच लाहो कर जोड़ सातन करे बिनती। रैन दिन रस पिनिया नानक पिर तन करे।

ना प्रभु जियो एक लड़ी बनवाहे, क्यों ती रहगी ना बिना प्रभु वे परवाहे। तन ना बाजो रह न साके बिखम रहन कनेरिया, नह नींद आवे प्रेम पावे सुन बेनती मेरिया। बाजो प्यारे कोई न सारे एक लड़ी कुर लाए, नानक सा तन।

सबदे सुहावे ता पत पावे, दीपक देह उजारे सुन सखी सहेली साच सहेली साचे के गुणसारे, सतगुर मेली ता फिर रावी बिगसी अमृत बाणी, नानक सा तन।

हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे किसी का सो होवे पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल तोवे नाम बिना गत कोई न पावे हाथ निग्रह बेबाने नानक सच कर शब्द सिंजापे दुबदा महल के जाने तेरा नाम सच्चा जियो शब्द सच्चा विचारो तेरा महल सच्चा जियो नाम सच्चा वापारो नाम का वापार मीठा भगत लाहा अंदिनो जिस बाज वखर कोई न सूजे नाम लेवो खिन खिनो परख लेखा नदर साची कर्म पूरे पाया नानक नाम।

तन बिनो करे जियो हर के गुण सारे खिन पल रह न सके जियो बिन हर प्यारे बिन हर प्यारे रह न सके गुर बिन महल न पाई है जो गुर कहे सोई पर की जय तिसना अग्न बुझाई है हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवे सुख न पाए नानक सा तन मिले मिलाई जिसनो आप मिलाए तन रैन सुहेलड़िए जियो हर स्यो चित लाए सतगुरु सेवे पाओ करे जियो विच्चों आप गवाए हर गुण गाए अंदिन लागा पाओ सुन सखी सहेली जी की मेली गुर के शब्द समाओ हर गुण सारी ता कंत प्यारी।

नानक कामन सदा रंग राती हर जियो आप मिलाए। ता मिली है हर मेले जियो हर बिन कौन मिलाए, बिन गुर प्रीतम अपने जियो कौन परम चुकाए। गुर परम चुकाए यूं मिली है माए तासा तन सुख पाए, गुर सेवा बिन कोर अंधार बिन गुर मग न पाए। कामन रंग राती सहजे माती गुर कै शब्द विचारे, नानक कामन हर वर पाया।

कापड़ तन ना सुहाए, कापर तन सुहावे जा पिर पावे, गुरमति चित लाये सदा सुहागन जा सतगुर सेवे, गुर के अंक समाये गुर शब्द मेला ता फिर रावी, लाहा नाम संसारे नानक कामन ना प्यारी, जा हर के गुण सारे सा तन रंग माने जियो अपने नाल प्यारे, एनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे, गुर शब्द विचारे हों मैं मारे, इन बिद मिलो प्यारे सा तन सुहागन सदा रंग राती, साचे नाम प्यारे अपने गुर मिल रही है अमृत गई है, दुबदा मार निवारे नानक कामन हर वर।

गुरु शब्द सेवे सच समावे, विच्चों हो मैं मारे हर का नाम हृदय वसाए, ऐसा करे सिगारो नानक काम।

पानी अन्न न पावे मरिए हावे दिन फिर क्यों सुख पाए। गुर आगे करो बिनंती जे गुर पावे ज्यो मिले तिवे मिलाये आपे मेल ले सुखदाता आप मिलिया कर आए नानक कामन सदा सुहागन ना फिर मरे न जाए। गौड़ी महला तीजा कामन हर रस दे दीजियो हर कैसे सुवाए मन मोहन मोह लिया जियो दुबदा सह समाए दुबदा सह समाए कामन वर पाए गुरमती रंग लाए एहो शरीर कूड़ कुसत परिया गलताए पाप कमाए गुरमुख भगत जित सहज तुन उपजे बिन भगती मैल न जाए नानक कामन पिरे प्यारी विच्चों आप गवाए। कामन पिर पाया जियो गुर के पाए प्यारे रैन सुख सुती जियो अंतर उधारे मिलिए प्यारे अंदिन दुख निवारे अंतर महल फिर रावे कामन गुरमति विचारे अमृत नाम पिया दिन राती दुबदा मार निवारे नानक सच मिली सुहागन गुर के हेत अपारे। आवो दया करे जियो प्रीतमत प्यारे कामन बिनो करे जियो सच शब्द सिगारे हों मैं मारे गुरमुख कार सवारे जुग जुग एको सच्चा सोई बूझे गुर विचारे मनमुख काम व्यापी मोह संतापी किस आगे जाए पुकारे नानक मनमुख थाऊ न पाए बिन गुर अत प्यारे। मुंद एयानी पोली निगुनिया जियो फिर अगम अपारा आपे मेल मिलिए जियो आपे बख्शनहारा अवगुण बख्शनहारा कामन कंत प्यारा कट कट रहा समाई प्रेम प्रीत पाए भगती पाए सतगुरु बूझ बुझाए। सदा आनंद रहे दिन राती अंदिन रहे लिवलाई नानक सहजे हर वर पाया सातन नौनिद पाई। गौड़ी महला तीजा माया सर सबल वरते जियो क्यों कर दुत्तर तरिया जाए राम नाम कर बोहे था जियो शब्द खेवट विच पाए शब्द खेवट विच पाए हर आप लंगाए इन विद दुत्तर तरिए गुरमुख भगत प्राप्त होवे जीव त्या यो मरिए। किन में दाम नाम किल विख काटे पय पवित्र शरीरा नानक राम नाम निस्तारा कंचन पय मनूरा। स्त्री पुरुष काम व्यापे जियो राम नाम की विद नहीं जानी मात पिता सुत पाई खरे प्यारे जियो डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी हो मैं पाप संसारे जो आया सो सबको जासी उबरे गुर विचारे गुरमुख होवे राम नाम वखाणे आप तरह कुल तारे नानक नाम वसे कट अंतर गुरमत मिले प्यारे राम नाम बिन को थिर नाही जियो बाजी है संसारा दृढ़ भगत सच्ची जियो राम नाम वापारा राम नाम वापारा अगमा पारा गुरमती तन पाई है सेवा सुरत भगत के साची विच्चों आप गवाई है। हम मत हीन मूरख मुगद अंधे सतगुरु मार्ग पाए नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंदिन हर गुण गाए आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे आपे सतगुरु आप शब्द जियो जुग जुग भगत प्यारे जुग जुग भगत प्यारे हर आप सवारे आपे भगती लाए आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए आपे गुण दाता अवगुण काटे हृदय नाम वसाए नानक सद बलिहार।

गवाए। सदा हर रस पाए जा हर पाए रसना सब सुहाए। नाम प्याए सदा सुख पाए नाम रह लिवलाए। नामे उपजै नामे बिनसै नामे सच समाए। नानक नाम गुरमति पाइए आपे ले लवाए। ए विदानी चाकरी पिया जियो तन छोड़ परदेश सिधाए। दूजे किने सुख न पायो पिया जियो बिख्या लोभ लुवाए। बिख्या लोभ लुभाए परम पुलाए ओ क्यों कर सुख पाए। चाकरी विदानी खरी दुखाली आप वेच धर्म गवाए। माया बंधन टिके नाही छिन छिन दुख संताए। नानक माया का दुख तदे चूके जा गुर शब्दी चुकलाए। मन मुख मुकुट गवार पिरा जियो शब्द मन ना वसाए। माया का परम अंग पिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए। क्यों मार्ग पाए बिन सतगुरु पाए। मन मुख आप गणाए हर के चाकर सदा सुहेले। गुर चरणी चित लाए जिसनो हर जियो कृपा करे सदा हर के गुण गाए। नानक नाम

मन आस दर्श निमानिया सास सास ना करी विसरे पल मूरत दिन राते नानक सारंग ज्यों प्यासे क्यों मिलिए प्रभु दाते। एक बिनो करो जियो सुन कंत प्यारे मेरा मन तन मोह लिया जियो देख चलत तुम्हारे चलता तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों ती रहे गुणवंत ना दयाल बाला सर्व गुण पर पूरे फिर दोष ना ही सुख दाते हो विछड़ी बुरे आरे बिनवंत नानक दया तारो कर आवो नहा प्यारे। हो मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हो सिर

खिन माहे सगला दुख मिटिया, मनो चिंदिया पाया, दिन रैन रलिया करे कामन, मिटे सगल अंदेशा, बिनवंत नानक कंत मिलिया, लोड़ते हम जैसा। मेरे मन अंद भया जियो वजी वादाई, कर लाल आया प्यारा सब तिखा बुझाई, मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया, सब मीत बंदप हरख उपजिया, दूत ठाउ गवाया। अनहतवा जे वजह कर मैं तिर संग सेज विछाई, दिनवंत नानक सहज रहे, हर मिलिया कंत सुखदाई।

गावे। जहाँ साध संत एकत्र हो गए हैं तहाँ तुझे त्यावे। कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन किरपारा, बिनवंत नानक दर्श प्यासे मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली, मोहन तू माने एक जी अवर सब राली। माने ता एक अलेख ठाकुर जिन्हें सब कल तारिया, तुद बचन गुर कह वस किया आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहया आप सब कल तारिया, बिनवंत नानक पैज।

तुझ जपै निदाना जमकाल तिन को लगे नाही जो एक मन त्यावे मन बचन कर्म जे तुझ आराधे से सबे फल पावे मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर सो ज्ञाना बिन वंत नानक राज निहचल पूरन पुरख भगवान।

बेअंत गुण तेरे कथे न जाहे, सतगुरु पुरख मुरारे बिनवंत नानक टेक राखी, जित लग तरिया संसारे। गौड़ी महला पंजवा श्लोक। पतित असंख पुनीत कर पुनः पुनः बलिहार, नानक राम नाम जप पाव को तिन किल बिख दाहन हार। छंत। जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर मादो, त्याय मना मुरार मुकंदे कटिये काल दुख पातो, दुख हरण दीन शरण श्री तार चरण कमल आराधिये, जम पंख बिखरा अगन सागर निमक सिमरत साधिये। कलमले दहता शुद्ध करता दिन सरण आरादो, बिनवंत नानक करो कृपा गोपाल गोविंद माधो। सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया, श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वचल बिरदाया, भगत वचल पुरख पूरन मने चिंदिया पाई है, तम अंग कूप ते उधार है नाम मन वसाई है। सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अंक भगती गाया, बिनवंत नाम

बिन वंस नानक करो कृपा समरथ सब कल धारे गुण गाओ मना अचुत अविनाशी सबके ऊंच दयाला दिसंबर देवन को एक सर्व करे प्रतपाला प्रतपाल महादयाल दाना दया तारे सब किसे काल कंटक लोभ मोह नाशे जी जा के प्रभु बसे सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूरन काला बिन वंत नानक।

कछी वस आया फिर छोड़ न जाए, तेरी तपली भगवंत है नानक जरा मरण पे नरक निवार है, पुनीत कर किस जनत है। सुन सकिए ए पली बेनंती ए हो मतांत पकाइए, सहज सुभाए उपाद रहत होए गीत गोविंद गाइए, कल कलेश मिटे क्रम नासे मन चिंदिया फल पाइए, पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर नानक नाम ते आइए। सखी इच करी नित सुख मनाई प्रभु मेरी आस पुजाए, चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सवाए, खोज लहो हर संत जना संग समरथ पुरख मिलाए, नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवद पागी माए। सखी नाल वसा अपने ना प्यारे, मेरा मन तन हर संग हिलिया, सुन सखिए मेरी नींद भली मैं आप नड़ा फिर मिलिया, प्रम खोयो सांत सह स्वामी परगास तया कौल खिलिया, वर पाया प्रभु।

परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान पंजन गुरुदेव बंदक सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है गुरुदेव मंत्र निरोधरा गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत्र हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा हम मूर पापी जित लग करा गुरुदेव सत गुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा श्लोक आपे किया कराया आपे करने जोग नानक एक और रव रहा दूसर हुआ न होग पौड़ी ओं साध सतगुरु नमस्कार आद मद अंत निरंकार आपे सुन आपे सुख आसन आपे सुनत आप ही जासन आपन आप आपे उपायो आपे बाप आप ही मायो आपे सुखम आपे

निरंकार आकार आप निर्गुण सरगुण एक एक एक बखान नो नानक एक अनेक पौड़ी। ओम गुरुमुख कियो अकारा एक सूत परोवन हारा तिन तिन त्रै गुण विस्तारं निर्गुण ते सरगुण दिष्टारं सगल पाप कर करें उपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दोहू पाप ते आप निरारा नानक अंत न पारा वारा। श्लोक से सहा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सुच पाई है ते संतन के पास। पवड़ी सत्सा सत सत सत सो सत पुरख ते पिन न को सो शरण परे जे पायं सिमर सिमर गुण गाय सुनायं संशय परम नहीं कच व्यापत प्रगट प्रताप पाहू को जापत सो साधु ए पहुंचन हारा नानक ता कह सद बलिहारा। श्लोक तन तन कहा पुकारते माया मोह सब कूर नाम विहूने नानका होत जात सब तूर। पवड़ी तद्दा तूर पुनीत तेरे जनुआ तन तेऊ जेह रुच या मनुआ तन नहीं बाछे सुरग नाचे अत प्रय प्रीत साध रज राचे तंदे कहां व्यापे ताहू जो एक छाद अन कते न जाहू जा कहिय दियो प्रभु नाम नानक साध पूरन भगवान। श्लोक अनिक पेट

ने ए साजन कछ कहो उपाया, जाते तरो विषम ए माया, कर कृपा सत्संग मिलाए, नानक ताके निकट न माए। श्लोक किरत कमावन शुभ अशुभ कीने तिन प्रव्याप, पस आपन हो।

0: और पौड़ी
1: रे मन बिन हर जय रचो कहते बंधन पाहे जे विद कतहु ना छूटी है।

जोड़ा ते रंग एक कै नानक गूड़ा रंग पौड़ी रारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना रे रे दरगे कह न को आओ बैठ आदर सुख देव ओआ महली पावे तू बासा जन्म मरन न होए बिनासा मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके हर संपै।

ते या माया में जन्मे मरना जो जो हुक्म तिवे त्यों करना को ऊन ना को पूरा को सुगर ना को मूरा जित जित लावो।

आखर शास्त्र होएंगे आता, पूरक कुंभक रेचक कर्म आता, ज्ञान ध्यान तीर्थ स्नानी सोम पाक अपरस उद्यानी, राम नाम संग मन नहीं एता, जो कछ तीनों सो अनेता, ओ आते उत्तम गनो चंडाला, नानक जे मन बसे गोपाला। श्लोक कुंट चार दह दुष्प्रमे, कर्म किर्त की रेख, सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख। पौड़ी तक्का कारण करता सो, लिखियो लेख न मेटत को।

पौड़ी थका खूना कछ नहीं तिस समरथ के पाहे जो देना सो दे रहे हो पावे तह तह जाए खर्च खजाना नाम तंग या भगतन की रास खिमा गरीबी आनंद सहज जपत रहे गुणतास खेले बिकसे अनुभ स्यो जा को होत कृपाल सदीव गनीव सुहावने राम नाम गृह माल खेद न दुख न दान ते।

गुर प्रसाद सिमरत रहे जाहु मस्तक पाग नानक आए सफल ते जाको प्रिय सुहाग। श्लोक कोठे शास्त्र देव सब आम न कस्तो कोए आप जुगा दी हुन होवत नानक एक कै सोए पौड़ी।

अपने चरना काल काल अनेक पछतावे बिन हर भगत कहां स्थित पावे कोल महारस अमृत ते पिया नानक हर गुरु जाको दिया। श्लोक काले सब दिवस सास

काल के जो साकत प्रभ कीन अनक जोन जन्मे मरे आत्म राम न चीन ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जे आप दिवाए गणती गणी नहीं को छूटे काची गागर सर पर फूटे सो जीवत जे जीवत जपया करगत पै नानक ने छपया। श्लोक चित चित वो चरणार बिंद ऊद कवर बिग सांत

सभागा चार कुंट दह दुष्कम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो चार विचार बिन सो सब दुआ साध

पौड़ी जजा जाने हो कछुआ बांध्यो जो नलनी प्रमसुआ जो जाने हो भगत ज्ञानी आगे ठाकुर तिल नहीं मानी जो जाने मैं कथनी करता व्यापारी बसबा जो फिरता साध संग

पास्यों करिए संग ज्ञानो या विद सही चित झूठो माया रंग। ज्ञानत सोई संत सोए प्रमते की चत पिन अंधकूप ते कढ़ो जे हो वो सो प्रसन्न।

पवन बिन नामे सुख नाहे, तरह जाम के दूत ते जो साधु संग समाहे। बार बार जाऊं संत सदके, नानक पाप बिना से कद के। श्लोक ठाक ना होती तिन्हों दर, जे हो वो सो प्रसन्न, जो जन प्रभ अपने करे, नानक ते तन तन।

या डेरा को श्रम कर काले जाका तसू नहीं संग चाले। ओ आडेरा की सो मित जाने जाको दृष्ट पूरन भगवान है डेरा ने चल सच।

साध संग अहं बुद्ध विकराल सुख पावो सहजे बसो दर्शन देख निहाल। तेरी जा मैं जम मरे गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपतत रहे हों हों आवे जाए। तहत तहत अब तहत

होए। मणि मिटाए जीवत मरे गुर पूरे उपदेश, मनुआ जीते हर मिले ते सूरतन वेश। ना को जाने आपनो एक टेक आधार, रेण दिन सिमरत रहे सो प्रभ पुरुष अपार। रेण सगल या मन करे एऊ कर्म कमाए, हुक्मे बूझे सदा सुख नानक लिखिया पाए। श्लोक। तन मन तन अर्पो तिसे प्रभु मिलावे मोहे, नानक प्रम को काटी है चूके जमकी जो। पौड़ी। तत्ता तास्यो प्रीत कर गुण निध गोविंद राय, फल पावे मन बाँचते तपत तुहारी जाए। त्रास मिटे जम पंथ की जास बसे मन नाओ, गत पावे मत होए परगास मैली पावे ठाओ। ताहू संग न तन चले ग्रह जोबन ने राज, संत संग सिमरत रहो यह तुहारे काज। ताता कछु न होई है जो तात निवारे आप, प्रतपाले नानक हमें आपे माई बाप। श्लोक। था के बहु विध काल ते तृप्त ना तृष्णा लाथ, संच संच साकत हुए नानक माया ना साथ। पौड़ी। थथा थिर को नहीं काय पसारो पाव, अनिक बंच बल

नानक नाम ते आईए कारज आवे रास पौड़ी। तद्दा तावत तो मिटे संत संग होए बास तुरते कृपा।

जाके मन तन नाम बसाई, नाम निधान गुरुमुख जो जपते, बिख माया में ना ओए खपते। नन्ना कार ना होता ता कहो, नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो। निध निधान हर अमृत पूरे, तह बाजे नानक अनहद तूरे। श्लोक

पौड़ी। पत्ता परमित पार न पाया, पतित पावन अगम हर राया, होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपे मिल साधु। पर पच त्रोह मोह मिटनाई, जाको राखो आप गुसाई, पाँच सौ

नानक गुर ते सिख पाई, फिरन मिटे नितनीत पौड़ी। फफा फिरक फिरक तू आया, दुर्लभ दे कल युग में पाया, फिर या अवसर चरे न हाथा, नाम जपो तो कटिए फासा। फिर आवन जान ना होई, एक जपो जप सोई, करो कृपा प्रभु।

मन मूर्ख कह करें पुकार। जो मांगे तो मांगे दिया, जाते कुशल न काहू थिया, मांगन मांगता एक मांग, नानक जाते।

दुख सुख हुआ के समत विचारा, नरक सुरग रहत अवतारा। ताहू संग ताहू निर्लेपा, पूरन कट कट पुरख विशेखा। ओआ रस में ओआहू सुख पाया, नानक लिपत नहीं ते माया। श्लोक। यार मीत सुन साजनो, बिन हर छूटन नाहे। नानक ते बंधन कटे, गुर की चरनी पाहे। पौड़ी। यैया जतन करत बहु विदिया, एक नाम बिन कह लोस दिया। याहू जतन कर होत

याहू तरन तारन समराथा राख लेहो निर्गुण नरनाथा। मन बच कर्म जे आप जवनाई नानक ते मत प्रग

पाव जलते काडू प्रभु नानक तेरी टेक पौड़ी। खेलत खेलत आयो अनक जोन दुख पाए, खेद मिटे साधु मिलत सतगुरु बचन समाए। खिमा गई सच संचयो खायो अमृत नाम, हरि कृपा ठाकुर भई अनद सुख विश्राम। खेत निबाही बहुत लाभ कर आए पतवंत, खरा दिलासा गुरु दिया आए मिले भगवंत। आपन किया करें आप आगे पाछे आप, नानक सो सराही है जे कट कट रहा ब्याप। श्लोक आए प्रभ शरणागति कृपा निद दयाल, एक अक्षर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी अक्षर में त्रिभवन प्रभ धारे, अक्षर कर कर वेद विचारे। अक्षर शास्त्र सिमरत पुराना, अक्षर नाद कथन वख्याना। अक्षर मुक्त जुगत पै पर

हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान, जा कै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे, है भी होवन हार, हे संत के सदा संग निधारा आधार। हे ठाकुर हूँ दासरो, मैं निर्गुण गुण नहीं कोए, नानक दी जय।

गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश है, गुरुदेव मंत निरोधरा, गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित करा, गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा।

तब के सिमरन दूस जंग से, तब के सिमरन काल पर हरे, तब के सिमरन दुश्मन तरे, तब सिमरत कछ बिघन न लागे, तब के सिमरन अंधन जागे, तब के सिमरन पौ न व्यापे, तब के सिमरन दुख न संतापे, तब के सिमरन साध के संग सर्व निधान नानक हर रंग, प्रभ के सिमरन रिद सिद्ध नौ निद, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध, प्रभ के सिमरन जप तप पूजा, प्रभ के सिमरन विनसै दूजा, प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ के सिमरन दरगह मानी, प्रभ के सिमरन होय सो भला, प्रभ के सिमरन सो फल फला, छे सिमरन जिन आप सिमराए, नानक का कैला गुरु पाए, प्रभ का सिमरन सबसे ऊंचा, प्रभ के सिमरन उदरे मूचा, प्रभ के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभ के सिमरन सब किछ सुझे, प्रभ के सिमरन नाही जन त्रासा, प्रभ के सिमरन पूर्ण आशा, प्रभ के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माहि सनाए, प्रभ जी बसे स्वाद की रसना, नानक जन का दासन दसना, प्रभ को सिमरे से तनवंते, प्रभ को सिमरे से पतवंते, प्रभ को सिमरे से जन प्रवान, प्रभ को सिमरे से पुरुष प्रदान, प्रभ को सिमरे से बेमोहताजे, प्रभ को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभ को सिमरे से सुखवासी, प्रभ को सिमरे सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला, प्रभ को सिमरे से परोपकारी, प्रभ को सिमरे तिन सद बलिहारी, प्रभ को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरे तिन सुख बिहावे, प्रभ को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरे तिन निर्मल रीता, प्रभ को सिमरे तिन अनंत घनेरे, प्रभ को सिमरे बसे हर नेरे, संत कृपा ते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभ के सिमरन कार्य पूरे, प्रभ के सिमरन कभो न झूरे, प्रभ के सिमरन हर गुण बानी, प्रभ के सिमरन सह समानी, प्रभ के सिमरन निचल आसन, प्रभ के सिमरन कमल विगासन, प्रभ के सिमरन अनहद जुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार, सिमरे से जन जिन को प्रभ नया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर पगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेत उपाय, हर सिमरन तय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौ कुंट जाते, हर सिमरन तारी सर करना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की ओ सगल अकारा, हर सिमरन में आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरुमुख हर सिमरन तिन पास लोक, दीन दर दुख पंजना, कट कट नाथ अनाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभु साथ, अष्टपदी, जय मात पिता सुत नीत न भाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाय, जय मां प्यान दूत दम दले, तह केवल नाम संग तेरे चले, जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माए उदारी, अनित पुनः चरण तर्क नहीं तरे, हर को नाम कोट पाप पर हरे, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नाम पावो सुख घनेरे, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हो सुखिया, लाख करोरी वंदना करे, हर का नाम जपत निस्तरे, अनेक माया रंग सिखना बुझावे, हर का नाम जपत आभावे, जे मार्ग हो जाति के लाते, हर नाम संग होत सोएला, ऐसा नाम मन सदा ते आई है, नानक गुरुमुख परम गत पाई है, छूटत नहीं कोट लखबाही, नाम जपत ने पार कराही, अनेक विघ्न जय आए संगारे, हर का नाम तत्काल उधार है, अनेक जोन जन्म मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम, हर मैला मल कभू न धोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे, ऐसा नाम जपो मन रंग, नाम पाये साध के संग, जे मार्ग के गने जाए न कोसा, हर का नाम उहा संग तोसा, जे पैंदे महा अंग गुबारा, हर का नाम संग जियारा, जहां पंथ तेरा को न सियानू, हर का नाम तह नाल पहचानू,
जय महा प्याम सब बो काम तै हर के नाम की तुम ऊपर शाम जहाँ त्रिखा मन तुझ आकर्ष है तै नानक हर हर अमृत बरख है भगत जना की बरकर नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जन कोट हर दस पर संत दिन रात हर हर औसत साध कमात हर जन के हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन के बिरत विवेक है हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर के नाम जन को तृप्त भूत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब करे न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत पछवाए वियोग जन वाता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन के माल खजीना हर तन जन को आप सब दीना हर हर जन के ओट सतानी हर प्रताप जन अगर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रसमाते आठ पैर जन हर हर जपे हर का पगत प्रकट नहीं छपे हर की पगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते तरे पार जात एव हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सबसे उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लता नाम की महिमा संत हृदय वसे संत प्रताप दिल सब नसे संत का संगवड भागी पाये संत की सेवा नाम ध्याये नाम तुल कछ अगर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व तंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ज्ञान खप शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म कर्म क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनेक प्रकार की ये बहु जतना पुन दान हो में बहु रतना शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्त नेम करे बहु पासी नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिर चिरजीव है महा उदास कपी सरथी वै अगन माए हो मत प्राण कनक अश्व है वर पूम दान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संजम अच्छादन निमक निमक कर शरीर कटावे कौ भी हो मैं मेल न जावे हर के नाम संसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गप पाहे मन कामना तीरथ दे छुटे गर्भ गुमान न मन ते हुटे सोच करे दिन और रात मन की मैल न तनते जात इस देही को बहु साधना करे मन से कभू न भिख्या करे जल तो वह बहु दे अनीत शुद्ध कहाँ होए काची वीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतित बहुमूच बहुत श्यांत जम का पौ व्यापे अनेक जतन कर प्रसन्ना धापे पेट अनेक अगर नहीं बुझे कोट उपाव दर गहने सिजय छूटत नाही ऊप बयाल मोह व्यापे माया जाल अवर करतूत सगली जमदाने गोविंद पदन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सह सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे सात जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सब गावे जे को अपनी शोभा लोरे साध संग ए हो मैं चोरे जे को जन्म मरण से डरे सात जना की सरनी परे जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक पाके बल बल जासा सगल पुरुख में पुरुख प्रदान साफ संग जाका मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गनिये सबसे ऊंचा जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मन अपने से बुरा मिटाना देखे सगल सृष्ट साजना सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेता निर्तन

आपन संग आप प्रवराते तुमरी युस्तक तुमते होए नानक अवर न जानस कोए। सर्व कर्म में श्रेष्ठ कर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग जुर्मत मल है।

उबारिया बाल व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोगन पोजन सुख सूद दीर्घ पया ऊपर साख सैन मुख प्याओ बैठ को देन ते निर्गुण गुण कछु न बूझे बख्श लियो तो नानक सीजे जे प्रसाद तर ऊपर सुख बसे सुत प्रात मीत बनता संग हसे जे प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमूला जे प्रसाद पोगे सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव कर नेत्र रसना तिसे त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूड अंग व्यापे नानक काज लेहो प्रव्यापे आद अंत जो राखनहार तिस्यो प्रीत न करे गवार जाकी सेवा नव निध पावे तास्यो मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकुर सब सदा हजूरे ताको अंदाज़ जानत दूरे

झूठ संग मचे। जो छदना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर कराने। छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाई तिसका हरे। चंदन लेप उतारे धोए, गर्द प्रीत पसंद संग होए। अंधकूप में पतित विकराल, नानक काट लियो प्रभु दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। बाहर पेट अंतर मल माया, छप सुनाए कछ करे छिपाया। बाहर ज्ञान त्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ सुवान। अंतर अगन बाहर तन सुहा, जल पाथर कैसे तरे अथाहा। जाके अंतर बसे प्रभ आप, नानक ते जन सहज समात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गए लियो ओर निभावे। कहां बुझारत बूझे डोरा, निष्कई है तो समझे पोरा। कहां विषण पद गावे गुंग, जतन करे तो भी सुरभंग। कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं होत उहा उस गवन। करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुम्हरी कृपा करे। संग सहाई सो आवे ना चीत, जो बैराई तासो प्रीत। बलुआ के गृह पीतर बसे।

त्याहु जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर करम। तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बार तेरे तुमरी कृपा में सूख जनेरे।

सारा जाके मन लागा प्रभु मीठा सर्व सुख ताहू मन बूठा जिस जन अपना हुकुम मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगनत साओ अपनी देरास खात पीत बरते अनत उलास अपनी अमान कछ बहुर सावले अज्ञानी मनी रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोए बहुर उसका विश्वास ना होवे जिसकी बस्त किस आगे राखे प्रभु की आज्ञा माने माथे उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल।

भगवान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे मिथ्या नेत्र पेखत पर

आए। गोविंद भजन दिन बिरथे सब काम, जो किरपन के निरारख दाम। तन तन ते जन जे कट बस्यो हर नाओ, नानक ताके बल बल जाओ। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंध लावत। जानन हार प्रभु प्रवीन, बाहर पेख न काहू पीन। और उपदेश आप न करे, आवत जावत जन्मे मरे। जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख करे संसार। जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक कुंजन चरण पर आता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने। आपे आप तर्क निबेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। उपाव स्यान सगल ते रहते, सब कछ जाने आत्म की रहते।

अष्टपदी। जे प्रसाद शक्ति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे। जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर। जे प्रसाद दे संग सुख बसना आठ पैर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्याग कत अवर लुभावे। जे प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैर ता का जस का वी जय।

सब ताके जे प्रसाद तुझको ना पहुंचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु उचे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद अपूखन कहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अस्वहस्त अस्वारी मन किस प्रभु को कभू ना बिसारी।

मेरा साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माय समानी। साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ल है।

साधु कै संग सो तन पावे, जिस तन ते सब को वरसावे। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग सो बासुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्व थान गम, नानक साध कै संग सफल जन्म। साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन पेटत होत निहाल। साध कै संग कलू खत हरे, साध कै संग नरक पड़ हरे। साध कै संग इहा उहा सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावे, साध कै संग ना बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध रिद बसे, नानक उदरे साध सुन रसे। साध कै संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध कै संग ना मन से बिसरे, साध संग सर पर निस्तरे। साध कै संग लगे प्रभु मीठा, साधु कै संग कट कट जीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संगत पै हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संग।

ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म

ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उर्दारे जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार है, नानक ओ अपरस सगल निस्तार है।

हैं, कई कोट आपम ध्यान तार हैं, कई कोट कब काब विचार हैं, कई कोट नवतन नाम दियावे हैं, नानक करते का अंत न पावे, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंत अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिज आत्म निकोर, कई कोट पर दर्द को हिर है, कई कोट पर दुख ना करें, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख मिट जाए।

इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूत धारे, नारक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तारे। कई कोट राजस्ताम सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत हर शास्त्र। कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत। कई कोट किए त्रिजीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे। कई कोट जप किन्नर पिशाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच। सब के नेरे सबहूते दूर, नानक आप अलिप्त रहा भरपूर। कई कोट पताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी। कई कोट जन्मे जीवे मरे, कई कोट बहुजोनी फिरे।

कर कर देखे अपनी वडियाई, नानक सब में रिया समाई। प्रभ पावे मानव गत पावे, प्रभ पावे ता पाथर तरावे। प्रभ पावे बिन सास राखे, प्रभ पावे ता हर गुण पाखे। प्रभ पावे

जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर न आवे। कहो मानस के क्या होए आवे, ज्योतिष पावे सोई करावे। इसके हाथ होए ता सब पिछले, ज्योतिष पावे सोई करे। अनजानत भिक्षा में रखे, जे जानत आपन आप बचे। परने पूला दे दिस्तावे, निमक माए चार कुंट फिर आवे। कर कृपा।

गुरु प्रसाद नानक सच कहे। कभू होए पंडित करे बखान, कभू मोन तारी लावे ध्यान, कभू तट तीर्थ स्नान, कभू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कभू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनेक जोन पर मैं परमिया, नाना रूप जो स्वादी दिखावे, जो प्रभ पावे तिवे न चावे, जो तिस

अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम रते इक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग। ज्यों जल में जल आए खताना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए।

निर्धार अनित तपस्या करे अंकार नरक सुरग फिर फिर अवतार अनित जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगे को कैसे गवे।

प्रभु कृपा ते बंधन टूट गुरु प्रसाद नानक हों छूट है। सहस खटे लख कोट सावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनेक भोग दुखिया के करे नह तृप्त आवे खप खप मरे बिना संतोष नहीं को राजे सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे नाम रंग सर्व सुख होए बड़ पागी किसे प्राप्त होए।

चार अष्टपदी संत के दुखन आर्जा कटे हैं, संत के दुखन जमते नहीं छुटे, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन सो बाते हीन, संत के हते को रखे न कोए, संत के दुखन थान प्रस्त होए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भी तरे, संत के दुखन ते मुख पवे, संत के दुखन काग जो लवे, संत के दुखन सर्प जोन पाए, संत के दुखन जगत जोन किरमाए, संत के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सब को छले, संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच निचाए, संत दुखी का थाओ को नाहे, नानक संत पावे तो ओए भी जत पाहे, संत का निंदक महाअपताई, संत का निंदक खिंच करना पाई, संत का निंदक महात्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राजते हीन, संत का निंदक दुखिया अर्दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दोख में दोख, नानक संत पावे ता उसका भी होय मोख, संत का दोखी सदा अपवित, संत का दोखी किसे का नहीं मित, संत के दोखी को दान लागे, संत के दोखी को सब त्यागे,

निरंजन जानिया। गुरु प्रसाद आपन आप सुजय, किसकी जानो तृष्णा दुजय। साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग ते ओ हर जन रहत। आमदन कीर्तन केवल ख्यान, ग्रस्त में सोई निर्वाण। एक ऊपर जिस जन की आशा, किसकी कटिए जन की फासा। पार ब्रह्म की जिस मन पूख, नानक किसे न लागे दुख। जिसको हर प्रभु मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं बुलावे। जिस प्रभु अपना कृपा करे, सो सेवक कहो किससे डरे। जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुरु प्रसाद तक सब बुझिया। जब देखो तब सब किस मूल, नानक सो सुखम सोई अस्थूल। न किस जन्मे न किस मरे, आपन चलित आप ही करे। आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ। आपे आप सगल में आप, अनेक जुगत रखाप उथाप। अविनाशी नाही किस खंड, तारण तार रहे हो ब्रह्मंड। अलख अभेद पुरुष प्रताप, आप जपाए त नानक जाप। जिन प्रभु जाता सो शोभावंत, सगल संसार उदरे तिन मंत। प्रभु के सेवक सगल उदारन, प्रभु के सेवक दुख विसारन। आपे मेल ले कृपाल, गुर का सबक जप पे निहाल। उनकी सेवा सोई लागे, जिसनो कृपा करे बढ़पा गए। नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरुष को उत्तम करमान। जो किछ करे सो प्रभु के रंग, सदा सदा बसे हर संग। सहे सुबाए होवे सो होए, करने हार पछाने सोए। प्रभु का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिते उपजे तिस माहि समाए, ओए सुख निदान उन्हों बने आए। आप उसको आप दीनो मान, नानक प्रभु जन एक को जान। श्लोक।

अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस्ते बिरथा कोई ना है। रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए जे सो प्राणी लोचे कोए तिस दिन ना ही तेरे कुछ काम गत नानक जप एक हर नाम। रूपवंत होए नाही मोह है प्रभ की जोत सगल कट सो है तनमंता होए क्या को गर्व है जा सब किस किसका दिया दर्व है। आप सूराजे को कहावे प्रभ की कला बिना कह धावे जे को होए बहदा पार किस देन हार जाने गावार जिस गुर पर साल तू तह हो रोग नानक सोजन सदा अरोग। ज्यो मंदर को थामे थमन त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन ज्यो पाखान नाल चढ़तरे प्राणी गुरुचरण लगत निस्तरे ज्यो अंधकार दीपक करगास गुर दर्शन देख मन होए विगास ज्यो महा उद्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे इन संतन की बाँचो तूर नानक की।

जाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद। साफ तेरे की चरनी पाओ नानक कै मन एवो नराओ। मनसा पूरन सन्ना जोग जो कर पाया सोई होग। हरन परन जा का नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर। अनद रूप मंगल सज्जा कै सब थोक सुनिए कर पाके। राज में राज जोग में जोगी तप में तपी सरग्रस्त में भोगी। चाहे चाहे पगते सुख पाया नानक किस पुरुख का किने अंत न पाया। जाकी लीला की मितना है सगल देव हारे अवगाहे। पिता के जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत। सुमत ज्ञान त्यान जिन दे जन दास नाम त्यावे से। त्यों गुण में जाको भरमाए जन्म मरे फिर आवे जाए। ऊंच नीच तिसके स्थान जैसा जन आवे तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग नाना तेख करे एक रंग। नाना विद कीनो विस्तार प्रभ अविनाशी एकंकार। नाना चलत करे खिन माहे पूर ओ पूरन सब ठाए। नाना विद कर दंत बनाई अपनी कीमत आपे पाए। सब कब तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवे नान खरनाओ। नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड। नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान। नाम के तारे आकाश पताल नाम के तारे सगल आकार। नाम के तारे पुरिया सब भवन नाम के संग उदरे सुन श्रवन। पर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए। रूप सत जा का सत स्थान पुरुष सत केवल प्रधान। करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरुष सब माए समानी। सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत्त। सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए किसे सब पली। सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नाम गुर ते पाई। सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कह रहे प्रवेश। सत निरत बूझे जे कोए नाम जपता की गत होए। आप सत की आ सब सत आपे जाने अपनी मित गत। जिसकी सृष्टि हो करने हार और न बूझ करत विचार। करते की मित न जाने किया नानक जो तिस पावे सो वर्तिया। बिस्मन बिस्म पे बिस्माद जिन बूझिया तिस आया स्वाद। तब के रंग रात जन रहे गुर के बचन पदार्थ लहे। ओए दाते दुख का तुम्हार जाके संग करे संसार। जन का सेवक सो वड़ पागी जन के संग एक लिव लागी। गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुर प्रसाद नानक फल पावे। श्लोक आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी बे सच। अष्टपदी चरण सत सत प्रसन्हार पूजा सत सत सेवदार। दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत त्यावनहार। आप सत सत सबधारी आपे गुणकारी। शब्द सत सत प्रभ भक्ता सुरत सत सत जस सुनता। बुझनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए। सत स्वरूप हृदय जिन मानिया करण करावन तिन मूल पछानिया। जहाँ कह हृदय विश्वास प्रग आया सत ज्ञान तिस मन प्रगटाया। कहते निर्भो होए बसाना जिसते उपजा तिस माय समाना। बस्त माय ले बस्त गदाई ताको पिनना कहना जाई। बूझे बूझन हार विवेक नारायण मिले नानक एक। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी। ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम के रंग। सेवक को प्रभ पालन हारा सेवक की राखे निरंकारा। सो सेवक जिस दया प्रभ धारे नानक सो सेवक साथ साथ समारे। अपने जन का प्रदाता कह अपने सेवक की सर पर राखे।
अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई। अपने सेवक की आप पतराखे ताकि गतमित कोई न लाखे। प्रभु के सेवक को ना पहुँचे, प्रभु के सेवक पूछते ऊँचे। जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दैन प्रगटाया। नीकी कीरी महफल राखे पसंद करे लश्कर कोट लाखे। जिसका साफ ना काटत आप ताको राष्ट्र दे कर हाथ। मानस जतन करत बो पाक किसके करतब गिरते जात। मारे न राखे अवर न कोए सर्व जिया का राखा सोए। काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विडाणी। बारंबार बार प्रभ जपिए पी अमृत इहो मन तन तृपिए। नाम रतन जिन गुरमुख पाया किस किच अवर नाही दृष्टाया। नाम तन नामो रूप रंग नामो सुखर नाम का संग। नाम रस जो जंत्रस्ताने मंतन नामे नाम समाने। उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन के सब काम। बोलो जस जे बै दिन रात प्रभ अपने जन की नीदात। करे भगत आत्म कह चाहे प्रभ अपने सो रहे समाए। जो हुआ हो वत सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पछाने। तिसकी महिमा कौन बखानो तिसका गुण कह एक न जानो। आठ पैर प्रभ बसे हजूरे कहो नानक से जन पूरे। मन मेरे तिन की ओट ले मन अपना तिन जा।

पार्थमिता में अवर से आप सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा नाग आवन जान न होवी तेरा नानक तिस जन के पूजो सब तेरा। श्लोक

अष्टपदी सतगुर सिख की करे प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरे गुरु बचनी हर नाम उचरे सतगुर सिख के बंधन काटे गुर का सिख विकार ते हाटे सतगुर सिख को नाम तन दे गुर का सिख वड़ पागी है सतगुर सिख का हल्क पलक सवार नानक सतगुर सिख को जी नाल समार गुर के गृह सेवक जो रह गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछ न जनावे हर हर नाम हृदय सत्यावे मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कार्य रास सेवा करत होए ने कामी किसको हो प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बीस बिस्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनेक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कच भरम सह स्यान लया न जाइए नानक ऐसा गुरबड़ पागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत पेखत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुनकर वचन करन आघाने मन सुन तो खातम पतियाने पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेख हो संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिस लय मिलाए जीवा एक पुस्तक अनेक सतपुरुष पूरन विवेक काहू बोल न पहुंचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनेक भगत बंधन मुक्त करे चरण कमल हृदय सिमरे सब बलिहारी सतगुरु अपने नानक जिस पर साथ ऐसा प्रभ जपने क्यों हर रस पावे जन कोए अमृत पीवे अमर सो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुण पास आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया के संग ना लेप मन में राखे हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक परम मोह दुख तहसे नासे तपत माए ठाट वरताई अंध भया दुख ना ठे भाई जन्म मरण के मिटे अंदेशे साधु के पूर्ण उपदेशे पहुंचू का निरपो हो बसे सगल व्याद मन से खैन से जिसका साथ तिन कृपा भारी साध संग जप नाम मुरारी ठित पाई चूके क्रम गवन सुन नानक हर हर दस्रवन निर्गुण आप सरगुण भी ओही कलाकार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिंदु जाना ही कोए सर्व निरंतर एक को सोए पोत पोत रव्या रूप रंग कहे प्रभा साध कै संग रच रचना अपनी कल तारी अनेक बार नानक बलिहारी श्लोक साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक इहो दम सार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपास सब मीत विसारो चरण कमल में उधारो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हर वत यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंठ उठ भावे सो तन हर सेवा ते पा

शोभा पज है की सरनी, अनित उपावी रोग न जाए, रोग मिटे हर औखद लाए, सर्व निदान में हर नाम निदान, जप नानक दरगे परवान, मंत्र बोधो हर कहनाए, दैव स्थावत आवे ठाए, ताको बिघन ना लागे कोए, जा कह हृदय बसे हर सोए, कल पाती ठांडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पौ बिन से पूरन होए आस, भगत पाए आत्म प्रगास, तित कर जाए बसे अविनाशी, कहो नानक काटी जम फासी, तत विचार कहे जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा, आवागमन मिटे प्रभु सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव, त्यों रतन जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण आर, अनेक उपाव न छूटन हारे, सिमरत सासत वेद विचारे, हर की पगत करो मन लाए, मन बंछत नानक फल पाए, संग न चाल तेरे धना, तू क्या लपतावे मूर्ख मना, सुत मीत कुटम अर्बनता, इनसे कहो तुम कवन सना था, राज रंग माया विस्तार, इनसे कहो कवन छुटकार, अस हस्ती रथ असवारी, चूठा डंप चूट पासारी, जिन दिए तिस बुझे ना बेगाना, नाम विसार नानक पछताना, गुर की मत तू ले आने, पगत बिना धो डूबे स्याने, हर की पगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारे चीत, चरण कमल वाखो मन माहे, जन्म जन्म के किल विच जाए, आप जपो अगरा नाम जपाओ, सुनत कहत रहत गत पाओ, सार भूत सत हर को नाओ, सह सुबह नानक गुन गाओ, गुन गाव तेरी उतरस मैल, बिनस जाए हो मैं विक फैल, हो है अचिंत बसे सुखनाल, साफ ग्रह सर नाम समाल, छाड़ स्यान सगली मना, साफ संग पावे सत घना, हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दरगे जयकार, सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख, एको जप एको सालाय, एको सिमर एको मन आहे, एक के गुण गाव अनंत, मंथन जाप एक भगवंत, एको एक एक हर आप, पूरन पूर रहो प्रव्याप, अनेक विस्तार एक ते भये, एक अराज प्राशक गए, मंथन अंतर एक प्रवराता, गुरु प्रसाद नानक एक जाता, श्लोक, फिरत फिरत प्रभु आया, परया को शरणाय, नानक की प्रभु बेनती, अपनी पगति लाए, अष्टपदी, जाचक जन जाते प्रदान, कर कृपा देवो हर नाम, साजना की मांगो तूर, पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर, सदा सदा प्रभु के गुण गावो, साथ साथ प्रभु तुम्हें ध्यावो, चरण कमल सो लागे प्रीत, भगत करो प्रभु की नित नीत, एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रसार, प्रभु की दृष्टि मां सुख होए, हर रस पावे बिरला कोए, जिन चाख्या से जन तृप्ताने, पूरन पुरख नहीं डोलाने, सुवर भरे प्रेम रस रंग, उपजे चाव साध के संग, परे शरण आम सब त्याग, अंतर प्रगास अम दिन लिवलाग, बड़ पागी जपिया प्रभु सोए, नानक नाम रते सुख होए, सेवक की मनसा पूरी भई, सतगुर ते निर्मल मत लई, जन को प्रभ होयो दयाल, सेवक की नो सदा निहाल, बंधन काट मुक्त जन भया, जन्म मरण दुख क्रम गया, इच पुनी सरदा सब पूरी, रव रया सब संग हजूरी, जिस पासा तिन लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए, सो क्यों बिसरै जे काल न पाने, सो क्यों बिसरै जे की आ जाने, सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरै जे अगन में राखे, गुरु प्रसाद को बिरला लाखे, सो क्यों बिसरै जे बिखते काडे, जन्म जन्म का टूटा गांडे, गुर पूरे तत एह बुझाया, प्रभु अपना नानक जन त्याया, साजन संत करो एह काम, आम त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरह नाम जपाओ, भगत पाए तरिय संसार, बिन भगती तन हो सी चार, सर्व कल्याण सुख निज नाम, बूढ़त जात पाए विश्राम,
सगल दुख का होत नास, नानक नाम जपो गुण पास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मन तन अंतर एही सुआओ। नेत्रों पेक दर्श सुख होए, मन विकसै साध चरण तोए। भगत जना के मन तन रंग, बिरला को पावे संग। एक बस दीजे कर मया, गुरु प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कहीं न जाए, नानक रहया सर्व समाए। प्रभु संत दीन दयाल, भगत वचल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा कर्त कृपाल। आदि पुरुष कारण करतार, भगत जना के प्राण आधार। जो जो जपे सो हो पुनीत, भगत पाए लावे मनहित। हम निर्गुणिया

अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व वैकुंठ मुक्त मोक्ष पाए एक निम हर के गुण गाए अनेक राज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन भाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत फली सो करनी सो बातनवंत हृदय बसे पूरन गुरमंत साध संग प्रभ देव निवास सर्व सुख नानक प्रगास श्लोक सर गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपसे ही फिर जाप अष्टपदी जब अकार यो कचना दृष्टि ताप पाप तुम तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध के संकमात जब इसका वरण चेन ना जापत तब हरक शोक कोक्ष व्यापक जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत भरम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रब केवल तनी तब बंद मुकत को किसको गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुरुप को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुवाए तब शिव सकत को कित ठाए जब आपे आप अपनी जोत धरे तब कौन निडर कौन कत डरे आपन चलित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण को कहा विनाशन जब पूरन करता प्रभ होए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा जय निर्मल पुरुष पुरुष पत होता तह बिन मैल कहो क्या चोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लगत कहो कीस जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तै किसे पूप कवन तृप्तावे करण करावन करने हार नानक करते का ना कुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कौन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कला आपे परवीन तै वेद कते पा कोचीन

कोई जन पाए सो समदर्शी तपका बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंत्र सबका कह हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राख है तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसार है तिस तज अगर कहा को जाए सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जा कह सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निदान बेअंत अपार नानक दास सदा बलिहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्याप प्रतपाल है जी अनुभव पात जो जो रचियो सो तिसे त्यात जिस पावे तिस लय मिलाए भगत करे हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक लिख जान्या जन लागा हर एक कहनाए तिसकी आसना बिरथी जाए सेवक को सेवा बने आए हुकम बूझ परम पद पाए किसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बस्या निरंकार बंधन तोर पे निर्वैर अन दिन पूजे गुर के पैर ए लोक सुखी पर लोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले साध संग मिल करो आनंद गुण गावो प्रभ परमानंद राम नाम तक करो विचार दुर्लभ देखा करो उदार अमृत वचन हर के गुण गाओ प्राण तरन का यह सुहाओ आठ पैर प्रत्ये खोनेरा मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसाओ मन इच्छे नानक फल पाओ हलत पलत दो लिहो सवार राम नाम अंतर उधार पूरे गुर की पूरी दीखिया जिस मन बसे तिस साज परीखिया मन तन नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन से पहुँचाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगे निभे खेप तुम्हारी एका टेक रखो मन माहे नानक दौर न आवे जाए तिसते दूर कहाँ को जाए उबरे राखन हार ध्याए निरपो जपे सकल को मिटे प्रभ कृपा से प्राणी छुटे जिस प्रभ राख है तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटे अंकार तिस जन को कोई न पहुंचन हार सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा नानक ताके कारज पूरा मत पूरी अमृत जा की दृष्ट दर्शन देखत कुदरत सृष्ट चरण कमल जा के अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसे सोत निहाल ताके निकट नावत काल अमर पै अमरा पद पाया सात संग नानक हर ध्याया श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास अपसदी संत संग अंतर प्रभ गीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक स्पट माहे अनक रंग नाना दृष्टा है नवनिध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम सुन समाद अनहत्ते नाद कह न जाई अचरज विस्माद तिन देखिया जिस आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहा भगवंत करण माए आकाश दयाल सर्वलोक पूरन प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा करम कौन पानी बह संतर माहे चार कुंट गह दिसे समाहे तिसते पिन नहीं को ठाओ गुरु प्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमृत में देख ससियर सूर नक्षत्र में एक बाणी प्रभ की सबको बोले आप अडोल न कभू डोले सर्व कला कर खेले खेल मोल न पाइये गुणे अमोल सर्व ज्योत में जाकी ज्योत तार रहे हो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद धर्म का नाश नानक तिन में यो विश्वास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुने शुभ वचन सर्व व्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिसकी यह रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोई सुख माने करण करावन हार सब जाने अंतर बसे बार भी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत किस तब ते सगली उत्पत्त।

तिस पावे ता करे विस्तार, तिस पावे ता एकंकार। अनेक कला लखी न जाए, जिस पावे तिस रहे मिलाए। कौन निकट कौन कही है दूर, आपे आप भरपूर। अंतर्गत जिस आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए। सर्वभूत आप वर्तारा, सर्व नैन आप देखनहारा। सगल समग्री जा का तना, आपन जस आप ही सुना। आवन जात एक खेल बनाया, आज्ञाकारी की नीमाया। सब कह मद अलिप्त तो रहे, जो किस कहना सो आपे कहे। आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता ले समाए। इसते होए सो नाही बुरा, ओरे कहो किने कछ करा। आप भला करतूत अतने की, आपे जाने अपने जी की। आप साच तारी सब साच, ओत पोत आपन संगराच। ताकि दतमित कहीं न जाए, दूसर होए तासो जी पाए। तिस ताकि या सब परवान, गुरु प्रसाद नानक हो जान। जो जाने तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभ सोए। ओ तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। तन तन तन जाने आया, जिस पर साथ सब जगत तराया। जन आवन का यह सुहाओ, जन के संचित आवे नाओ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा नमस्कार। श्लोक पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जा का नाम। नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ अष्टपदी। पूरे गुर का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर देख। साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद। आस अनित्यागो तरंग, संत जना की तूर मन मंग। आप छोड़ बेंती करो, साध संग अगन सागर करो। हर तन के पर ले हो पंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग पज परमानंद।

अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल ए रतन सुनत कमावत।

जय जय शब्द अनाहद वाजे, सुन सुन अनद करे प्रभु गाजे। प्रगटे गोपाल महंत कै माथे, नानक उदरे तिन कै साथे,

दुख रोग बिनसे पै परम साध नाम निर्मलता के करम सब ते ऊंचता की शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुखमनी सब ते ऊंचता की शोभा बनी नानक ए गुण नाम सुखमनी।

क्रम कटिए नानक साध संग दुतिया पाओ मिटाए पौड़ी। दुतिया दुर्मत दूर कर गुर सेवा कर नीत राम।

से लाभ मिले तो ताहिर है हर दरगे पतवंत राम नाम तन संचवे साच सहा भगवंत उठत बैठत हर पजो साधु संग परीत नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। श्लोक तीन ब्यापे जगत को तुरिया पावे कोय नानक संत निर्मल पये जिन मन वसया सोए। पौड़ी तृतीया त्रै गुण बिखे फल कब उत्तम कब नीच नरक सुर्ग प्रमतो कणो सदा संगारे मीच। हरक सोग सहसा संसार हौ हौ करत बिहाये जिनकी ये तिसे न जाननी चित में अनक उपाय। आद ब्याद उपाद रस कभो न टूटे ताप पार ब्रह्म पूरन तनी नह बूझे परताप। मोह परम बूढ़त कणो महानरक में वास कर कृपा प्रभु।

पौ बिन से अमृत रसे रंग रते निरंकार दुख दारद अपवित्रता नासे नाम आधार। सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला।

पार। जन्म मरण बहु जोन प्रमण, कीने कर्म अनेक, रचनहार ने सिमरियो मन ना विचार विवेक। पाओ भगत भगवान संग, माया लिप्त न रंच, नानक बिरले पाये जो ना रचे परपंच। श्लोक। खट शास्त्र ऊंचो कहे, अंत न पारावार, भगत सो है गुण गावते, नानक प्रभ के द्वार। पौड़ी। खस्तम

नारद मुन जन सुख व्यास जस गावत गोबिंद रस गी दे हर्षो बीदे भगत रचे भगवंत। मोह मान प्रम बिनस्यो पाई शरण दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल। लाभ मिले तो ताहिरे साध संग निवलाए खाट खजाना गुण निध हरे नानक नाम त्याए। श्लोक संत मंडल हर

पौड़ी सप्तम संचो नाम तन टूट न जाए पंडार संत संगत में पाई है अंत न पारावार आप तजो गोविंद पजो शरण परो हर राए दुख हरे पव जल तरे मन चिंदिया फल पाए आठ पैर मन हर जपे सफल जन्म परवा।

जम कंकर जोए न सकई, नानक प्रभु दयाल। पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नवनिद, सगल पदार्थ पूरन बुद्ध, कवल प्रगास सदा आनंद, निर्मल रीत निरोधर मंत्र, सगल तर्म

हर नाम ना जपें करत विपरीत पर त्रै रमें बकें साध निंद करन ना सुनही हर जस बिंद हिरे पर दर्ब उदर कहताई अगर ना निवरे तृष्णा ना बुझाई हर सेवा बिन ए फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमें अपागे। श्लोक दस दिस खोजत मैं फिरियो जत देखो तत सोए मन बस आवे नानका जे पूरन कृपा होए। पौड़ी दसवीं दस द्वार बस कीने मन

एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्व जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखे इकट्ठा।

द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तज मान, हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्ता से कीर्तन प्रवरंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंचकू आत्मा हर नाम रस कोख है, गुरपूरे ते ए नेचो पाये, नानक राम रमत फिर जोन न आईये। श्लोक तीन गुणा में व्याप्या पूरन होत न काम, अतित उदाहरण मन बसे नानक छूटे नाम। पौड़ी त्रौदशी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन ना मन में आयो, सुख सागर प्रभ निमख न गायो, हरक सोग का देह कर बांधियो, दीर्घ रोग माया आसा दियो, दिने विकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर विसरत होवत ए हाल, शरण नानक प्रभ पुर

कुंट प्रभ आप सगल पवन पूरन प्रताप दसे दिशा रविया प्रभ एक करण आकाश सब में प्रभ एक जल थल बन पर्वत पाताल परमेश्वर तें बसें दयाल सूखम अस्थूल सगल भगवान।

काम दुर्मत मिटी हो मैं छुटी सिमरत हर को नाम। शरण गई पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन आप तरे आप कुटुंब स्यो गुण गोविंद प्रभ रवन। हर की टहल कमावनी जपिए प्रभ का नाम गुर पूरे ते पाया नानक सुख विश्राम। श्लोक पूरन कब हो न

मन चिंदे फल पाया, नानक हर गुण गाए पौड़ी। कोई गावे को सुने, कोई करे विचार, को उपदेश है को दृढ़ है, तिसका होए उदार। किलबिख का तय होई निर्मला, जन्म जन्म मल जाए, हलत पलत मुख ऊ

सतगुर पुरख दयाल है, जिसनो समत सब कोए, एक दृष्ट कर देखदा मन पावनी ते सिद्ध होए। सतगुर विच अमृत है, हर उत्तम हर पद सोए, नानक कृपा ते हर

आई खुदनो सब त्याई दी सब लगे तेरी पाई तेरी सिफत सवालियो स्वरूप है जिनकी ती तिस पार लगाई गुरमुखानो फल।

रंग स्यों गुरुमुख हर गुण तास जन नानक हर शरणागति हर मेले गुरसावास। पौड़ी तू करता पुरख अगम है किस नाल तू वड़ी है तुद जेवड़ होए सो आखी है तुद जेहा तू है पड़ी है तू कट कट एक वर्तदा गुरुमुख पर गड़ी है तू सच्चा सब सदा खसम है सब दू तू चढ़ी है तू करें सो सच्चे हो।

जन नानक सुख सवन। महला चौथा, सतगुर दाता दयाल है जिसनो दया सदा होए, सतगुर अंदरों निर्वैर है सब देखे ब्रह्म इक सोए। निर्वैरा नाल जे वैर चलाएंदे तिन विच्चों तिस्तिया न कोए, सतगुर सबना दा कला मनाएंदा तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुरु नो जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए कोए, नानक करता सब किछ जानदा जिदू किछ गुजा ना होए। पौड़ी, जिसनो साहिब वड्डा करे सोई वड जानी, जिस साहिब पावे

जिसनो सतगुरु मेले सो गुण रवे, गुण आख वखाणी नानक सच्चा सच है बुझ सच समाणी। श्लोक महला चौथा। हर सत निरंजन अमर है, निर्भय निर्वैर निरंकार, जिन जपिया एक मन एक चित तिन लत्ता हो मैं पार, जिन गुरुमुख हर आराध्या तिन संत जना जयकार, कोई निंदा करे पूरे सतगुरु की तिसनो फिट फिट कहे सब संसार। सतगुरु विच आप वर्तदा हर आपे रखन हार, तन तन गुरु गुण गावदा तिसनो सदा सदा नमस्कार, जन नानक तिन को वारिया जिन जपिया सिरजनहार। महला चौथा। आपे तरती साजियन आपे आकाश, विच आपे जंत उपायन मुख आपे दे गिरास, सब आपे आप वर्तदा आपे ही गुणतास, जन नानक नाम त्याय तू सब किलविक कटे तास। पौड़ी। तू सच्चा साहिब सच है सच सच्चे पावे, जो तुद सच सलाह दे तिन जम कंकर नेड़ ना आवे, तिनके मुख दर उजले जिन हर हृदय सच्चा पावे, कूड़ यार पिछा हां सटियन कूड़ हृदय कपट महा दुख पावे, मोह काले कूड़ यारिया कूड़ यार कूड़ो होए जावे। श्लोक महला चौथा। सतगुर तरती तर्म है तिस विच जेहा को बीजे तेहा फल पाए, गुर सिखी अमृत बीजिया तिन अमृत फल हर पाए, ओना हलत पलत मुख उजले ओए हर दरगह सच्ची पहनाए, इकना अंदर खोट नित खोट कमावे, ओह जेहा बीजे तेहा फल खाए, जा सतगुर सरा

करे कनेरिया, जे कारवत होवे साई खाए, बिन सतगुर सोजी ना पवे, अंकार न विचों जाए, अंकारिया नो दुख भुख है, हाथ तगे कर कर मंगाए, कूड़ ठगी गुज्जी ना रहे, मुलम्मा पाज ले जाए, जिस होवे पूरब लिखिया, तिस सतगुर मिले प्रव्याए, ज्यों लोहा पारस पेटी है, मिर संगत सुवरन होए जाए, जन नानक के प्रभ तू तनी, जो पावे तिवें चलाए, पौड़ी जिन हर हृदय सेविया, तिन हर आप मिलाए, गुण की साध तिन स्यों करी, सब अवगुण शब्द जलाए, अवगुण विकण पलरी, जिस देह सो सच्चे पाए, बलिहारी गुरे आपने, जिन अवगुण मेट गुण प्रगति आए, वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए। श्लोक महला चौथा। सतगुर विच वड्डी वड्याई, जो अंदिन हर हर नाम से आवे, हर हर नाम रमत सुत संजम, हर नामे ही तृप्तावे, हर नाम तान हर नाम दीबान, हर नामो रख करावे, जो चित लाए पूजे गुरमूरत, सो मन इच्छे फल पावे, जो निंदा करे सतगुर पूरे की, तिस करता मार दिवावे, फेर ओ वेला ओ हथ ना आवे, ओ अपना बीजिया आपे खावे, नरक कोर मुह काले खड़िया, ज्यो तस्कर पाए गलावे, फिर सतगुर की सरणी पवे, ता उबरे जा हर हर नाम से आवे, हर बाता आख सुनाए, नानक हर करते एवे पावे। महला चौथा। पूरे गुर का हुक्म न मन्ने, ओ मनमुख अज्ञान मुठा बिकमाया, उस अंदर कूर कूड़ो कर बुझे, अनहोंदे झगड़े दे उसने गल पाया, ओ गल परोसी करे बहु तेरी, उसदा बोलिया किसे न पाया, ओ कर कर हंडे जो रन दुहागन, उस नाल मोह जोड़े उस भी लक्षण लाया, गुरमुख होए सो अलिप्तो वरते, उसदा पाप छड गुर पाप बह जाया, जो गुरगो पे अपना सो परा नाही पंचो, उन लाहा मूल सब गवाया, पहला आगम निगम नानक आख सुनाए, पूरे गुर का बचन ऊपर आया, गुर सिखा वड्याई पावे गुर पूरे की, मन मुखा ओ वेला हथ ना आया, पौड़ी सच सच्चा शब्द वड्डा है, सो ले जिस सतगुर टिके, सो सतगुर जे सच त्याईदा, सच सच्चा सतगुर इके, सोई सतगुर पुरख है, जिन पंजे दूत कीते वश के, जे बिन सतगुर सेवे आप गणाए दे, तिन अंदर पूर फिट फिट मोह फिके, ओए बोले किसे न पावनी, मोह काले सतगुर ते चुके। श्लोक महला चौथा। हर प्रभु का सब खेत है, हर आप किरसानी लाया, गुरमुख बस जमायन, मन मुखी मूल गवाया, सबको बीजे अपने पले नो, हर पावे सो खेत जमाया, गुर सिखी हर अमृत बीजिया, हर अमृत नाम फल अमृत पाया, जम चूहा किरस नित कुरकदा, हर करते मार कढाया, किरसानी जमी पाओ कर, हर बोहल बख्श जमाया, तिनका काड़ा अंदेसा सब लायोन, जिनी सतगुर पुरख त्याया, जन नानक नाम अरादिया, आप तरिया सब जगत तराया। महला चौथा। सारा दिन लालच अटिया, मन मुख होरे गल्ला, राती ऊंगे दबिया नवे, सोत सब टिल्ला, मन मुखा दे सिर जोरा, अमर है नित देवे पला, जोरा दा आखिया पुरख कमाव दे, से अपवित अमेद खला, काम व्यापे कसुद नर, से जोरा पुछ चला, सतगुर के आखे जो चले, सो सत पुरख पल पला, जोरा पुरख सब आप उपायन, हर खेल सब खिला, सब तेरी बनत बनावनी, नानक पल पला। पौड़ी तू वे परवाओ अथाओ है, अतुल क्यों तुलिए,
सेवड पागी जे तुद त्याएंदे जिन सतगुरु मिली है। सतगुरु की बाणी सत रूप है, गुरबाणी बनी है सतगुरु की रीस है। होर कच पिछ बोल दे से कूड़ियार कूड़े चढ़ पड़ी है, ओना अंदर होर मुख होर है। बिक माया नो चक मरदे कड़ी है, श्लोक महला चौथा। सतगुरु की सेवा निर्मली, निर्मल जन होए सो सेवा काले। जिन अंदर कपट विकार झूठ, ओए आपे सत्य वख कड्डे जजमाले। सत्यार सिख बह सतगुरु पास, कालन कूड़ियार न लबनी कित खाए पाले। जिना सतगुरु का आख्या सुखावे नाही, तिना मोह पलेरे फिरे दे गाले। जिन अंदर प्रीत नहीं हर केरी, से कितरक वेरायन मन मुख बेताले। सतगुरु नो मिले सो अपना मन थाए रखे, ओह आप वरते अपनी वथ नाले। जन नानक इक ना गुरमेल सुख देवे, एक आपे वख कड्डे ठगवाले। महला चौथा। जिना अंदर नाम निदान, हर तिन के काज दे आंदे रास। तिन चूकी मोहताजी लोकन की, हर प्रभ अंग कर बैठा पास। जा करता वल ता सबको वल, सब दर्शन देख करे साबास। साहो पात साहो सब हर का किया, सब जन को आए करे रह रास। गुरपुरे की वड्डी वड्याई, हर वड्डा सेव अतुल सुख पाया। गुरपुरे दान दिया हर नेचल, नित बख्शे चढ़े सवाया। कोई निंदक वड्याई देख न सके, सो करते आप पचाया। जन नानक गुण बोले करते के, भगतानो सदा रखदा आया। कौड़ी। तू साहिब अगम दयाल है, वरदाता दाना। तुझ जेवड मैं होर को दिस न आवई, तू है सुगड़ मेरे मन पाना। मो कुटंब दिस आमदा, सब चलन हारा आवन जाना। जो बिन सच्चे होरत चित लाए दे, से कूड़ियार कूड़ा तिन माना। नानक सच त्याए तू, बिन सच्चे पच पच मोए अजाना। श्लोक महला चौथा। अगो दे सत पाओ ना दिच्चे, पिछो दे आखिया कम ना आवे। अद विच फिरे मन मुख विचारा, गली क्यों सुख पावे। जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुर की, सो कूड़ी आवे कूड़ी जावे। जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता, ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवे। ता प्यो पीवे शब्द गुर केरा, सब काड़ा अंदेशा परम चुकावे। सदा आनंद रहे दिन राती, जन नानक अन दिन हर गुण गावे। महला चौथा। गुर सतगुर का जो सिख आखाए, सो पलके उठ हर नाम से आवे। उदम करे पलके प्रभाती, स्नान करे अमृत शरण आवे। उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किलविक पाप दोख ले जावे। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बेंदियां उठदियां हर नाम से आवे। जो सास गिरास त्याए मेरा हर हर, सो गुरु सिख गुरु मन पावे। जिसनो दयाल होवे मेरा स्वामी, तिस गुरु सिख गुरु उपदेश सुनावे। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरु सिख की, जो आप जपे अवरे नाम जपावे। पौड़ी। जो तुद सच त्याए दे, से विरले थोड़े। जो मन चित इक अराद दे, तिनकी बरकत खाए असंख करोड़े। तुदनो सब त्याए दी, से थाए पए जो साहिब लोड़े। जो बिन सतगुर सेवे खांदे पहन दे, से मोए मर जम्मे कोड़े। ओए हाजर मिठा बोल दे, बाहर विस कडे मुख खोले। मन खोटे दया विछोले। श्लोक महला चौथा। मल जूई परया नीला काला, खिदोलड़ा तिन वे मुख वे मुखैनो पाया। पास न दे कोई बहन, जगत में गू पड़ सगवी। मल लाए मन मुख आया, पराई जो निंदा चुगली। नो वे मुख कर कै पेजिया, ओथे भी मुह काला दुआ वे मुखा दा कराया। पड़ सुनिया सबत जगत विच पाई, वे मुख सने नफरे। पौली पौदी फावा होए कै उठ कर आया। अगे संगती कुड़मी, वे मुख रलना ना मिले।
ਤਾਂ ਵਹੁਟੀ ਭਤੀਜੀ ਫਿਰ ਆਣ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਨਿਤ ਭੁੱਖਾ ਫੂਕੇ ਤਿਹਾਇਆ। ਤਨ ਤਨ ਸਵਾਮੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਨ ਨਿਆਉ ਸਚ ਬਹਿ ਆਪ ਕਰਾਇਆ। ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸੋ ਸਾਚੈ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ। ਇਹੋ ਅੱਖਰ ਤਿਨ ਆਖਿਆ ਜਿਨ ਜਗਤ ਸਭ ਉਪਾਇਆ। ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਦਾ ਨਫ਼ਰ ਕਿਥੋਂ ਰੱਜ ਖਾਏ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਘਰ ਵੱਖ ਹੋਵੇ ਸੋ ਨਫ਼ਰੇ ਹੱਥ ਆਵੇ ਅਣਹੋਂਦੀ ਕਿਥੋਂ ਪਾਏ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਸਾ ਸੇਵਾ ਔਖੀ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਹਰ ਗੁਰ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੌੜੀ। ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਚਾਰ ਵੇਦ ਕਹੰਦੇ ਭਗਤ ਮੁਖੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਵਚਨ ਹੋਵੰਦੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰਾ ਜਾਪਦਾ ਸਭ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਇਨ ਮੁਗਧ ਨਰ ਸੰਤ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ। ਓਏ ਲੋਚਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣੇ ਨੂੰ ਓਏ ਅਹੰਕਾਰ ਸੜਨ ਦੇ। ਓਏ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਾਂ ਭਾਗ ਤੁਰ ਮੰਦੇ। ਜੋ ਮਾਰੇ ਤਿਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸੰਦੇ। ਵੈਰ ਕਰੇ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਿਆਏ ਪਚੰਦੇ। ਜੋ ਜੋ ਸੰਤ ਸਰਾਪਿਆ ਸੇ ਫਿਰੇ ਭਵੰਦੇ। ਪੇੜ ਮੁੰਡਾ ਹੂੰ ਕੱਟਿਆ ਤਿਸ ਨਾਲ ਸੁਕੰਦੇ। ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਅੰਤਰ ਹਰ ਗੁਰੂ ਧਿਆਏ ਦਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਉਸ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਟੇ ਨਾਹੀ ਇੱਕ ਤਿਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਟਾਈ। ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੈ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਮਰੇ ਸਭ ਲੋਕਾਈ। ਨਿੰਦਕਾਂ ਕੇ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਕਰੇ ਹਰ ਕਰਤੈ ਆਪ ਵਧਾਈ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਤਿਉ ਤਿਉ ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜੇ ਸਵਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਆਰਾਧਿਆ ਤਿਨ ਪੈਰੀ ਆਣ ਸਭ ਪਾਈ। ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਗਣਤ ਜੇ ਰੱਖੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਭ ਤਿਸਕਾ ਗਿਆ। ਨਿਤ ਚਹੀਆ ਪਾਏ ਚੱਗੂ ਸੁੱਟੇ ਚਖਦਾ ਚਖਦਾ ਚੜ ਪਿਆ। ਨਿਤ ਉਪਾ

सब पाप जगत का तिन सिर लया, उस अगे पिछे कोई नाही, जिस अंदर निंदा मोह अंब पया, जे सोयने नो ओ हाथ पाए ता खेहू सेती रल गया, जे गुर की सरनी फिर ओह आवे ता पिछले औगण बख्श लिया, जन नानक अंदिन नाम से आया, हर सिमरत किलविक पाप गया। पौड़ी तू है सच्चा सच तू, सब दू ऊपर तू दीवान, जो तुद सच त्याए दे सच सेवन सच्चे तेरा मान, ओना अंदर सच मुख उजरे सच बोलन सच्चे तेरा तान, से भगत जिन्नी गुरमुख सा लाया।

पूरे सतगुरु से हुन सतगुरु मारे जे मेलन नो बहुते आलोचिए ना दे मिलन करतारे सत संगत तोई ना लहन विच संगत बुर विचारे कोई जाए मिले हुन ओना नो तिस मारे जम जंदारे गुर बाबे फिटके से फिटे गुर अंगद की।

कोई पुत्र सिख सेवा करे सतगुरु की, तिस कार्य सब सवारे, जो इच्छे सो फल पाए सी, पुत तन लक्ष्मी खर मेले हर निस्तारे, सब निधान सतगुरु विच जिस अंदर हर उर्धारे, सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिखत लिलारे, जन नानक मांगे तूर तिन जो गुरसिख मित प्यारे। महला चौथा, जिनको आप दे वड्याई, जगत दी आपे आन तिनको पैरी पाए, डरिये ता जे किछ आप दू कीचै, सब करता अपनी कला वधाए, देखो पाई इहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिन अपने जोर सब आन निवाए, अपने भगता की रख करे, हर स्वामी निंदका दुष्टा के मोह काले कराए, सतगुर की वड्याई नित चढ़े सवाई, हर कीरत भगत नित आप कराए, अन दिन नाम जपो गुर सिखो, हर करता सत

सिखा के मोह उजले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार सबत कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए पौड़ी। तू सच्चा साहिब आप है सच था हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रवण जारे थारे, सच सेवै सच वणंजले गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लखारे। श्लोक महला चौथा, जिस अंदर ताप पराई होवे तिसदा कदे न होवी पला, उस दे आखे कोई न लगे नित ओजारी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली करे अनहोंदी पराई मोह कड न सके उसदा काला भया, कर्म करती शरीर कल युग विच जेहा को बीजे तेहा को खाए, गला ऊपर तपावस न होए।

जन नानक को सब सोजी पाई, हर दर किया बाता आप सुनाए। मैला चौथा होंदे प्रतख गुरु जो विछड़े, तिनको दर टोई नाही। कोई जाए मिले तिन निंदका, मोह फिके थुक थुक मोह पाही। जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके, नित पंबल पूसे खाई। जिन गुरु गोपिया अपना से लैन दे तहा फिराई, तिनकी पुख कदे ना उतरे, नित पुखा पुख कुकाही। ओना दा आखिया को ना सुने, नित हौले हौल मराही। सच गुर की वड्याई वेख ना सकनी, ओना अगे पिछे थाओ नाही। जो सतगुरु मारे तिन जाय मिले, रेंदी खोंदी सब पत गवाई। ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके, जे उस मिले तिस कुष्ट उठाही। हर तिन का दर्शन ना करो, जो दूजे पाए चित लाही। गुर करते आप लिख पाया, तिस नाल क्यों चारा नाही। जन नानक नाम अराधू, तिस अपड़ को ना सकाही। नावे की वड्याई।

तिसको जगत निव्या सब पैरी पया जस वर्त्या लोई, तिसको खंड ब्रह्मंड नमस्कार करें, जिसके मस्तक हाथ करया गुर पूरे सो पूरा होई, गुर की वड्याई नित चढ़े सवाई अपर को नास कोई, जन नानक हर करते आप बैठ क्या आपे पैज रखे प्रभ सोई। पौड़ी काया कोट अपार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वक्त संभाले, नाम निदान हर वणजिए हीरे परवाले, विन काया जे होर से तन खोज दे से मूड बेताले, से उजड़ परम पवाये ज्यो चार मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा, जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग में होया, नरक कोर दुख खू है ओथे पकड़ ओ टोया, कूक पुकार को ना सुने ओ औखा होय होय रोया, ओन हलत पलत सब गवाया लाहा मूल सब खोया, ओ तेली संदा बलद कर नित पल के उठ प्रभ जोया, हर वेखे सुने नित सब किछ तिद्दू किछ गुज्जा ना होया।

के चरण सोया, गुर सतगुर पिछे तर गया, जो लोहा सार संगोया, जन नानक नाम से आए तू, जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा, वड पागिया सोहागनी, जिना गुरमुख मिलिया हर राय, अंतर जोत प्रगासिया, नानक नाम समाए। पौड़ी, एवो शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे की विच जोत, गुहज रतन विच लुक रहे, कोई गुरमुख सेवक कड्डे कोत, सब आत्म राम पछाणिया, ता इक रविया इको ओत पोत, इक देखिया इक मन्या, इको सुनिया श्रवण स्रोत। जन नानक नाम सलाहे तू, सच सच्चे सेवा तेरी होत। श्लोक महला चौथा, सब रस तिन कह रिदै है, जिन हर वस्या मन माहे, हर दरगे ते मुख उजले, तिनको सब देखन जाहे, जिन निरपो नाम से आया, तिनको पो कोई नाहे, हर उत्तम तिनी सरेविया, जिनको तुर लिखिया आहे। ते हर दरगे पहनाई है, जिन हर वुथा मन माहे, कोई आप तरे सब कुटम स्यो, तिन पिछे सब जगत छदाहे, जन नानक को हर मेल जन, तिन वेख वेख हम।

ते जंत भय हरि आवले, जिनी मेरा सतगुरु देखिया जाए। तन तन पिता तन तन कुल, तन तन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। तन तन गुरु जिन नाम आराध्या, आप तरिया जिनी दिठा तिना ले छाए। हर सतगुर मेलो दया कर, जन नानक तो वै पाए पौड़ी। सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उधारिया। सच सच्चा सतगुरु पुरख है जिन काम क्रोध बिख मारिया। जान डिठा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया। बलिहारी गुर आपने सदा सदा कुंवारिया। गुरमुख जिता मन मुख हारिया, गुरमुख जिता मन मुख हारिया। श्लोक महला चौथा। कर कृपा सतगुर मेलियुन, मुख गुरमुख नाम ते आए सी। सो करे जी सतगुर तावसी, गुर पूरा करी वसाए सी। जिन अंदर नाम निदान है, तिनका पौ सब गवाए सी।

0: जिन रखन को हर आप होए होर केती चक चक जाए सी। जन नानक नाम से आए तू हर हालत पलत छोड़ाए सी। महला चौथा गुर सिखा के मन पाव दी गुर सतगुर की वड्याई। हर राखो पैज सतगुरु की नित चढ़े सवाई। गुर सतगुर के मन पार ब्रह्म है पार ब्रह्म छड़ाई। गुर सतगुर तान दीवान हर तिन सब आन निभाई। जिन्नी दिखा मेरा सतगुर पाव कर तिन के सब पाप गवाई। हर दरगे ते मुख उजले बहु शोभा पाई। जन नानक मंगे तूर तिन जो गुर के सिख मेरे पाई। पौड़ी हौ आप सलाही सिर्फ सच सच सच्चे की वड्याई। सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने न पाई। सच सच्चा रस जिन्नी चखिया से तृप्त रहे आघाई। एहो हर रस से ही जान दे ज्यो गूंगे मिठाई खाई। गुर पूरे हर प्रभ सेविया मन वजी वधाई।
1: श्लोक महला चौथा। जिना अंदर उमर थल से ही जानन सूलिया। हर जाने से ही बिरहो हौ तिन विट्टों सद कुम को लिया। हर मेलो

कर कृपा नानक मेल गुर पै सिर वेचिया मोलिया। महला चौथा, औगुणी परया शरीर है क्यों संतो निर्मल होए, गुरमुख गुण वे हाजी है मल हो मैं कड्डे तोए। सच वणन जय रंग स्यों सच सौदा होए, तोटा मूल न आवई लाहा हर पावे सोए। नानक तिन सच वणंजिया जिना तुर लिखिया प्राप्त होए। पौड़ी, साला ही सच सलाहना सच सच्चा पुरख निराले, सच सेवी सच मन वसे सच सच्चा हर रखवाले। सच सच्चा जिनी अरादया से जाय रले सच नाले, सच सच्चा जिनी न सेविया से मनमुख मूड बेताले। ओह आल पताल।

सच्चा शब्द पतार है सदा सदा रावे। ज्यो उबली मजी ठह रंग गह गहा त्यों सच्चे नो जियो दे। रंग चलू ले अतरती।

सत संगत में हर उस्तत है, संग साधु मिले प्यारिया। ओ पुरख प्राणी तन जन है, उपदेश करें पर उपकारिया। हर नाम दृढ़ावे, हर नाम सुनावे, हर नामे जग निस्तारिया। गुर वेखण को सब कोई लोचे, नव खंड जगत नमस्कारिया। तुद आपे आप रखिया, सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया। तू आपे पूजे पूज करावे, सतगुर को सिरजन हारिया। कोई विछड़ जाए सतगुरु पासो, तिस काला मोह जम मारिया। तिस अग्गे पिछे टोई नाही, गुर सिखी मन विचारिया। सतगुरु नो मिले सही जन उबरे, जिन हृदय नाम समारिया। जन नानक के गुर सिख पुतो, हर जप्यो हर निस्तारिया। महला तीजा, हौ मैं जगत पुलाया, दुर्मत बिखिया बिकार। सतगुर मिले ता नदर होए, मन मुख अंध अंधियार। नानक आपे मेल ले, जिसनो शब्द लाए प्यार। पौड़ी, सच सच्चे की सिफत सलाह है, सो करे जिस अंदर पिजे। जिन्नी इक मन इक अरादिया, तिनका कंध ना कबहू छिजे। तन तन पुरख सवास है, जिन सच रसना अमृत पिजे। सच सच्चा जिन मन पामदा, से मन सच्ची दरगह लिजे। तन तन जन्म सचियारिया, मुख उज्जल सच करिजे। श्लोक महला चौथा, साकत जाए निवे गुर आ गए, मन खोटे कूड़ कूड़ यारे। जा गुर कहे उठो मेरे पाई, बह जाहे कुसर बगुलारे। गुर सिखा अंदर सतगुर वरतै।

रंग सुभाए सतगुर सेती मन रता रखिया बणत बनाए जिहवा सालाहे ना रजई हर प्रीतम चित लाए नानक नावे की मन पुख है मन तृप्त है हर रस खाए पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिए दिन राती जिन बनाया सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याईया सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने न पाया जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजर नदरी आईया सच गुरमुख जिनी सलाहया तिना पुखा सब गवाईया। श्लोक महला चौथा। मैं मन तन खोज खोजेंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़

गुरमुख जापे शब्द लिव लाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए, ज्योतिष पावे सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी, तू करता सब किछ जानदा, जो जी अंदर वरते, तू करता आप अगणत है, सब जग विच गणते, सब कीता तेरा वरतदा, सब तेरी बनते, तू कट कट इक वरतदा, सच साहिब चलते, सतगुरु नो मिले सो हर मिले, नाही किसे परते। श्लोक महला चौथा। एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है, गुरमुख लाइए चित, क्यों सास गिरास विसारिये, बहंदिया उठदिया नित, मरण जीवन की चिंता गई, इहो जीड़ा हर प्रभु वस, ज्यों पावे त्यों रख।

दुख विहाए, सतगुर पुरख निर्वैर है आपे लए जिस लाए, नानक दर्शन जिना विखा लियोन तिना दरगे लए छड़ाए। महला तीजा, मनमुख अज्ञान दुर्मत अंकारी, अंतर क्रोध जुए मतहारी, कूड़ कुसत ओह

0: नानक पूरब लिखिया कमाए पौड़ी।
1: जिनके चित्त कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वल छल कर चत कट दे फिर जाए बह कूड़ियारा पास, विच सच्चे कूड़ न गड्डे मन वेखो को निर्जास। कूड़ियार कूड़ियारी जाय रले सच्चार सिख बैठे सतगुर पास। श्लोक महला पंजवा, रहंदे खोंदे निंदक मारियन कर आपे आहर, संत सहाई नानका।

आपो आपनी आपे पछतानी अजराइल फिरस्ता तिन पीड़े कानी। श्लोक महला पंजवा। सेवक सच्चे साह के सेई परवान, दूजा सेवन नानका से पच पच मोए अजा।

मन मुख मूलों पुल्या विच लब लोभ अहंकार झगड़ा कर दिया अन दिन गुदरे शब्द ना करें विचार शुद्ध मत करते सब हिरलई बोलन सब विकार दित्ते किते ना संतोखिये अंतर तिसना बहु अज्ञान अंध्यार नानक मन मुखान।

गुरमुख ज्ञान विवेक बुद्ध होए, हर गुण गावे हृदय हार परोए, पवित्र पावन परम विचारी, जे उस मिले तिस पार उतारी, अंतर हर नाम वासना समाणी, हर दर शोभा महा उत्तम बाणी, जे पुरुष सुने सो

सतगुर आखे सो कार कमावन, सो जप कमावे गुर सिक्खा की काल सच्चा थाए पावे। बिन सतगुर के हुक्मे जे गुर सिक्खा पासों कम कराया लोड़े, तिस गुर सिख फिर नेड़ ना।

जे बिन सतगुर के मन मने कम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुह जेवड़ तू वड वड्डे जिस तू मेले सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े जिसनो तू आप मिलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे ज्यों पावे त्यों रख।

के मन तन नित पावो, नाम सुने नाम संग्रह नामे लिव लावो, गृह तन सब पवित्र होए, हर के गुण गावो, हर नाम

तू सब में एक वर्तदा सब माहे समाना थान थनंतर रव रहा जी अंदर जाना साध संग मिल पाये मन सच्चे पाना नानक प्रभ शरणागति सद सद कुर्बाना। श्लोक महला पंजवा। चेताई ता चेत साहिब सच्चा सोतणी नानक सतगुर सेव चढ़ बोहित पौजल।

जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई, कर सेवा पार ब्रह्म गुर पुख रह न काई, सगल मनोरथ पुण्या अमरा पद पाई, तुद जेवड तू है पार ब्रह्म नानक शरणाई। श्लोक महला पंजवा। डिठड़ो हब ठाए ऊन न काई जाए, नानक लद्दा तिन सुआओ जिना सतगुर पेटिया। महला पंजवा। दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग के, वत्स सुहावी साए नानक नाउ जपन दो तिस्तणी पौड़ी। सिमरत शास्त्र सोध सब किने कीव न जानी, जो जन पेटे साध संग सो हर रंग माणी, सच नाम करता पुरख ए रतना खानी, मस्तक होवे लिखिया हर सिमर पराणी, तोसा दिच्चै सच नाम नानक मेहमानी। श्लोक महला पंजवा। अंतर चिंता नैनी सुखी मूल न उतरे पुख, नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथो दुख। महला पंजवा। मुठड़े से ही साथ जिन्नी सच न लद्या, नानक से साबास जिन्नी गुरमिल इक पछाणिया पौड़ी। जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा, ओए सेवन समरथ अपना बिनसे सब मंदा, पतित उदाहरण पार ब्रह्म संत वेद कहंदा, भगत वत्सल तेरा बिरद है जुग जुग वर्तंदा, नानक जा

जिन हर उठा चित गाली अल पला लिया कम न आवे मित। महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूरन अगम विस्माद नानक राम नाम तन कीता पूरे गुर प्रसाद। पौड़ी तो वो ना चली खसम नाल लब मोहे विगुते करतब करन पलेरिया मद माया सुते फिर जून पवायन।

लालच अटिया नित फिरे स्वार्थ करे न कोए जिस गुर पेटे नानका तिस मन वसिया सोए पौड़ी सबे वस्तु कौड़िया सच्चे नाउ मिठा साध आया तिन हर जना चक सादी डिठा पार ब्रह्म जिस लिखिया मन तिसे उठा एक निरंजन रव रहा पाव दोया कुठा हर नानक मंगे जोड़ कर प्रभ देवे तुठा। श्लोक महला पंजवां।

जन रंग रूप रस बाद के करें प्राणिया जिस पुलाए आप तिस कल नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा गावही नानक शरण द्वार जे तुद पावही पौड़ी जम्मन मरण ना तिन को जो हर लड़ लागे जीवत से परवान।

दह दिशा जल पर्वत बन राए, जिथे डिठा मृत को इल बैठी आए। पौड़ी जिस सर्व सुखा फल लोड़िए, सो सच कमावो, नेड़े देखो पार ब्रह्म इक नाम त्यावो। ओए सगल की रेण का हर संग समावो।

एक जे साजन मैं किया सर्व कला समरथ जियो हमारा खनिए हर मंतन संदड़ी वत। महला पंजवा जे कर गए प्यारड़े तुद न छोड़ा मूल हर छोड़न से दुर्जना पढ़े दोजक कैसूल। पौड़ी सब निधान कर जिस दे हर करे सो होवे जप जप जीवे संत जन पापा मल तोवे चरण कमल हृदय वसे संकट सब खोवे गुरपुरा जिस पेटी है मर जन्म ना रोवे प्रभ दर्श प्यास नानक खणी कृपा कर देवे। श्लोक दखना महला पंजवा पूरी परम वंजाए प्री मोहब्बत हिक तू जिथों वंजे जाए तिथाओ मौजूद सोए। महला पंजवा चढ़ के कोड़े कुंदे पकड़े खूंडी दी खेडारी हंसा से ती चित उलासे कुकर दी ओडारी। पौड़ी रसना उचरे हर श्रवणी सुने सो उदरे मिता हर जस लिखे लाए पावनी से हस्त पविता अठ सठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता संसार सागर ते उदरे बिखिया गढ़ जिता नानक लड़ लाए।

पौड़ी प्रभ बे अंत किछ अंत नाहे सब तिसै करना अगम अगोचर साहेबो जिया का परना हस्त दे प्रतपालदा परण पोखण करना मेहरवान बख्शिंद आप जप सच्चे तर

14 अब मोहे जलत राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया, रहाओ मन मारण कारण बन जाये, सो जल बिन भगवंत न पाये, जे पावक सुर नर है जा

नगन फिरत जो पाए जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम। रहाओ मूड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गैया काई। बिंद राख जो तरिय पाई, खुश रह क्यों ना परम गत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौरी कबीर जी संध्या प्रात स्नान कर

देव कहो कबीर भगत कर पाया, पोले पाए मिले रघुराया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती। कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह के जन्म मत खोए। रहाओ जो तू ब्राह्मण ब्रह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया।

राजा रंक दोउ मिल रोई है, जो पैरसना राम न कहबो, उपजत बिनसत रोवत रहबो। रहाओ जस देखी है तरवर की छाया, प्राण गए कौ का की माया। जस जंती मह जियो समाना, मुए मर्म को का कर जाना। हंसा

लाज न मरो कहो कर मेरा, अंक की बार नहीं कच तेरा रहाओ। अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली, चोआ चंदन।

ता सुख बिसरे परमानंदा, कूटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज परे मतहारी, कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओ कूटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी। अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनेक जन्म किए बहुरंगा, ऐसे कर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए। रहाओ जोगी जति तपि ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी, साकत मरे संत सब जीवे, राम रसायन रसना पीवे। कहो कबीर प्रभु कृपा की जय, हार परे अब पूरा दी जय। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा। ऐसो अचरज देखो कबीर, दद के पोले बिरोले नीर, रहाओ हरी अंगूरी गधा चरे, नित उठ हाते ही गय मरे, माता पैसा अमुहा जाए, कुद कुद चरे रसा तल पाए। कहो कबीर प्रगट पई खेड, ले ले को चूगे नित पेड, राम रमत मत प्रगटी आई, कहो कबीर गुरसो जी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पदे। ज्यों जल छोड़ बाहर पयो मीना, पूरब जन्म हों तप का ही ना, अब कहो राम कवन गत मोरी, सजीले बनारस मत पई थोरी। रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया, बहुत बरस तप किया काशी, मरन पया मगहर की बासी, काशी मगहर संबिचारी, ओछी पगत कैसे उतरस पारी, कहो गुर गज शिव सब।

चोआ चंदन मर्दन अंगा, सो तन जले काठ के संगा, इस तन तन की कवन बढ़ाई, तरन परे उरवार न जाई। रहाओ रात जे सोवे दिन करे काम, एक खिन लेहे ना हर को नाम, हाथ ता डोर मुख खायो तंबोर, मरती बार कस बांध्यो चोर, गुरमत रस रस हर गुण गावे, रामे राम रमत सुख पावे, कृपा करके नाम दृढ़ाई, हर हर बात सुगंध बसाई, कहत कबीर चेतरे अंदा, सत राम झूठा सब तंदा। गौड़ी कबीर जी तिप दे चार तुके, जमते उलट पए है राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, बैरी उलट पए है मीता, साकत उलट सुजन पए चीता, अब मोहे सर्व कुशल कर मान्या, सांत पई जब गोविंद जान्या। राव तन में होती कोट उपाद, उलट पई सुख सह समाद, आप पछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप, अब मन

जिन राम जानिया तिने पछानिया, ज्यो गूंगे साकर मन मानिया, ऐसा ज्ञान कथे बनवारी, मन रे पवन दृढ़ सुख मन नारी, रहाओ सो गुर करो जे बहुर न करना, सो पद रहो जे बहुर न रवना, सो ध्यान करो जे बहुर न तरना, ऐसे मरो जे बहुर न मरना, उल्टी गंगा जमुन मिलावो, बिन जल संगम मन में नावो, लोचा समसर इहो व्यवहारा, तत विचार क्या और विचारा, अब तेज बाय पृथ्वी।

मोल। अब मोहे राम अपना कर जानिया, सह सुभाए मेरा मन मानिया। रहाओ ब्रह्मे कथ कथ अंत न पाया, राम भगत बैठे कर आया। कहो कबीर चंचल मत त्यागी, केवल राम भगत निज पागी। गौड़ी कबीर जी जिह मरने सब जगत तरासिया, सो मरना गुर शब्द प्रगासिया। अब कैसे मरो मरना।

आग। कौड़ी कबीर जी जाके हर सा ठाकुर भाई मुक्त अनंत पुकारण जा।

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन भावे। रहाओ जे कट राम रहा परपूर, तिनकी पग पंकज हम तूर।

जो मन मारे है, मन को मार कहो किस तारे रहाओ, मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत न होई, कहो कबीर जो जाने पेओ, मन मधुसूदन त्रिभुवन देओ। गौरी कबीर जी। ओए जो दिसे अंबर तारे, किन ओए चीते चीतन हारे, कहो रे पंडित अंबर कास्यों लागा, बूजे बूजन हार सवागा रहाओ, सूरज चंद करें उजियारा, सब में पसरे।

राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चित रहा समाए, रहाओ काको जरे काए हुए हान, नटवट खेले।

सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगिया पावे, विख्या अजो सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साच कर जाना, सनकादिक नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा, इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहां समाई। गुर प्रसादी जय दियो नामा, भगत के प्रेम इन्हीं है जाना, इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साच पछाना। इस मन को रूप ना रेखिया काई, हुक्मे जोया हुक्म बूझ समाई, इस मन का कोई जाने पेओ, ए मन लीन पे।

कह कबीर पूरन जग सोई, जाके हृदय अवरना कोई। कौन को पूत पिता को काको, कौन मरे को दे संतापो। हर ठग जग को ठगोरी लाई, हर के वियोग कैसे जियो मेरी माई। रहाओ कौन को पुरख कौन को नारी, या तत ले हो शरीर बिचारी। कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगोरी ठग पहचानिया। अब मोको पै राजा राम सहाय, जन्म मरण कट परम गत पाई। रहाओ साधु संगत दियो रलाए, पंच दूत ते लियो छड़ाए। अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना। सतगुर कीनो पर उपकार, काड लीन सागर संसार। चरण कमल

सारे जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पेखो तत अंतर जामी, अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूरब लिखत मिलिया मेरे पाई, जिस कृपा करे तिस पूरन साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल है सूतक थल है सूतक, सूतक ओपत होई, जन्मे सूतक मुए फुन सूतक।

कोई कुशल कुशल करते जग बिन सह कुशल भी कैसे होई रहाओ। माटी के कर देवी देवा तिस आ गए जियो देही ऐसे पितर तुम्हारे।

गौरी जीवत मरे मरे फुन जीवे ऐसे सुन समाया अंजन माय निरंजन रही है बौड़ न पवजल पाया मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है गुरमत मनुआ अस्थिर राखो इन विद अमृत पियोई है रहाओ गुर के बाण बजर कल छेदी प्रगटिया पद परगासा सकत अंधेर जेवड़ी प्रम चूका नेचल शिव कर बासा तिन बिन बाणे तनुख चढ़ाई है इहो जग बेदिया पाई दह दिस बूढ़ी पवन चुलावे डोर रही लिवलाई उन मन मनुआ सुन समाना दुबदा दुर्मत पागी कहो कबीर अनुपव इक देखिया राम नाम लिवलागी गौड़ी बैरागन तिप दे उल्टत पवन चक्र खट पे दे सुरत सुन अनरागी आवे न जाए मरे न जीवे तास खोज बैरागी मेरे मन मन ही उल्ट समाना गुर प्रसाद अकल पई अवरे नातर था बेगाना रहाओ निवरे दूर दूर फुन निवरे जिन जैसा कर माने

जल नहीं पवन पावक फुन नाही, सतगुर तहां समाही। अगम अगोचर रह निरंतर गुर कृपा ते लहिए, कहो कबीर बल जाओ गुर अपने, सत्संगत मिल रही है। गौड़ी पाप पुन दोए बैल बिसाहे, पवन पूजी प्रगास्यो तृष्णा गुण परी कट पीतर, इन विद टांड बिसाहो। ऐसा नायक राम हमारा, सगल संसार कियो बनजारा, रहाओ काम क्रोध दोए पै जगाती, मन तरंग बटो।

पंडित गुणी सूर हम दाते ए कहे बड़ हम ही। जिसे बुझाए सोई बूझे बिन बूझे क्यों रही है, सतगुर मिले अंधेरा चूके इन विद मानक लही है। तज बावे दहने बिकारा हर पद दृढ़ कर।

सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा परमित बाहर खिंथा सुन गुफा में आसन बैसन कल्प विवर्जत पंथा। मेरे राजन में बैरागी जोगी मर्त न सोग वियोगी रहाओ खंड ब्रह्मांड में सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा तारी ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे होए पसारी। मन पवन दोए तूंबा करी है जुग जुग सारद साजी थिर पई तंती सूटस नाही अनहद किंगुरी बाजी सुन।

गज नव गज दस गज इक्कीस पुरिया एक तनाई साठ सूत नव खंड बेहतर पाठ लगो अधिकाई गई बुनावन माहो कर छोड़े जाए जुलाहो रहाओ गजी न मिनिए तोल न तुलिए पाचन शेर अढ़ाई जो कर पाचन बेग न पावे चगर करे करहाई दिन की बैठ खसम की बरकस ए बेला कत आई।

कर्म कर्म करते बहु संजम अहं बुद्ध मन जा रहे रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो बिसारे रे हीरा लाल।

उनमत मान हिरियो मन माही, गुर का शब्द न तारियो रे। स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो, मदरस लैत बिकारियो रे। कर्म पाग संतन संगाने, कासट लोह उधारियो रे। तावत जोन जन्म प्रम थाके, अब दुख कर हम हारियो।

चल त्रच्यो जगदीश काम सुआए गज बस परे मन बौरा रे अंकस थयो शीश। बिखे बाच हर राज समझ मन बौरा रे निरपै होए न हर पजे मन बौरा रे गयो न राम जहाज राव मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा पर्या।

राम नाम तन कर संचौनी सो तन कथि न जावे। हमरा तन मादो गोविंद तरनी तर यह सार तन कही है। जो सुख प्रभ गोविंद।

रमैया गुण गाये जाते पाये परम निधान रहाओ। क्या जप क्या तप संजमो क्या व्रत क्या स्नान, जब लग जुगत न जानिए पाओ भगत भगवान। संपै देख ना हरखिए विपत देख ना रोए, ज्यो संपै त्यो विकत है बिदने रतिया सो होए। कह कबीर अब जानिया।

पासा पूर्णा पीजे पग न खिसे हर दर्शन की आशा उड़ो न कागा कारे बेग मिली जय अपने राम प्यारे रहाओ कह कबीर जीवन पद कारण हर की भगत करी जय एक आधार नाम नारायण रसना राम रवि जय रागोड़ी यारवा आस पास कन तुलसी का बिरवा माज बना रस गाऊं रे ओ आकाश रूप देख मोहि।

कहां पया नर देवा तोखे, क्या जल बोरियो गया का, जीरे जाहेगा मैं जाना, अवगत समझ आना, जत जत देखो।

ॾाढो परम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सन्मुख रंग ते डरप है सती के सांचे पांडे डगमग छादरे मन बहुरा अब तो जरे मर...

जी जोन में प्रमथ नंद बहु ठाकोरे भगत हेत अवतार लियो है पाग बड़ो बपरा कोरे। तुम जो कहत हो नंद को नंदन नंद सो नंदन का कोरे तरन आकाश दसो दिस नाही तब यो नंद कहाँ थोरे।

大家好。संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जहां को रे, कबीर को स्वामी।

ता वैकुंठ जाइए, नाम पदार्थ मने बसाइए, हृदय शुद्ध जो निंदा हुए, हमरे कपरे निंदक तोए, निंदा करे सो हमरा मीत, निंदक माए हमारा।

बांधी बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुलफ प्राण कर राखे करते बार न लाई। अब मन जागत रहो रे पाई। गाफल होए कै जन्म गवाई।

दिखै रोग पै बंधन पागे मन निज कर सुख जाना ना। एक सुमत रत जान मान प्रभ दूसर मने ना अनाना। चंदन बास पहे मन बासन त्याग कट्यो अभिमाना ना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है थाना ना। ते बड़ पाग बस्यो।

अक्षर लोक त्रय सब कछ इन्हीं माहे, ए अक्षर खिर जाएंगे ओए अक्षर इनमें नाहे। जहाँ बोलते अक्षर आवा, जह अबोलते मन ना रहावा, बोल अबोल मद है सोई, जस ओ है तस लख न कोई। अल्लह लहो तो क्या कहूं, कहूं ता को उपकार, बटक बीज में रव रहे हो जाको तीन लोक विस्तार। अल्लह लहंता पेद छे कछ कछ पायो पेद, उलट पेद मन भेदियो पायो अपंग अछेद।

गढ़ सुमेर टूट जब आवा, जे गढ़ गढ़ियो सो गढ़ में पावा। नाना रण रू तो नर नहीं करे, नानवे ना फुन

जोत्रे भवन तन माहे समावा तो तत्ते तत मिलिया सच पावा थथा अथा था नहीं पावा ओ अथा एहो थिर ना रहावा थोड़े थल थानक आरंभे बिन ही थांबे मंदर थंबे दद्दा देख जो बिन सनहारा जस अदेख तस राख बिचारा दसवें द्वार कुंची जब दीजे तो दयाल को दर्शन कीजे तद्दा अर्दे उर्द निवेरा अर्दे उर्दे मंज बसेरा अर्दे छाड़ उर्द जो आवा तो अर्दे उर्द मिलिया सुख पावा नन्ना निस दिन निरखत जाई निरखत नैन रहे रतवाई निरखत निरखत

अब पौ पान परोसो आवा, जो बाहर सो पीतर जानिया, पया पेद पूपत पहचानिया। मम्मा मूल गया मन माने, मरमी होए सो मन को जाने, मत कोई मन

निरोधो कट पर चै जो उपजय पाओ पूर रहा तह त्रिभुवन राओ खखा खोज पर जो कोई जो खोजे सो

अरे अल्प सुख छाड़ परम सुख पावा, तब ए त्रिय ओ कंत कहावा। हा हा होत होए नहीं जाना, जब ही होए तब है मन माना। है तो सही लखे जो कोई, तब ओही ओह एहो ना होए। ल्यो ल्यो करत फिरे सब लोग, ता कारण व्यापे बहु सोग। लक्ष्मी बरस्यो जो ल्यो लावे, सोग मिटे सब ही सुख पावे। खखा खिरत खपत गए केते, खिरत खपत अजहू।

बावन अखर जोरे आन, सकिया ना अखर एक पछान, सत का शब्द कबीरा कह, पंडित होए सो अनपैर है। पंडित लोगे को व्यवहार, ज्ञानवंत को तत विचार, जा कह जी जय।

अंतरजामी राम समारो, जीवत पावो मोख द्वार, अनपौ शब्द तत निज सार, चरण कमल गोविंद रंग लागा, संत प्रसाद पै मन निर्मल।

अंग माया ब्रह्म रमे सब संग ना ओ बढ़े न कटता जाए अकुल निरंजन एक कह पाए। तृतीया तीने सम कर ल्यावे अनद मूल परम पद पावे साध संगत उपजे विश्वास बाहर पीतर सदा प्रगास। चौथे चंचल मन को गहो काम क्रोध संग कबहो न बहो।

नीच ऊंच नहीं मान अमान, व्यापक राम सगल सामान। चौदस चौदह लोक मजार, रोम रोम में बसे मुरार।

गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध विचारे, गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पड़े रखी सर जुग जुग वेदा नाले, गावन तुदनो मोणी।

सोख पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावे सब त्यावे तुझ जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट अंतर सर्व

हर त्यावें तुझ जी, से जन जुग में सुखवासी, से मुक्त पे जिन हर त्याया जियो, तिन टूटी जम की फांसी, जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जियो, तिनका पो सब गवासी, जिन सेविया मेरा हर जियो, ते हर हर रूप समासी, से तन जिन हर त्याया जियो, जन नानक तिन बल जासी, तेरी पगत पंडार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरे पगत सराम तुझी, हर अनेक अनेक अनंता, तेरी अनेक करे हर पूजा जी, तप तापे जपे बेअंता, तेरे अनेक पढ़े बो सिमरत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता, से पगत पले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता, तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुझ जेवन अवर न कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा, तू एको जी, तू ने चल करता सोई, तुझ आपे पावे सोई वरते जी, तू आपे करे सो होई, तुझ आपे श्रेष्ठ सब उपाय जी, तुझ आपे

सब कीमत मिल कीमत पाई, ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कह न जाई तेरी तिलवड़ियाई, सब सत सब तप सब चंगियाईया।

हित रंग नाचो रख रख पाओ। सिख सभा दीख्या का पाओ, गुरमुख सुनना साचा नाओ। नानक आखन वेरा वेर, इत रंग नाचो रख रख पैर। आसा मैला पैला पौन उपाय तरी सब तरती, जल अग्नि का बंद किया। अंधुले दे दिस मूंड कटाया, रावण मार क्या वड़ा भया। क्या उपमा तेरी आखी जाए, तू सर्वे पूर रहा लिवलाए। रहाओ जी उपाय जुगत।

पनत नानक सबना का फिर एको सोए, जिसनो नदर करे सा सुहागण होए, आसा मैला पहला ग्रियो बन संतर तय सुबाए, दुर्मत गत पई कीरत ठाए, सच पौड़ी साचो मुख नाओ, सतगुर सेव पाए निज थाओ, मन चूरे खट दर्शन जान, सर्व ज्योत पूरन भगवान रहाओ, अधिक त्यास पेख बहु करे, दुख बिखिया सुख तन पर हरे, काम क्रोध अंतर तन हिरे, दुबदा छोड़ नाम निस्तरे, सिफत सलाहन सहज आनंद, सखा सैन प्रेम गोविंद, आपे करे आपे बख्शिंद, तन मन हर पे आगे जिंद, झूठ विकार महा दुख देहे, देख वरन दिसे सबके, जो पुजे सो आवे जाए, नानक अस्थिर नाम रजाए, आसा मेला पहला, एको सर्वर कमल अनूप, सदा भी

लागी मैल मिटे सतनाए गुर प्रसाद रह लिवलाए है हजूर हाजर अरदास दुख सुख साच करते।

जो हर राते थे जन परवान, तिनकी संगत परम निधान। हर बार जिन पाया तन नारी, हर स्यो राती शब्द विचारी। आप तरह संगत कुल तारे, सतगुरु सेव तत विचारे। हमरी जात पत सच नाओ, कर्म तर्म संजम सत भाओ। नानक बख्श

एक तरण गगन में ठौर न पावे, से कर्महीन हर नाम न त्यावे, गुर पूरे ते गत मित पाई, इहो संसार बिखवत अत पौजल।

ज्यो जल अम्ब ऊपर कमल निरारे, बुरा पला कौ किसनो कही है, दिसे ब्रह्म गुरमुख सच लही है, अकथ कथो गुरमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार। शास्त्र वेद सिमरत बहु भेद, अठ सठ मज्जन हर रस।

गुर प्रसाद रतन हर लाभे, मिटे अज्ञान होए उजियारा रहाओ। रमनी रवे बंधन नहीं टूटे, विच हों मैं परम न जाई। सतगुर मिले ता हों मैं टूटे, ताको लेखे पाई। हर हर नाम भगत प्रे प्रीतम, सुख सागर उर्धारे। भगत वचन जग जीवन दाता, मत गुरमत हर निस्तारे। मन स्यो जूझ मरे प्रभ पाए, मनसा मने समाए। नानक कृपा करे।

0: भूख रहे।
1: ऐसा गुरमत रमत शरीरा, हर पद मेरे मन गहर गंभीरा रहाओ। अनत तरंग भगत हर रंगा, अनदिन सूचे हर गुण संगा। मिथ्या जन्म साकत संसारा, राम भगत जन रहे निरारा। सूची काया हर गुण गाया, आत्म चीन रहे लिवलाया। आद अपार अप

ऐनक अंधले दीपक दे, पौजल डूबत चिंत करे, कहे सुने जो माने ना हो, हों बलिहार है ताके जाओ, नानक एक।

अंध जीव रख नाही तन्नी पवन न वाजे चरनी चले पजूता आगे बिन सेवा फल लागे अखर बिरख बाग पोए चोख।

चौपदे विद्या विचारी ता पर उपकारी जन पंच राशि ता तीर्थवासी कुंगरू वाजे जी मन लागे तो जम कहा करे मोसों आ गए रहाओ आस निरासी तो सन्यासी जा जत जोगी ता काया पोगी दया दिगंबर दी बिचारी आप मरे अवरा ने मारी।

गारी माई हर दर्शन बिन रह न जाई राव प्रेम न चाखिया मेरी तिस न बुझानी दया सो जोबन तन पछतानी।

कह कोई जाति स्थावे बख्शे सोई गुर प्रसादी दुर्मत खोई जह देखा तह एको सोई कहत नानक ऐसी मत आवे ताको सच्चे सच समावे आसा मैला पहला दुख दे तित सर्वरण भई ले निवासा पानी पावक तिन्हें किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियले मन एक न चेतस मूर मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हूँ जति सती नहीं पड़िया मूरख मुगदा जन्म तया प्रणवत नानक।

एक जय कर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोए राव विश्वे चस्या करिया पैरा सिती वारी माओ भया सूरजे को रुत अनेक नानक करते के केते वेश इको अंकार सतगुरु प्रसाद आशा करती जा मैला पैला लख लख कर लख वाजे ने जे लख उठ करे सलाम लखा उपकर फुरमाइश तेरी लख उठ राखे मान जा पत लेखे ना पवे ता सब निरा फल का।

लख जाए जा पत लेखे ना पवे ता जी किथे फिर पाहे लख सासत समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवे ता सबे कुपरवान सच नाम पत उपजे कर्म नाम करतार एनस हृदय जे वसे नानक नदरी पार आसा मेला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओ सोखिया चूका जमसो मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मरिया कर एक हटे एक रतीले पाए रहाओ पिंड पत्तल मेरी के सो क्रिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाछे इहो मेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्म राहो सच्चा नावन कासी है जा एनस लागे पाओ इक लोकी होर छमिछरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीश का कबहू निकूटस नाहे।

कर कर पगवे पेख पए। तौ कारण साहिबा रंग रते तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कहन न जाही तेरे गुण के ते रहाओ। दर कर महला हस्ती कोड़े छोड़ विलायत देश गए, पीर पैगंबर सालिक साधक छोड़ी दुनिया खाए पए। साध सहज सुख रस कष्ट जियले, काकड़ छोड़े।

प्रणवै नानक जात कैसी, आसा कर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। पीतर पंच गुप्त मन वासे, फिर न रहे जैसे पवे उदासे, मन मेरा दयाल सेती फिर न रहे, लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाओ। फूल माला गल पहरोगी हारो, मिलेगा प्रीतम तब करोगी सिंगारो, पंच सखी हम एक पतारो, पेड़ लगी है जीड़ा चालन हारो, पंच सखी मिलोदन करेहा, साहो पजूता प्रणवत नानक लेखा देहा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद।

इमा सिगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी। लाल बहु गुण कामन मोही तेरे गुण हो है नावरी राव। हर हर हार कंठले पहरे दामोदर दंतले कर कर करता कंगन पहरे किन विद चित तेरे। मधुसूदन कर मुंदरी पहरे परमेश्वर पटले तीरज कड़ी बंधावे कामन श्री रंग सुरमा दे। मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राव जब सेज आवे ता नानक भोग करे। आसा महला पहला कीता होवे करे कराया तिस क्या कहिए भाई। जो किछ करना सो कर रहया कीते क्या चतुराई। तेरा हुकुम पला कुद पावे नानक ताको मिले वडाई। साचे नाम समावे रहाओ किरत पया परवाना लिखिया बाउड़ हुकुम ना होई। जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट ना सके कोई। जे को दरगे बहुता बोले नौ पवे बजारी सतरंज बाजी पक्के नाही कच्ची आवे सारी। ना को पढ़िया पंडित बिना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर।

जो किछ करे पला कर मानो सहज जोग निध पावो। बाबा जुगता जियो जुग।

शिव नगरी में आसन बैसो कल्प त्यागी बादन सिंगी शब्द सदा तुम सो है एन स्पूर नादन पक विचार ज्ञान मत डंडा वर्तमान विपूतं हर कीरत रह रास हमारी गुरुमुख पंथ अतीतं सगली जोत हमारी समया नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन परथर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं ऐसा मेला पहला गुर कर ज्ञान ध्यान कर पावे कर करनी कस पाई है।

रंग रच रहा एन सुबनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गया रहाओ पूरा साच प्याला सहजे तिसे पियाए जा को नदर करे अमृत का व्यापारी हो वह क्या मद छूछे पाव करे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम हो वह मुक्त वैकुंठ करे क्या सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म न हारे कहो नानक सुन कर पर जोगी खीवा अमृत धार है आशा महला पहला खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष न दे करता जमकर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने ते की दर्द न आया करता तू सगना का सोई जे सकता सकते को मारे काम रोस न होई रहा सकता सिंह मारे पै वगै खसमे सा पुरसा।

को नौत आए वड्डा साध करे मनभाने खसने नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाने मर मर जीवे ताक पाए नानक नाम वखाने।

हर दर्शन पावे वड भाग, गुर के सब सच्चे बैराग। हर दर्शन वरते वरतारा, गुर का दर्शन अगम अपारा। गुर के दर्शन मुक्त गत होए, साचा आप वसे मन सोए। रहाओ गुर दर्शन उदरे संसारा, जे को लाए पाओ प्यारा। पाओ प्यारा लाए विरला कोए, गुर के दर्शन सदा सुख होए। गुर के दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवे परवार साधार। निगुरे को गत पाई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाई। गुर के शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुख का तो लगे न पीर। जम काल किस नेड़ ना आवे, नानक गुरमुख सा।

जो मन राते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगे मिले सुदाए रहाओ, शब्द चाखे साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभु सदा रहा परपूर, आपे नेड़े आपे दूर, आखण आखे बके सब कोए, आपे बस मिलाए सोए, कहने कथन न पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, गुरमुख विच्चों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सवारण हार, आसा मैला तीजा, दूजे पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरथा जन्म गवाया।

पाए, संत संगत मिल हर गुण गाए, नौमे नाम करे विचार, आप तरह कुल उदनहार, गुर की बाणी नाम बजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गवाया, आसा महला तीजा, मन मुख मरे मर मरण विगाड़े, दूजे पाए आत्म संगारे, मेरा मेरा कर कर विगूता, आत्म न चीने पर मैं विसूता, मर मोया सब दे मर जाए, उस तक निंदा गुर समझन आई, इस युग में लहा हर जप ले जाए, रहाओ नाम विहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लोभाए, नाम विहूनी दुख जले सबाई, सतगुरु पूरे बूझ बुझाए, मन चंचल बहु चोटा खाए, एथों छुड़किया ठौर न पाए, गर्भ जोन विष्टा का वास, तित कर मनमुख करे निवास, अपने सतगुरु को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मिलाई, निर्मल बाणी निज कर वासा, नानक हो मैं मारे सदा उदासा, आसा मेला तीजा, लाले अपनी जात गवाई, तन मन अर्पे सतगुर शरणाई, हृदय नाम वड्डी वड्याई, सदा प्रीतम प्रभ होए सखाई, सो लाला जीवत मरे, सोग हरक दोय समकर जाने, गुर प्रसादी शब्द उदरे, रहाओ करणी कार तुरो फुरमाई, बिन शब्द को

दोहागणी का मन देख सिंगार, पुत्र कलत तन माया चितलाए, चूत मोह पाखंड विकार। राव सदा सुहागण जो प्रभ पावे, गुर शब्दी सिंगार बनावे, सेज सुखाली अंगिन हर रावे, मिल प्रीतम सदा सुख पावे। सा सुहागण साची जिस साथ

जेहे कर्म कमाए सब दे उच्चो ऊंचा होए नानक साथ समावै सोए। ऐसा मेला तीजा भगत रता जन सहज सुभाए गुर कै पैसा चै साठ समाए बिन गुर पूरे भगत न होए मन मुख रूने अपनी।

साए अंतर निर्मल अमृत शरणाए सदा सूचे साथ समाए। हर प्रभ वेख है सदा हजूर गुर प्रसाद रहा भरपूर जहां जाओ तह वेखा सोए गुर बिन दाता आवरना कोए। गुर सागर पूरा पंडार उत्तम रतन जवाहर अपार गुर प्रसादी देवन हार नानक बख्शे बख्शन हार आसा मैला तीजा। गुर सायर सतगुर सच सोए पूरे पाग गुर सेवा होए सो बुझे जिस आप बुझाए गुर प्रसादी सेव कराए ज्ञान रतन सब सोजी होए गुर प्रसाद अज्ञान विनाशे अंधन जागे वेखे सच सोए रहाओ मोह गुमान गुर सब जलाए पूरे गुर ते सोजी पाए अंतर महल गुर शब्द पछाने आवन जान रहे फिर नाम समाने। जमन मरना है संसार मन मुख अचेत माया मोह गुबार पर निंदा दो कूर कमावे विष्टा का कीड़ा विष्टा माए समावे। सत संगत मिल सब सोजी पाए गुर का शब्द हर पल दृढ़ाए पाना मन्ने सदा सुख होए नानक सच समावे सोए आसा मैला तीजा। पंच पदे शब्द मरे तिस सदा आनंद सतगुर पेटे गुरु गोबिंद ना फिर मरे न आवे जाए पूरे गुर ते साज समाए। जिनको नाम लिखिया तुरलेख ते अंदिन नाम सदा त्यावे गुर पूरे ते भगत विशेख रहाओ। जिनको हर प्रभ ले मिलाए तिनकी गहन गत कहीं न जाए पूरे सतगुरु दित्ति वड्याई उत्तम पदवी हर नाम समाई। जो किछ करे सो आपे आप एक कड़ी में थाप थाप कह कह कहना आप सुनाए जे सो काले थाए न पाए। जिनके पोते पुन तिना गुरु मिलाए सच बाणी गुर शब्द सुनाए जहां शब्द वसे तहां दुख जाए ज्ञान रतन साचे सहज समाए। नावे जेवड़ होर तर नाही कोए जिसनो बख्शे साचा सोए पूरे शब्द मन वसाए नानक नाम रते सुख पाए आसा मैला तीजा। नृत्य करे बहु वाजे बजाए यूं मन अंधा बोला है किस आँख सुनाए। अंतर लोभ परम अनल वाओ दीवा बले न सोजी पाए गुरमुख भगत कट चानन होए आप पछाण मिले प्रभ सोए रहाओ। गुरमुख नृत हर लागे पाओ पूरे ताल विच्चों आप गवाए मेरा प्रभ साचा आपे जान गुर के शब्द अंतर ब्रह्म पछाण। गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार गुर का शब्द सहज विचार गुरमुख भगत जुगत सच सोए पाखंड भगत नृत दुख होए। एहा भगत जन जीवत मरे गुर प्रसादी पव जल तरे गुर के वचन भगत खाए पाए हर जियो आप वसे मन आए हर कृपा करे सतगुरु मिलाए नेचल भगत हर स्यों चितलाए। भगत रते तिन सच्ची सोए नानक नाम रते सुख होए।

सोई गुर प्रसादी मन वसे हर बूझे सोई मैं सहुदा का एक है और ना ही कोई गुर कृपा ते मन वसे ता सदा सुख होई रहाओ इस युग में निरपो हर नाम है पाइये गुर विचार बिन नामे जम के बस है मन मुख अंध गवार हर कह पाने जन सेवा करे बूझे सच सोई हर कह पाने सलाहिए पाने मने सुख होई हर कह पाने जन

विजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जिसनो तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सभी आख वखाने, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजावर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरुमुख प्रगट होए। इको ओंकार सतगुर प्रसाद, रागा साथ हर दूजा मेला चौथा, किस ही तरह किया मित्र सुख नाल भाई, किस ही तरह किया कुरुम सके नाल जवाई, किस ही तरह किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुहाई, हमारा तरह हर रया समाई, हम हर स्यो तरह किया मेरी हर केक, मैं हर बिन पथ तरा और न कोई, हूँ हर गुण गावा असंख अनेक, रहाओ जिन स्यो तड़े करे से जाहे, झूठ कड़े कर पछोताहे, फिर न रहे मन खोट कमाहे, हम हर स्यो तरा किया जिसका कोई समर्थ ना है, ये सब कड़े माया मोह पसारी, माया को लूजे गवारी, जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तरह जे हलत पलत सब सवारी, कल युग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान वधाए, जिसनो कृपा करे तिस सत्संग मिलाए, हमरा हर तरह जिन ए तड़े सब गवाए, मिथ्या दूजा पाओ तरे बह पावे, पराया छिद्र अटकले अपना अंकार वधावे, जैसा बीजे तैसा खावे, जन नानक का हर तरा कर्म सब श्रिष्ट जिने आवे, आसा मेला चौथा, हृदय सुन सुन मन अमृत पाया, गुरबाणी हर अलख लखाया, गुरमुख नाम सुनो मेरी बहना, एको रव रया कट अंतर मुख बोलो, गुर अमृत बहना रहाओ, मैं मन तन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पाया वड पाग, दूजे पाए पवे बिख माया, पाग हीन नहीं सतगुर पाया, अमृत हर रस हर आप पियाया, गुर पूरे नानक हर पाया, गुर पूरे नानक हर पाया, आसा मेला चौथा।

आ जाए वडे पाग गुरु मुखार पाए नाम ही कालख मुख माया नाम बिना त्रिग त्रिग जीवाया वड़ा वड़ा हर पाप कर पाया नानक गुरुमुख नाम दिवाया आसा महला चौथा गुण गावा गुण बोली बाणी गुरुमुख हर गुण आंख वखाणी जप जप नाम मन पया आनंदा सत सत सत गुरु नाम दृढ़ाया रस गाए गुण कर्म।

शरीर सरोवर गुण प्रगट किए, नानक गुरमुख मत कत कडिए। आसा मैला चौथा, नाम सुनी नामो मन पावे, वडे पाग गुरमुख हर पावे। नाम जपो गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं तर नहीं काई। नाम रविया सब सांस ग्यासा, रहाओ नाम में सुरत सुनी मन भाई। जो नाम सुनावे सो मेरा मीत सखाई, नाम हीन गए मूड नंगा।

था, पच पच मोए दिख देख पतंगा, आपे थापे थापु थापे, नानक नाम देवे हर आपे, आसा मेला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई, फल लागे हर रस रसाई, हर हर नाम जप अनंत तरंगा, जप जप नाम गुरमुख सालाही, मारिया काल जम कंकर पुयंगा, रहाओ हर हर गुर में भगत रखाई, गुर सुखा सिख देवे मेरे भाई, हो मैं कर्म किस विद नहीं जाने, जो कुंचर नाए खाक सिर छाने, जे वड पाग होवे वड ऊचे, नानक नाम जपे सच सूचे, आसा मेला चौथा, हर हर नाम की मन भूख लगाई, नाम सुने मन तृप्त है मेरे भाई, नाम जपो मेरे गुरु सिख मीता, नाम जपो नाम में सुख पावो, नाम रखो गुरुमुख मन चीता, रहाओ नामो नाम सुनी मन सरसा, नाम लाहा ले गुरुमुख बिकता, नाम बिना पुष्टि मोह अंधा, सब ने फल कर्म किए दुख तंदा, हर हर हर जस जपे वड पागी, नानक गुरुमुख नाम लिव लागी।

गुरमत हर गुण बोलो जोगी त्यो मनुआ हर रंग पेन। जोगी हर दियो मति उपदेश जुग जुग हर हर एको वर्त है तिस आगे हम आदेश राओ। गावे राग पास बो बोले एहो मनुआ खेले खेल जो वे कूप सिंचन को बसदा उठ बैल गए।

हर सिंचो गुरमत जेत, जोगी जंगम सृष्ट सब तुमरी, जो देहो मति तित चेल, जन नानक के प्रभ अंतर जामी, हर लागो मनुआ पेल। आसा मैला चौथा, कब को पाले कुंगरू ताला, कब को बजावे रबाब, आवत जात बार खिन लागे, हों कब लग समारो नाम। मेरे मन ऐसी पगत बन आई, हम हर बिन खिन पल रह न सको, जैसे जल बिन मीन मर जाई रहा। कब को मेले पंच सत गायन, कब को राग तुम उठावे, मेलत चुनत खिन पल चसा लागे, कब लग मेरा मन राम गुन गावे। कब को नाचे पाव पसारे, कब को हाथ पसारे, हाथ पाव पसारत बिलम तिल लागे, कब लग मेरा मन राम सुमारे। कब को लोगन को पति आवे, लोक पति रे ना पत होए, जन नानक हर हृदय सद त्यावो, ता जय जय करे सब कोए। आसा मैला चौथा, सत संगत मिलिए हर साधु, मिल संगत हर गुण गाए, ज्ञान रतन बलिया कट चानन, अज्ञान अंधेरा जाए। हर जन नाचो हर हर त्याए, ऐसे संत मिले मेरे पाई, हम जन के तो मैं पाए रहाओ। हर हर नाम जपो मन मेरे, अन दिन हर लिव लाए, जो इच्छो सोई फल पाओ, फिर भूख न लागे आए। आपे हर अपरंपर करता, हर आपे बोल बुलाए, से संत पले तुद पावे, जिनकी पत पावे खाए। नानक आख ना राजे हर गुण, जो आखे त्यों सुख पाए, भगत भंडार दिए हर अपने, गुण गाहक वनज ले जाए। ओंकार सतगुरु प्रसाद राधा सा, कर अठवा के काफी महला चौथा। आया मरण पुरा हो मैं रोई है, गुरमुख नाम ते आए अस्थिर होई है, गुर पूरे सा वास चलन जानिया, लाहा नाम सो सार सब सुनाणिया रहा। पूरब लिखे देह से आए माया, चलन आज के कल तुरु।

नानक सच्चे सच सच समाया। ऐसा मैला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया, गुरु प्रसादी बुझ सच समाया, जिन तुर लिखिया लेख तिन्नी नाम कमाया, दर सच्चे सच्चार मैल बुलाया रहाओ, अंतर नाम निधान गुरु मुख पाई है, अंजन नाम से आए हर गुण गाई है, अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाई है, हूँ मैं गर्भ गर्भ आप खुआई है, नानक आपे आप खुआई है, गुरमत मन पर गास सच्चा पाई है, राग आसावरी कर सोलवा के।

कीर्तन करो। सतगुरु मोको हर नाम बताया, हम हर दिन खिन पल रह ना सको रहाओ। हम रह श्रवण सिमरन हर कीर्तन, हम हर दिन रह न सको हूँ एक खिन। जैसे हंस सरवर बिन रह न सके।

हम हर बिन खिन पल रह न सकूं, जैसे कर हल बेल दी जाई राव। हमरा मन बैराग बिरकत कहो, हर दर्शन मीत कहताई। जैसे अल कमला बिन रह न सके, तैसे मोय हर बिन रह न जाई। राज शरण जगदीश सुर प्यारे, मोय सरदा पूर हर गुसाई। जन नानक के मन अंध होत है, हर दर्शन निमक दिखाई। रागा सा कर दूजा मेला पंजवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। जिन लाई प्रीत सोई फिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिस पौ बहुत दिखाया। पाई मीत कुटुम्ब देख विवादे, हम आई वसगत गुर प्रसादे। ऐसा देख भी मोहित हुए, साधिक सिद्ध सुरदेव मनुखा। बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे रहाओ। एक फिरे उदासी तिन काम व्यापे, एक संचय गिरही तिन हुए नापे। एक सती कहावे तिन बहुत कल पावे, हम हर राखे लग सतगुरु पावे। तप करते तपसी फूलाए, पंडित मोहे लोग सुभाए। त्रैगुण मोहे मोहा आकाश,

जो तू कहे सो कार कमावा, जन नानक गुरुमुख नेड़ ना आवा। आसा मैला पंजवा, ससु ते फिर की नीवाक, देर जिठानी मोई दुख संताप।

प्रीत दुखिया त्यागी लोगारीत त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने तुरिया गुण मिल साग पछाने सहज गुफा में आसन बांधया ज्योत स्वरूप अनाद वाजया महा आनंद गुर शब्द विचार त्रै सो राति तन सुहागन।

तीरथ न छोड़े जोग सन्यास, फल खाके सिमरत वेद व्यास। जै बैसो तै ना ले बैसे, सगल पवन में सबल प्रवेश है। होची शरण पया रह न पाई, कौमी पाहो कह कह जाई। सुनो उपदेश सतगुर के आया, गुर हर हर नाम मोहे मंत्र दृढ़ाया। निज कर वस्या गुण गाय अनंता, प्रभ मिलियो नानक कहे अचिंता। पर मेरा ए नायक हमारी, ए आमर हम गुर किए दरबारी।

नानक दास तेरी शरण आई, प्रभ राखी पैज वजी वधाई। आसा मैला पंजवा परदेश चार सौ देखो आया, वक्त अनूप सुनी लभाया, गुण रास बन पल्ले आनी, देख रतन यो मन।

अमोल रत्न अमोलारास विष्ट सुभाई पाया मीत सौदा मिलिया ने चल चीत पौ नहीं तस्कर पौ न पानी सहज विहाजी सहज ले जानी हट के खटे दुख नहीं पाया सही सलामत कर ले आया मिलिया लाहा पै आनंद तन सा पूरे बख्शिंद सौदा गुरमुख किने।

कर मस्तक पार राखियो कर अपना क्या जाने एहो लोक अजाना रहाओ सुहाग हमारो अब हुन सोयो कंक मिलियो मेरो सब दुख जोयो आंगन मेरे शोभा चंद निस बासुर प्रसंग आनंद बस

आसा मैला पंजवा दुख रोग पए गत संते मन निर्मल हर हर गुण गाए।

अब ताको फुनकाल न खाए। करण कारण समर्थ हमारे सुखदाई मेरे हर हर राय। नाम तेरा जप जीवे नानक पोत पोत मेरे संग सहाय। आशा मैला पंजवा अरड़ावे बिललावे निंदक पार ब्रह्म परमेश्वर बिस्रिया। अपना कीता पावे निंदक रहाओ जे कोई उसका संगी होवे। नाले ले सिदावे अनहोंदा अजगर पार उठाए। निंदक अग्नि माए जलावे परमेश्वर के द्वारे जे होए बतीते। सो नानक आप सुनावे भगत जना को सदा आनंद है। हर कीर्तन गाए बिकसावे। आसा मेला पंजवा जो मैं कियो सगल सिगारा। तो भी मेरा मगना पतियारा।

वस्त्र भी कुखम सुख बहुत विशेष है, कोई भी जानो कितना लेख है, पत शोभा अरमान महत आज्ञाकारी सगल जगत। गृह ऐसा है सुंदर लाल, प्रभु का वासा सदा निहाल, व्यंजन भोजन अनेक प्रकार, रंग तमाशे बहुत विस्तार, राज मिलक अर बहुत फुरमाइस, मन नहीं त्रापे तृष्णा ना जायस, बिन मिल बे यो दिन ना बिहावे, मिले प्रभु ता सब सुख पावे, खोजत खोजत सुनी ए सोए, साध संगत बिन तरयो न कोए, जिस मुस्तक पाग तिन सतगुरु पाया, पूरी आशा मन तृप्ताया, प्रभ मिलिया ता चूकी डंजा, नानक लद्दा मन तन मंजा। आशा महला पंजवा पंच पदे

बिस्ता अस्त रटक परे ते चाम इस ऊपर ले राख्यो गुमान एक वक्त बूझे ता हो वे पाक बिन बूझे तू सदा न पाक कहो नानक गुर को कुर्बान जिससे पाये हर पुरख सुजान आखा महला पंजवा एक तुके चौपदे

सब अंत न जाने पंच दूत मिल फिर विछोड़ी प्रम प्रम रोवे हाथ पछोड़ी जन नानक को हर दर्श दिखाया आत्म चीन परम सुख पाया।

दूध जन बकरा मोको कहाँ डवाई रहाओ, हर मेरी ओट में हर का तान, हर मेरा सखा मन माहे दीवान, हर मेरी पूंजी मेरा हर वे साहो, गुरमुख तन छट्टी हर मेरा साहो, गुर कृपा से ए मत आवे, जन नानक हर के अंक समावे, आसा मैला पंजवा, प्रभ होए कृपाल ताए हो मन लाई, सतगुर सेव सब फल पाई, मन क्यों बैराग करेगा सतगुरु मेरा पूरा, मनसा का दाता सब सुख निधान है, अमृत सर सब ही पर पूरा रहाओ, चरण कमल हृद अंतर धारे, प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे, पंच सखी मिल मंगल गाया, अनहद बाणी नाद बजाया, गुरु नानक तुठा मिलिया हर राये, सुख रैन विहानी सह सुवाए, आसा मेला पंजवा, कर कृपा हर प्रगति आया, मिल सतगुर तन पूरा पाया, ऐसा हर तन संचिय भाई, कहे न जाने जल नहीं डूबे, संग छोड़ कर कत हो न जा रहा, कोट न आवे निकुट न जाए, खाए खर्च मन रहा अगाए, सो सत्सा हो जिस कर हर तन संचाना, इस तन से सब जग वरसाना, तिन हर तन पाया जिस कोग लिखे का लेना, जन नानक अंतवार नाम गहना, आसा मेला पंजवा, जैसे किसान बोवे किसानी, काची पाकी बाढ़ परानी, जो जन में सो जानो मुआ, गोविंद भगत अस्थिर।

साचे साहिब अर्थ अपेव नानक लाया लागा सेव आसा महला पंजवा निकट जी कै सद ही संगा कुदरत वरते रूप अर रंगा करे न चुरे न मन रोवन हारा अविनाशी अवगत अगोचर सदा सलामत।

वार करत चूठी लग जाता रहा वजो साहिब का सेब बिरानी कैसे गुणे अच्छा दियो प्राणी तिस्यो लूक जो सद ही संगी कामना आवे सो फिर मंगी कहो नानक प्रभु दीन दयाला ज्यो पावे त्यों कर कृतपाला आसा मेला पंजवा जी प्राण तन हर को नाम इहा उहा उन संकाम बिन हर नाम अवर सब छोरा तृत अधावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ पगत पंडार।

नानक को गुरु दीक्षा दीन प्रभ अविनाशी कट कट चीन आसा महला पंजवा अनद विनोद परे पुर तारिया अपना कारज आप संवारिया।

फिर बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक को गुरदीनो दान आसा मेला पंजवा बुद्ध प्रगास सही मत पूरी तमसे बिनसी गुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई ने बूढ़त कोर अंध

गुर पूरे प्रगट मार्ग दिखाया, जात पात कछ उक्त न मोरी, गुरु नानक शरणागत तोरी, आसा मेला पंजवा तिप दे दूजा, हर रस पीवत सद ही राता, आन रसा खिन में लह जाता, हर रस के माते मन सदा आनंद।

आए हर साधु हर समाए लाख करोरी मिले न के जिसे प्राप्त तिस ही दे नानक चाक पे बिस्माद नानक गुरते आया साद ईत ऊत कछ छोड़ न जाए नानक गीदा हर रस माहे आसा मेला पंजवा काम क्रोध लोभ मोह मिटावे छुटके दुर्मत अपनी

आज्ञा मान भगत होए तुम्हारी, जो इव मंत्र कमावे नानक सो पौजल पारे उतारी। आसा महला पंजवां दुख दे पई प्राप्त मानक दे हुरिया, गोविंद मिलन किए तेरी बरिया, अगर काज तेरे किते न काम, मिल सौद संगत भज केवल नाम, संग जाम लाग और जल करन के, जन्म बिरथा जात रंग माया कह रहा हो, जब तप संजम कर्म ना कमाया, सेवा साधना जाने हर राया, कहू नानक हम नीच कर्मा, शरण करे।

हम आधार अर्ध करे सास सास समारे ना पोहे अगनार पर पन पर दारा पर निंदा इनसो प्रीत निवार चरण कमल सेवी हृदय अंतर।

राज मिलक जो बन गृह शोभा रूपवंत जो आनी बहुत दर्भ हस्ती अर कोड़े लाल लाख बयानी आगे दर्घ है कामना आवे छोड़ चले अभिमानी काहे एक बिना चित लाये उठत बैठत सोवत जागत।

कर्म कर्म जुगत बहु करता करने हार ना जाने उपदेश करे आप ना कमावे तत शब्द ना पछाने नांगा आया नांगो जासी जो अस्ति खाक छाने संत सज्जन सुनो सब मीता झूठा एवं पसारा मेरी मेरी कर कर डूबे खप खप मोए गवारा गुरमिल नानक नाम ते आया साच नाम निस्तारा राग आसा कर पंजवा मैं।

सगल जगत कंध अंध को जागे हर जन महामोहनी मगन प्रह प्रीत प्राण को त्यागे विरला चरण कमल अनूप हर संत मंत को लागे साधु नानक साधु संग जागे ज्ञान रंग वड पागे कृपा इको अंकार सतगुरु प्रसाद राग आसा कर छेवा महला पंजवा जो तुद पावे सो परवाना सूख सहज मन सोई करण कारण समरथ अपारा अवर नहीं रे कोई तेरे जन रसक रसक गुण गावे मसलत मता सियानक जन की जो तू करें करावे रहाओ अमृत नाम तुम्हारा प्यारे साध संग रस पाया त्रिपत अघाए से जन पूरे सुख निदान हर गाया जा को टेक तुम्हारी स्वामी का को नाही चिंता जा को दया तुम्हारी हुई से सह पले भगवंता कर्म मोह त्रो सब निकसे जब का दर्शन पाया वर्तन नाम नानक।

पहला जन्म जो आया पहुँच न साके काजू बाते आगे ठोर न पाया रहाओ किस पया निंदक बपरे का क्या ओ करे बिचारा ता बिगुता जे कोई न राखे ओ किस पे करे पुकारा। निंदक की दत कत होना ही खसमे एवे पाना जो जो निंद करे संतन की त्यों संतन सुखमाना संता टेक तुम्हारी स्वामी तू संतन का सहाई कहो नानक संत हर राखे निंदक दिए रुड़ाई आसा महला पंजवा बार तोए अंक।

गर्मी मारी साथ न मरी, नाम न सुने डोरा रहा हो, माया की किरत छोड़ दवाई, भक्ति सार न जाने, वेद शास्त्र को तर्कन लागा।

कहां छुपाया, कूड़ कपट वंश निमुनी आदा, बिरस गया तत्काले सत सत सत नानक कहया, अपने हृदय देख संभाले आसा मैला पंजवा। उदम करत हो गए मन निर्मल, नाचे आप निवारे, पंच जना ले वसगत राखे मन में एकंकारे, तेरा जन नृत्य करे गुण गावे, रबाब पख

रे आज के बस गुरकीनो के हर कुकर तिने लगाई रे रहाओ बाज फूनिया छपरा सामिया निकरिया कर पाया रे बिन जड़िए ले जड़ियो जड़ावा थेवा कचरज लाया रे दादी दाद न पहुंचन हारा चुपी निर्णो पाया रे माल दुली चै बैठी ले मृतक नैन दिखालन ताया रे।